मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 19 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी।

0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हे ईश्वर, हम सदैव आपके बताए मार्ग पर चलें, ऐसी हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो। हम आपके कृपा पात्र हों, आपकी जय हो। हम आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं।

हे प्रभु, हमें इतनी सामर्थ्य देना कि हम अपनी क्षुधा पूर्ति के साथ किसी निर्धन व्यक्ति की उदर पूर्ति भी कर सकें, अपने कल्याण के साथ दूसरे का कल्याण भी कर सकें।

0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

हमें आपके दर्शन न होने से ऐसी व्यग्रता हो जैसे हमें इंसान सारिक संबंधों के बिछुड़ने पर होती है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारा चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा और हमें बार बार इस मृत्यु लोक में आना होगा।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के विचार।
1: एक बार अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरद। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। ये करुण स्वर सुनकर अधिकारी महोदय ठिठक गए। बोले, ये कौन रोता है, क्या हुआ इसे? शरद ने उत्तर दिया, मास्टर मुशाय, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके ये उसको खिलाती थी। कल रात इसका वो स्वामी मर गया। ये बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुशाय, ये सचमुच का रोना है। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वो साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वो निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। एक बार एक विद्यार्थी ने शरदचंद्र से पूछा, लोग कहते हैं श्रीकांत आपकी जीवनी है, क्या ये सत्य है? शरद हंसे, बोले, तुम क्या कहते हो, हम कैसे जानेंगे, हम तो पूछते हैं। वो फिर गंभीर हो गए। कहा, उपन्यास लिखने बैठने पर कोई हूबहू अपनी कथा नहीं लिखता, उसी तरह अपने को छोड़कर कोई सार्थक सृष्टि भी नहीं होती। विद्यार्थी ने फिर पूछा, आपके साहित्य में पतिताएं बहुत हैं, इसका क्या कोई विशेष कारण है? ये सुनकर वे अनमने हो उठे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उदासी से भर उठी। कहीं बहुत दूर से जैसे बोल रहे हों, कहा, नहीं जानता विशेष कारण क्या है। मैं बहुतों को जानता हूं, अपनी आंखों से देखा है। उनमें ऐसी वस्तु है जो बड़ों बड़ों में नहीं है, त्याग, धर्म, दया।

0: माया, प्रेम, मनुष्य में जो कुछ अच्छा है उसका उनमें अभाव नहीं है। भद्रता के मोह में पड़कर इसे अस्वीकार करूं तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? कोई मनुष्य केवल काला ही है, उसमें कोई सुधरने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बार एक साहित्यिक गोष्ठी में एक बंधु ने पूछा, आपने सतीत्व की प्राचीन धारणा के विरुद्ध एक रिवोल्ट खड़ा कर दिया है, क्यों, ये समझाइए। शरत चंद्र ने उत्तर दिया, मैंने रिवोल्ट खड़ा नहीं किया, ये तो युग का प्रभाव है। कोई धारणा या वस्तु बहुत प्राचीन काल से चली आई है, इसी कारण वो सही नहीं है। कुछ भी हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। सतीत्व परिपूर्ण मनुष्यता का एक अंग है, वो मनुष्यता पर हावी नहीं हो सकता। कर्तव्य और अधिकार का संबंध ऐसा अविच्छिन्न है कि एक न रहे तो दूसरा निरर्थक हो जाता है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के विचार। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को आज हम सुनवा रहे हैं ऊसर भूमि सुधार कैसे करें विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश यादव से की गई चंद्रजीत यादव की बातचीत।
1: किसान भाई कह जाते कि भाई माटी ही अपन धन है, माटी में भैया हमेशा खेती बाड़ी के काम करेगी, तो निश्चित तौर पर भाई माटी अगर ठीक रहा तो अच्छी भाई जो है पौधन के बढ़वार होता है, उत्पादन भी अच्छा मिलत है। लेकिन अगर ऊसर भूमि हो भैया जौन के अपने देश में ढेर सारी जमीन भैया ऐसा बाटे, एकर अगर सुधार किया जाए तो हम समझते ही काफ़ी कुछ जो समस्या बाटे भाई जमीन के वो दूर हो सकत है। तो ऊसर भूमि के सुधार कैसे किया जाए भाई, देखा यही विषय पे डॉक्टर वेद प्रकाश यादव भैया जो उनकी मृदा वैज्ञानिक हैं, भैया से जाना जाए कि कैसे ऊसर भूमि सुधार किया जाए, भैया बताएं।
2: हमारे देश में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि लवणों से प्रभावित है जो सदियों से बंजर पड़ी है
1: जी।
2: भारत के किसी अन्य राज्य की तुलना में लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग 12.5 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में है
1: जी।
2: हमारे यहाँ लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियों को ऊसर रे अथवा कलर के नाम से जाना जाता है।
1: तो भैया ये जो ना जमीन होगी बाटी इनकर कैसे सुधार किया जाए, पहले तो यही जानना चाहब कि जमीन ऊसर हुई काहे की जात बाटे।
2: देख किसान भाइयों, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियाँ आमतौर पर उन क्षेत्रों में बनती हैं जहाँ वर्षा कम होती है एवं वाष्पीकरण अधिक होता है
1: जी।
2: मृदा जल के साथ घुलनशील लवण सतह पर आ जाते हैं जहाँ से पानी तो उड़ जाता है परंतु लवण मिट्टी की सतह पर जमा हो जाते हैं। सूखे मौसम में मिट्टी की सतह पर लवणों की पपड़ी सी नजर आती है। इन लवणों से सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एवं कार्बोनेट मुख्य होते हैं।
1: तो ये तो कारण रहा भाई जवन आप तत्वों के बात कर बाटे, कौन कौन तत्व ऐसे ना है जवन की ज़्यादा प्रभावित कर बाटे उसे जमीन बनावे में।
2: देखिए ऊसर भूमि में विनिमय योग सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण भूमि के भौतिक व रासायनिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पीएच मान अधिक हो जाता है। पीएच मान अधिक होने के कारण पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, जस्ता, पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाते हैं
1: जी जी,
2: जिससे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
1: तो इस तरह से भाई प्रभाव डालत है। ये बताओ कि फसलन पे का कुछ प्रभाव अगर वही जमीन में खेती की जाए तो कैसे पैदावार ना हो पावत, पौधन बढ़वार काहे ना हो पावत।
2: देखिए मृदा घोल का प्रसरण दाब बढ़ जाने के कारण पौधों के लिए जल की उपलब्धता बहुत घट जाती है जिससे मिट्टी में नमी रहने पर भी जड़ों पानी का अवशोषण नहीं कर पाती हैं
1: जी।
2: मिट्टी घोल में लवणों के कारण सोडियम एवं बोरान की उपलब्धता बढ़ जाने के कारण पौधों के शरीर में इनकी बड़ी मात्रा जमा हो जाती है तथा मैग्नीशियम, मैग्नीज एवं लोहा की उपलब्धता घट जाती है
1: जी जी।
2: मृदा लवणता बढ़ने के साथ ही फसलों की उपज में भी कमी आने लगती है।
1: तो ऐसी स्थिति में भाई अपने यहाँ ढेर सारी जमीन बा ऊसर बाटे ओकर का कुछ प्रबंधन किया जाए भैया कि

0: उसी कुछ फसल और पौधन को हमें लेके अच्छी उसी जो है पैदावार ली जा सकत है।
1: ऊसर भूमि सुधार के लिए सबसे पहले तो जल निकास का उचित प्रबंध बहुत आवश्यक है।
0: जी जी,
1: जहाँ कहीं भी प्राकृतिक रूप से जल निकास नहीं हो पाता है वहीं भू जल स्तर के निकट आ जाता है। कृत्रिम रूप से जल का निकास किए बिना ऊसर भूमि का सुधार संभव नहीं है।
0: जी जी,
1: जल निकास के लिए सामान्यतः तीन तरह की विधियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं, जिसमें पहला है पृष्ठीय जल निकास, जिसमें भू सतह पर नालियाँ बनाई जाती हैं और अतिरिक्त जल को बाहर निकाल दिया जाता है।
0: जी जी,
1: दूसरा है अवमृदा जल निकास, जिसमें गहरी नालियाँ बनाकर अतिरिक्त जल को व्यापक रूप से निकाला जाता है।
0: जी जी,
1: तीसरा है नलकूपों से पंप द्वारा जल निकास, इस विधि द्वारा इच्छा अनुसार गहराई तक भू जल स्तर को नीचे ले जाया जा सकता है।
0: जी जी,
1: इस विधि में 6 इंच व्यास वाले नलकूप से यदि लगातार पंप द्वारा पानी निकाला जाए तो 1 किलोमीटर व्यास वाले क्षेत्र के भू जल स्तर को नीचे गिराया जा सकता है।
0: अच्छा, जो ये क्षारी तत्व बाटे जो है कि भाई कारण जो ना है मृदा जो ना है उस रेली हो, एका कैसे हटावा जाए, कैसे एका हटाए के एका सुधार की जा सकत है?
1: देखिए, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है नवड़ों का निछालन।
0: जी,
1: तो निछालन क्रिया के अंतर्गत घुलनशील लवण को जड़ सेत से हटाने के लिए काफ़ी पानी का उपयोग किया जाता है। लवण पानी में घुलकर मृदा संस्तरों से होकर जड़ सेत से दूर चले जाते हैं, जहां से केशकीय गति द्वारा लवण पुनः ऊपर नहीं आ पाते। निछालन हेतु खेत का समतल होना अति आवश्यक है। इसके अलावा एक क्रिया होती है फ्लशिंग, निर्वाधन। निर्वाधन क्रिया में घुलनशील लवणों को पानी के साथ बहाकर खेत के निचले भाग में ले जाया जाता है, जहाँ से पृष्ठी नालियों द्वारा उन्हें खेत से बाहर किया जाता है। परंतु यह विधि वहीं उपयोगी जहाँ भूमि ढलान पर हो।
0: भैया, जो ना निछालन विधि बाटे इसमें जल के गुणवत्ता पे का कुछ कहा चाहिए?
1: देखिए, यह सही है कि लवण रहित जल से अधिक अच्छा और कोई भी जल नहीं हो सकता, पर यह भी सही है कि पूर्णतः लवण रहित जल सभी स्थानों पर पाना कठिन ही नहीं असंभव ही है। इसलिए जल यदि लवणीय हो तो जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए।
0: तो ऐसे काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है,
1: इससे काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। निछालन का समय होता है,
0: हाँ।
1: आमतौर पर गर्मी के दिनों में मई जून में निछालन करना अति लाभदायक पाया गया है। परंतु जहाँ कहीं भी पानी की कमी पाई जाती है वहाँ गर्मी में निछालन संभव नहीं हो सके, तो वर्षा ऋतु में निछालन क्रिया करना लाभदायक होता है।
0: एक चीज़ भैया हम आपसे जानना चाहते बटी, जैसे कुछ जवन भाई उस रीली जमीन में कुछ खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में या कहले रासायनिक पदार्थ के रूप में डाला जाए, तो उसी भी का ऊसर सुधार हो सकत है?
1: जी देखिए, इसके लिए ऊसर भूमि को सुधारने के लिए ऐसे सुधारकों का प्रयोग किया जाता है जो अम्लीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।
0: जी,
1: ये सुधारक अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
0: देखिए,
1: अकार्बनिक जो होते हैं उसमें जिप्सम, गंधर, फेलस सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट, चूना पत्थर प्रमुख अकार्बनिक मृदा सुधारक हैं।
0: जी, तो इन्हन के इस्तेमाल कैसे करें किसान भाई?
1: देखिए, इन सभी मृदा सुधारकों में जिप्सम सबसे अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय विधि है। मृदा सुधारकों के प्रयोग से पहले यह आवश्यक है कि भूमि को समतल करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मेड़बंदी कराएं, जिससे पानी का रिसाव ठीक प्रकार से हो सके।
0: जी जी,
1: देखिए जिप्सम का अगर प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई, तो सर्वप्रथम मिट्टी की जाँच करा कर यह जान लें कि कितनी मात्रा में जिप्सम का प्रयोग करना आवश्यक है।
0: जी,
1: परंतु मिट्टी जहाँ संभव न हो तो साधारणतः 12 से 15 टन जिप्सम प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं।
0: 12 से 15 टन प्रति बढ़ के 4 बीघा में?
1: जी।
0: अच्छा,
1: अब जिप्सम को प्रयोग करने के लिए मिट्टी की सतह पर फैलाकर 10 सेंटीमीटर गहराई तक उसको अच्छी प्रकार मिलाते हैं।
0: अच्छा,
1: इसके बाद 15 से 20 दिनों तक पानी भरा रखते हैं, 6 इंच ऊंचाई तक पानी भरा रखते हैं।
0: जी,
1: इसके बाद खरीफ ऋतु में धान एवं रबी की में गेहूं की फसल लेनी चाहिए।
0: जी, जी।
1: और यह फसल चक्र लगातार 3 से 4 वर्षों तक लेने से ऊसर भूमि का सुधार हो जाता है।
0: अच्छा, तो इस तरह से जो तरह से बतावत बाटे जिप्सम अगर खेत में फैला दे ही और फैलाए के बाद पानी लगा दे ही, तो का उसमें जौन जौन क्षारी तत्व होते भाई वो जमीन के नीचे कुछ चला जाते हुई जौन से माटी जौन हो जहाँ की जड़ फैले थी उनका कुछ कम तत्व मिल पाई?
1: देखिए, इससे क्या होता है कि जो लवण होते हैं वो जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं।
0: जी जी,
1: और मृदा में चले जाते हैं।
0: जी जी,
1: जिससे उसका प्रभाव नहीं हो पाता है।
0: तो इस तरह से कुछ सुधार किया है इसे?
1: जी, और देखिए कुछ कार्बनिक सुधारक भी हैं।
0: हाँ, बता दीजिए।
1: जैसे ऊसर भूमि के सुधार के लिए फार्ड में यार्ड मनोर, सीरा, गन्ने की खोई, हरी खाद, फसलों के अपशिष्ट भाग तथा कुछ खरपतवार,
0: जी जी,
1: ये जो है इनको अच्छी तरह से खेत में फैला करके, जुताई करके और लगातार इसमें पानी भर के, सड़ा करके,
0: जी,
1: और लवणों को की काफ़ी जो है इससे क्या होता है कि इसमें अम्लीय गुण पैदा होते हैं।
0: जी जी,
1: और जो लवण होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा काफ़ी कम हो जाते हैं।
0: तो इसी उस सुधार में इस,

0: कुछ जो है सहायता मिलत है। एक चीज और जानना चाहे भैया, जैसे कहा जाता है उसर जमीन के पानी जो है खेत में जाए वह उसरेली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कैसे किसान भाई को बचे चाहे?
1: देखिए इसके लिए आप जल निकास वहीं करें जहां पर
0: जी
1: कि जैसे नाले से बाहर चला जाए, किसी दूसरे के खेत में न जाए।
0: अच्छा, ये ध्यान दे जाए,
1: ये ध्यान दे रखना चाहिए।
0: तो भैया आप आए ना और इतना बढ़िया जानकारी दें कि कैसे उसर सुधार किया जाए, ये सब जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ऊसर भूमि सुधार कैसे करें विषय पर अभी आप डॉक्टर वेद प्रकाश यादव से की गई चंद्रजीत यादव की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार मौर्य की वार्ता, बदलते मौसम में बच्चों में होने वाला सामान्य संक्रमण।
1: सर्वप्रथम हम बात करेंगे नमी से होने वाली बीमारियां, जो वातावरण में बरसात के समय में नमी बढ़ने की वजह से फैलती हैं। ज़्यादातर ये श्वसन तंत्र से फैलती हैं। इसमें पहली सबसे मुख्य बीमारी है जो सबसे ज़्यादा फैलती है, वो है मौसमी इन्फ्लुएंजा या जिसको फ्लू बोलते हैं। साधारण भाषा में इसको हम सर्दी जुकाम भी बोलते हैं। इसके लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द, अत्यधिक थकान, खांसी, गला खराब होना, बहती या भरी हुई नाक और मांसपेशियों में दर्द। ऐसी बीमारियों में ज़्यादातर केवल एक बुखार की गोली से या बुखार की सिरप से काम चल जाता है। फ्लू के टीके भी होते हैं, लेकिन वो 60 साल से ऊपर के लोग या फिर जिनको गंभीर बीमारी है जैसे फेफड़े की बीमारी या फिर गुर्दे की बीमारी, उनमें दिया जाता है अक्सर। अगली बीमारी है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या जिसको हम बोलते हैं निमोनिया। इसमें ऊपर से लेकर फेफड़े तक कोई भी परेशानी जैसे कि नाक कान गले में इन्फेक्शन या दर्द होना, साथ में कभी कभी कान में भी दर्द होता है, और इसका इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फेफड़ों में परेशानी हो जाती है। इससे तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दर्द होता है। कभी कभी छाती में सांस लेते समय गड्ढे भी पड़ते हैं। ये एक सीरियस कंडीशन है और ऐसे केसेस में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगली बीमारी है खसरा, जो कि ज़्यादातर केस में एक हल्की बीमारी होती है, लेकिन कभी कभी इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, बहती नाक, खांसी, लाल आँखें या फिर आँखों से पानी आना। कभी कभी इस बीमारी में ज़्यादातर केस में लाल शरीर पे धब्बे पड़ जाते हैं और रैशेस जिसको बोलते हैं, ये रैशेस स्टार्ट होते हैं कान के पीछे से, चेहरे पर, गले में और उसके बाद शरीर के अन्य हिस्सों में भी वितरित हो जाते हैं। इसके जटिल परिणामों में कान में दर्द, कान में इन्फेक्शन या फिर कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है ये बीमारी। अगली बीमारी है वायरल बुखार। वायरल बुखार में आमतौर पर केवल बुखार आता है, जो कि तेज से मध्यम बुखार हो सकता है। शरीर में दर्द, अस्वस्थता या कभी कभी सूखी खांसी और उल्टी भी बच्चों में होती है। इस तरह के लक्षण अगर कोई मिलता है तो उनके इलाज के लिए हमें डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही है। इनसे बचाव के लिए हमारे पास जो उपाय हैं, बार बार हाथ धोएं, छोटे बच्चों को छूने से पहले तो अवश्य धोएं। अगर श्वसन संक्रमण या वायरल बुखार है तो पीड़ित लोगों उसके संपर्क में ना आएँ या उनसे दूरी बना के रखें। यदि फ्लू की बीमारी आपको हो गई है या आपके बच्चे को हो गई है या वायरल बुखार हुआ है, खूब सारा तरल पिएं और बच्चे को प्रोत्साहित करें तरल पीने के लिए। खांसते छींकते समय मुंह पर टिश्यू या रुमाल रखें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बच्चों को घर के अंदर वायु प्रदूषण जैसे कि माता पिता धूम्रपान कर रहे हैं तो उनसे बचाव करें। प्रथम 6 महीने यानी कि शुरू के 6 महीने के बच्चों को केवल माँ का दूध दें और उसके बाद से उसका पौष्टिक आहार शुरू करें। निमोनिया या कोई भी जटिल परिस्थिति में आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। छोटे बच्चों का स्तनपान बीमारी में भी जारी रखें और पर्याप्त मात्रा में भोजन और तरल पदार्थ देते रहें।

0: यदि खांसी 7 दिन या उससे अधिक है और निमोनिया के लक्षण हैं तो उस समय अपने चिकित्सक की परामर्श अवश्य लें। अगली कुछ बीमारियां हैं जो पानी की वजह से होती हैं। बरसात के समय में पानी ज़्यादातर संक्रमित हो जाता है क्योंकि गंदी जगह से बहाव होता है। इसमें सबसे प्रमुख बीमारी है दस्त या हैजा। दस्त के लक्षण हैं कि बच्चे को बार बार पतला मल होता है और बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसमें हैजा सबसे खतरनाक होता है। इसमें बच्चों के शरीर से पानी और कुछ पोषक तत्व जैसे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं और प्राण घातक भी हो सकती है ये बीमारी। इससे बचाव के लिए सुरक्षित स्रोत से पानी पिए, उबला हुआ पानी या क्लोरिनेटेड वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाएं। खाना पकाने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। मानव अवशिष्ट या मल को अच्छी तरह निपटारा करें, यानी कि कोई भी नाली खुली ना रहे और कहीं इधर उधर मल त्याग ना करें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ हमेशा धोएं। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए संभावित तरल पदार्थ जैसे कि नमकीन दही पेय, नमक के साथ सब्जी या चिकन सूप या नमकीन चावल का पानी, इसके अलावा ORS उपलब्ध हैं बाज़ार में, जिसको एक ठीक मात्रा में डॉक्टर की परामर्श के हिसाब से बनाकर और बच्चे को देते रहें। तेज बुखार, मल में खून आना या फिर चिकनाई आने की स्थिति में अपने डॉक्टर से परामर्श तुरंत करें। अगली बीमारी है वायरल हेपेटाइटिस, जिसको हम साधारण भाषा में पीलिया भी बोलते हैं। बच्चों में जो पानी की वजह से या खाने पीने की वजह से पीलिया होता है, वो होता है हेपेटाइटिस ए। ज़्यादातर ये खतरनाक नहीं होता, लेकिन इसके परेशानियाँ बहुत होती हैं, जैसे कि बुखार आना, आँखें पीला दिखना, पेट में दर्द, बार बार उल्टी होना और भूख ना लगना। कभी कभी ये बीमारी घातक हो सकती है। अगर कोई भी आपको ऐसे लक्षण लगें कि बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है और मुंह से कुछ नहीं ले पा रहा है, तो अपने चिकित्सक का परामर्श लें तुरंत। अगली बीमारी है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो गंदे पानी से या संक्रमित आहार से फैलता है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, अस्वस्थता, भूख न लगना, सिरदर्द, कब्ज या दस्त। इन सब बीमारियों की स्थिति में जो भी बचाव है वो बिल्कुल हैजा वाले बचाव की तरह ही हमें करना पड़ेगा।
1: बदलते मौसम में बच्चों में होने वाला सामान्य संक्रमण। अभी आप डॉक्टर नरेंद्र कुमार मौर्य की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। रात 9:30 बजे संस्कृति भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन और दिन में 12:15 पर सुनिएगा रामशंकर का ख्याल गायन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कलाकार होंगी पूर्णिमा राय और शाम 7:45 पर नेहा चटर्जी। सुबह 10:05 पर सुनिएगा अनुराधा श्रीवास्तव और तेरस लाल।

0: सुबह 10:05 पर सुनेगा अनुराधा श्रीवास्तव और 13 लाल और साथियों के गाय लोकगीत। दिन में 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे राजा राम यादव और साथी, आशा राम पटेल और साथी और छिदी लाल और साथी। सुबह 10:30 पर हमारे संग्रहालय से के अंतर्गत प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क से सत्यप्रकाश मिश्र की भेंटवार्ता प्रसारित होगी। दिन में 12:30 पर फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें दिन में 1:15 पर सुमन खन्ना की वार्ता सुनेंगी, व्यस्त जिंदगी में परिवार के लिए समय कैसे निकालें। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे शंकर लाल पाल और साथियों के गायन लोकगीत। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता होगी, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। और रात साढ़े आठ बजे अटल ऑडिटोरियम राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में आयोजित 20वें रोजगार मेला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट प्रसारित होगी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप सुन रहे थे आज के कार्यक्रमों के विवरण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य 20तमस्य रोजगार इति आजीविका मेलकस्य अन्तर्गतं विविधेषु प्रशासकीयेषु विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 150,000 नियुक्तिपत्राणि दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन वितरिष्यति। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयिष्यति। इदम् आजीविकामेलकं देशस्य 45 स्थानेषु आयोजयिष्यते। नवनियुक्ताः अभ्यर्थिनः भारतप्रशासनस्य विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च कार्यभारं स्वीकरिष्यन्ति। एतेषु राजस्व विभागं, रेलमन्त्रालयं, गृहमन्त्रालयं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयं, वित्तीय सेवा विभागं, रक्षा मन्त्रालयं च समेत्य अन्ये विभागाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य वातावरणगतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्मिन् विषये आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। द्विदिवसीयस्य अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं राष्ट्रिय हरिताधिकरणेन क्रियते। सम्मेलने पर्यावरण विशेषज्ञाः, सर्वोच्च न्यायालयस्य उच्च न्यायालयानां जनपद न्यायालयानां च न्यायाधीशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। विभिन्न मन्त्रालयानां सचिवाः, वरिष्ठाः प्रशासकीयाधिकारिणश्चापि कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। सम्मेलने 17 प्रतिष्ठिताः न्यायाधीशाः, न्यायिकप्रतिनिधयश्च सहभागं करिष्यन्ति। भारतं संयुक्तारबामीरातश्च प्रादेशिका शान्तेः, सुरक्षायाः, स्थैर्यस्य च संवर्धनाय कृतेषु प्रयत्नेषु निरन्तरसहकारं समन्वयं च प्रति स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुनः प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह ह्यः संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन दूरभाषेण सम्पर्कः कृतः। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानानां घटनाक्रमाणां विषये परस्परं विचारान् प्रकटितवन्तौ। उभाभ्यां देशाभ्यां व्यापकसामरिकसहमतिम् अधिकं सुदृढीकर्तुम् ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्वास्थ्याञ्च समेत्य नूतनेषु उपायेषु चर्चा कृता। संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरे हार्दिक्यः शुभकामनाः प्रेषिताः तथा भारतस्य सफल ब्रिक्स अध्यक्षतायै तस्य अभिनन्दनमपि कृतम्।

0: प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलने शेख खालिदस्य सहभागितायै तथा भारतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं महत्वपूर्णानां परिणामानां प्राप्तौ सति संयुक्तारबामीरातस्य सहयोगस्य सहमतेः च प्रशंसां कृतवान्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्रसंघस्य निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया ह्यः सम्पन्ना। अस्मिन् निर्वाचने 8.41% मतदानं पञ्जीकृतम्। मतदानं द्वयोः चरणयोः सम्पन्नम्। ध्यातव्यमिदं यत् अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिव चेत्येभ्यः पदेभ्यः मतदानं जातम्। मतगणना अद्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य उत्तरपरिसरे स्थितस्य विश्वविद्यालय क्रीडांगणस्य बहुद्देशीय सभागारे भविष्यति। ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवस्य 20तमस्य संस्करणस्य भव्योद्घाटन समारोहः अद्य जापान देशस्य आइशी नागोया स्थिते पालोमा मिजुहो क्रीडांगणे भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 2:30 आरप्स्यते। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री मनु भाकर अथ तजिंदर पाल सिंह तूरः च उद्घाटन समारोहे भारतस्य ध्वज वाहकौ भविष्यतः। एशिया क्रीडा अद्यारभ्य अक्टूबर मासस्य 4th दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

अभी आप महेंद्र कपूर के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन।

सबसे पहले हम आपको प्रणय फिल्म की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है रामानंद शर्मा की, संगीत दिया है जयदेव ने और स्वर है शर्मा बंधु का।

0: इसी के साथ फिल्मों से भजन अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। एनसीआर से जुड़े 8 जनपदों में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की बैठक। पुराने वाहनों, नई ईवी नीति और औद्योगिक प्रदूषण पर हुई चर्चा। प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। और मथुरा सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है राधा अष्टमी का पर्व। बरसाना के राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करेंगे। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 818 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, जबकि शेष 797 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से जुड़े नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर सहित 8 जनपदों में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बैठक की। इस अवसर पर पुराने वाहनों, नई ईवी नीतियों, इलेक्ट्रॉनिक बसों, प्रदूषण प्रमाण पत्र, औद्योगिक प्रदूषण और धूल प्रदूषण पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से एनसीआर से जुड़े जनपदों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।
3: पॉल्यूशन को लेकर के सभी नगर निगम जो एनसीआर के हैं, उधर हमने विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई है। पिछले दिसंबर से अभी तक लगभग 30 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया है और अब राज्य अनुसार जो सिटी स्पेसिफिक प्लान है उस पर भी कार्यवाही की गई है। पिछले दिनों एनसीआर के जो 63 छोटे छोटे शहर आते थे नगर निगम, उनके भी जो पंचायत के जनपद के

0: अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, नगर निगम के मेयर हैं, उनके साथ हमने विशाल बैठक करी और अभी हमने निर्देशित भी किया है इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए।
1: बैठक में आगामी सर्दियों के दौरान प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी समयबद्ध और समन्वित कार्ययोजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा संकल्प महोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और

0: अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा संकल्प महोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और देश प्रदेश में हुए सकारात्मक बदलाव की कहानी को सरल और संगीतपूर्ण नाटक के माध्यम से शहरों और गांवों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 30 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक कराए जाएंगे, जबकि 10 विशिष्ट स्थलों, 98 जनपद स्तरीय स्थलों और 826 ब्लॉक स्तरीय स्थलों पर थीम पर आधारित रंगोली बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे वक्फ कानून में 2025 में किए गए संशोधन ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के साथ ही उनके दुरुपयोग पर रोक लगाई है। एक रिपोर्ट।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सरकारी जमीन पर किसी भी दावे की जांच अब जिलाधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी और पहली बार हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान भी खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में किए गए संशोधन को मुस्लिम समाज के हित में उठाया गया कदम बताया।
2: मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी, गरीब पसमंदा मुसलमान, महिला, बच्चे के हक भी महफूज है।
1: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन से मुस्लिम महिलाओं और यतीमों का सशक्तिकरण हुआ है।
3: वक्फ संपत्तियों के और बेहतर संरक्षण और बेहतर रखरखाव और खास करके आम जनता को जो बेनिफिशरीज हैं और खास के महिलाएं हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनके लिए जो है इसके अंदर जो है बहुत अच्छी एक सोच रख के इसको जो है इसमें संशोधन किया गया।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों का संरक्षण बढ़ा है और आम जनमानस को इससे फायदा पहुंच रहा है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी को लेकर किए जा रहे परीक्षण कार्य में प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
4: जांच के अंतर्गत राज्य और जिले स्तर की प्रयोगशालाओं से प्रदेश भर में भूजल स्रोत, भूमिगत व ओवरहेड टंकी समेत पानी के अन्य स्रोतों की पड़ताल की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 48,055 भूजल स्रोतों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके मुकाबले प्रदेश में 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर ली गई है। यह कुल लक्ष्य का 94.39% है। राज्यवार रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यूपी जल निगम ग्रामीण प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मथुरा सहित प्रदेश भर में आज राधाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। तड़के 4 बजे से ही लाडली जी के अभिषेक के साथ दर्शन और पूजन का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि भाद्रपद माह की शुक्ल अष्टमी को बरसाना में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी पर्व पर बरसाना स्थित श्रीजी मंदिर की भव्य सजावट की गई है। आज पूरे दिन यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मथुरा SP सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि बरसाना क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है, जबकि 325 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल रूम से आयोजन स्थल और आसपास की निगरानी करेंगे।
5: इस बार दो रास्ते, जो एक जो श्री जी गेट से कटारा पार्क होकर के सुदामा चौक तक जा रहा है और दूसरा रास्ता हम लोगों ने इस बार प्रारंभ किया है जो पीली कोठी से और ये लाडो गेट होकर के सुदामा चौक तरफ जाएगा। इन दो रास्तों से श्रद्धालुओं को हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुल 38 होल्डिंग एरिया

0: बनाए गए हैं और 11 प्रेशर पॉइंट हैं जहां पर हम लोगों ने 30 शिफ्ट में भारी पुलिस बल लगाया है।
1: केंद्र सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। एनसीआर से जुड़े 8 जनपदों में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की बैठक। पुराने वाहनों, नई ईवी नीति और औद्योगिक प्रदूषण पर हुई चर्चा। प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। और मथुरा सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है राधा अष्टमी का पर्व। बरसाना के राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, राग है चारुकेशी। तबले पर आपके साथ संगत की पंडित पंकज कुमार श्रीवास्तव ने। तो आइए सुने संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, राग है चारुकेशी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप संदीप चक्रवर्ती का राग चारुकेशी में संतूर वादन सुन रहे थे। तबले पर आपके साथ संगत की पंडित पंकज कुमार श्रीवास्तव ने। यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्रा के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

0: से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
1: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
4: The government is supporting the sector through technology transfers.
5: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
3: गैलेक्सी आई के CEO सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूर दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश

0: कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
3: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला, दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचईएल ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में 9 मुकर्ररा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा ने इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद के तय अपने अज़्म को दोहराया है। RBI ने कहा है कि भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात में साल ब साल की बुनियाद पर 8.2% का इजाफा हुआ। इस तरह ये 2025-26 में 221 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की हो गई। आज से जापान में 20वें एशियन गेम 2026 का आगाज होगा। तफसील से, वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले के मौके पर आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए तकर्रुरशुदा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुल्क भर में 45 मकामात पर 20वें रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। नए तकर्रुरशुदा उम्मीदवारों को वजारत खजाना, रेलवे, उमूर दाखिला, सेहत और ख़ानदानी बहबूद और वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ वजारतों और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया जाएगा। 20वें रोजगार मेले के साथ ही मजमूई तौर पर तकरीबन 12,75,000 नौजवान तकर्रुरनामे हासिल करेंगे। रोजगार मेला नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुल्क की तरक्की के सफर में उनकी शराकतदारी को बढ़ाने को यकीनी बनाने के हुकूमत के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेज यकजा होंगे। मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर सरकारी अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासती अदलिया से मुतालिक एकेडमीज, कानूनी खिदमात की रियासती अथॉरिटीज, माहिरीन की रियासती अप्रेजल कमेटियां, माहौलियात के असरात का जायजा लेने वाली रियासती अथॉरिटीज और दलदली जमीन से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इसमें 17 मुल्कों के मुमताज जजेस और अदलिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अदलिया से मुतालिक नजरियात के इजहार, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। शुरका अहम माहौलियाती और आबोहवा की तब्दीली के मामलात पर बातचीत करेंगे। इनमें पॉलिसी साजी, अमल दरामद और पॉलिसी लागू करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, हुक्मरानी और इदारा जाती तआवुन को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीके भी तलाश किए जाएंगे। आदाद व शुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत ने कुछ मुंतखब जिलों की मेहनत मार्केट का मुख्तसर जायजा पेश किया है। आदाद व शुमार के कौमी दफ्तर ने जिला सतह की बुनियादी मेहनत मार्केट के अंदिये पहली बार जारी किए। तकरीबन 57.8% जिलों में खवातीन की अफरादी कुव्वत की शिरकत की शरह LFPR 40% या इससे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। ज्यादा आबादी वाले सरकर्दा 50% जिलों की कारकुनों की आबादी का तनासुब WPR 37.3% से लेकर 76.7% तक रिकॉर्ड किया गया।

0: सबसे ज्यादा आबादी वाले 100 जिलों के तहत गुजरात के शहर सूरत में एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर की सबसे ज्यादा सतहें रिकॉर्ड की गईं, जबकि ये बिहार के शहर दरभंगा में एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर की सबसे कम शरें थीं। गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। वजारत दाखिला के नुमाइंदों ने लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल की सदारत में कमेटी को बिल की दफात के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के चेयरमैन संजय जायसवाल ने कहा कि मीटिंग दोस्ताना माहौल में हुई और अरकान ने बहुत से सवाल किए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंटर सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: कमेटी में स्पीकर की तरफ से नामजद लोकसभा के 21 अरकान और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। 12 अगस्त को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल पर मजीद गौर खौस के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सामने पेश किए जाने से इत्तेफाक किया था। बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदही पर मबनी बनाने के लिए 2010 के इस बिल में तरमीम करना है। भारत में स्वदेशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2026 में कारोबारी माहौल का ताजा तरीन सर्वे कराया था। उसमें 40 से ज्यादा आलमी मार्केट्स के कारोबारी माहौल में भारत का पहला मकाम रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल के सोशल मीडिया में मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का कारोबारी माहौल इस्तेहकाम, तरक्की और कारोबार को आसान बनाने के लिए बेहतरीन पैमाने मुकर्रर कर रहा है। हालांकि आलमी सतह पर एक तरह का बुहरान पाया जाता है। कारोबारी माहौल के 2026 के सर्वे में 21 मार्केट्स का गहराई से जायजा पेश किया गया है, जिसे बैरून मुल्क कारोबार के स्वदेशी कंपनियों के तनाजुर का एक वसी मंजर फराहम होता है। सर्वे का मकसद बुनियादी स्वदेशी बरामदाती मार्केट्स में इक्तसादी कारकर्दगी, खाके और कामकाज के हालात के तकाबुल के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करना है। इस जायजे में कंपनियों को दरपेश चैलेंजेस भी जाहिर किए गए हैं और उन स्वदेशी कंपनियों के लिए मौके की निशानदेही भी की गई है जो नई मार्केट्स में दाखिले या मौजूदा मार्केट्स में तौसी में गौर खौस कर रही हैं। नंदीग्राम असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के एक पुराने अराजी के हुसूल के खिलाफ तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सराय ने बताया कि इस मामले में प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। 2007 की नंदीग्राम तहरीक से मुतालिक मुख्तलिफ मामलों में मुबैना तौर पर उनका नाम सामने आया था। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल उठाया है और इसके लिए बीजेपी पर बदले की सियासत का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी ने इन इल्जाम को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि पुलिस की कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तिजारत और सनत के वजीर जनाब पीयूष गोयल ने भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी मोहदे CEPA पर तबादला ख्याल के लिए कनाडा के बैनुल अक्वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू के साथ मीटिंग की कल नई दिल्ली में। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने बातचीत में तेजी लाने और मोहदे की जल्द अज जल्द तकमील की यकीन दहानी की। तवक्को है कि CEPA सामान, खिदमात, सरमायाकारी और इक्तसादी तावुन के दीगर शोबों में तिजारत के नए मौके पैदा करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने इसे एतमाद का इजहार किया कि CEPA की जल्द तकमील से दोतरफा तिजारत और भारत कनाडा इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल होगी। भारत के खलाई शोबे की असलाहत जो भारत की खलाई पॉलिसी 2020 में शुरू की गई थी, उससे मुल्क का खलाई प्रोग्राम हुकूमत की इजारादारी से एक मुतहर्रिक मुकाबला जाती सरकारी प्राइवेट इको निजाम में तब्दील हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खलाई शोबे की असलाहत से खलाई टेक्नोलॉजी को तरक्की देने में मदद मिल रही है। खला से मुतालिक स्टार्टअप गैलेक्स आई, जिसकी बुनियाद IIT मद्रास में इंजीनियरों की एक टीम ने रखी थी, उसने मिशन दृष्टि तैयार किया है जो दुनिया के पहले ऑप्टो SAR सैटेलाइट के तौर पर इसका एक सबूत है। खलाई शोबे में असलाहत सरकारी प्राइवेट शोबे के लिए हौसला अफजा हैं और इसमें खला के शोबे में इको निज़ाम तख्लीक देने और कामकाज में इजाफे में मदद मिल रही है। बेंगलुरु से सुधेंद्रु की

0: रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारत की सॉफ्टवेयर खिदमत की बरामदात साल बसाल की बुनियाद पर 2025-26 में 8.2% इजाफे के साथ 221.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी पर मबनी खिदमत की बरामदात से मुतालिक कल शाया हुए सालाना सर्वे के मुताबिक 7,569 सॉफ्टवेयर बरामदकार कंपनियों से सर्वे के लिए राबता किया गया, जिनमें कुछ बड़ी कंपनियों समेत 2,363 कंपनियों ने रद्दअमल जाहिर किया। इन कंपनियों का मुल्क की कुल तखमीना सॉफ्टवेयर बरामदात में तकरीबन 89% हिस्सा है, जो मस्कूरा साल के दौरान भारत की मजमूई सॉफ्टवेयर खिदमत की बरामदात का 2/3 से ज्यादा है, जबकि बीपीओ खिदमत आईटी से वाबस्ता खिदमत की बरामदात के सबसे बड़े जुजू के तौर पर बरकरार रही। अमरीका को की गई 54.1% बरामदात के साथ अमरीका भारतीय सॉफ्टवेयर बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट रहा है। इसके बाद यूरोप 31.8% भारतीय सॉफ्टवेयर बरामदात के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि बरतानिया का हिस्सा कुल बरामदात का 15.4% रहा। सॉफ्टवेयर खिदमत ज्यादातर ऑफ साइट मोड के जरिए फराहम की गई, जिनका हिस्सा 91.7% रहा। सॉफ्टवेयर खिदमत की मजमूई बरामदात में बैरून मुल्क तिजारती बरामदात भी शामिल हैं। 2025-26 में यह बरामदात 9.5% से बढ़कर 239.3 अरब डॉलर हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुतला किया है कि भारतीय कंपनियों की गैर मुल्की जैली कंपनियों के मकामी सॉफ्टवेयर कारोबार की मालियत 2025-26 में बढ़कर 17.9 अरब डॉलर हो गई, जो एक साल पहले 13.9 अरब डॉलर थी। इसके साथ ही अमरीका और बरतानिया भारत के लिए बदस्तूर अहम मार्केट का दर्जा रखते हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाली अंडमान समंदर पर आज शाम तक हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में आहिस्ता आहिस्ता इसमें शिद्दत आने और मगरबी शिमाल मगरब समत में दाखिल होने और जनूबी ओडिशा से शिमाली आंध्र प्रदेश के साहिलों की जानब बढ़ने का इम्कान है, जिसके नतीजे में 2 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासतौर पर रियासत के जनूबी हिस्सों में बारिश में इजाफा हो सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खलीज बंगाल के ऊपर हवा का कम दबाव बनने के तनाजुर में 2 सितंबर के आसपास ओडिशा में बारिश में दोबारा इजाफा हो सकता है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के दबाव के हल्के के ओडिशा के साहिल की जानब बढ़ने के साथ ही वहां बारिश की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसमियात का महकमा मौसमी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कोहाट जिले में एक मस्जिद के नजदीक कल हुए धमाके में 15 पुलिस जवानों समेत 21 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। कोहाट अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ताहिर शाह के मुताबिक इस वाकये में 73 पुलिस जवान और 30 शहरी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि यह धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ और उसकी शिद्दत से मस्जिद के नजदीक एक गहरा गड्ढा बन गया। पुलिस ने मजीद बताया कि नामालूम हमलावरों ने जाय वाकया से बचकर निकलने से पहले चेक प्वाइंट को निशाना बनाया था। अलबत्ता मिलिटेंट ग्रुप इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। 20वें एशियन गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज जापान में एची नोगाया के पोलामो मिजुहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे मुनाकिद होगी। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तेजेंद्र सिंह टूर इस तकरीब के परचमबरदार होंगे। एशियन गेम्स का इनेकाद आज से 4 अक्टूबर तक होगा और इसमें 37 खेलों में 500 से ज्यादा भारतीय एथलीट मुकाबला करेंगे। भारतीय दस्ते में चोट की वजह से नेजा फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम वापस लिए जाने के बावजूद इन्फरादी जुमरे में एक ओलंपिक मेडल जीतने वाले 5 एथलीट शामिल हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आज 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नए मुंतखब होने वाले अफराद को तकरीनामे तकसीम किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मोदी रोजगार मेले में 51,000 तकरीरनामे करेंगे तकसीम। रोजनामा प्रताप ने वजीर खाजा एस जयशंकर के भूटान दौरे को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार ने लिखा है कि भारत भूटान में रियायती कर्ज पर तवानाई समेत 5 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के जरिए दिल्ली में MBBS की सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। इंतखाबी कमीशन के जरिए तृणमूल कांग्रेस के इंतखाबी निशान और नाम के तनाजे को हल किए जाने को भी उर्दू अखबारात ने नुमाया किया है।
1: आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में 9 मुकर्रर नौजवानों को 51

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, आज बातें होंगी विश्व गुरु की, यानी अपने देश की, अपने भारत की ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान की। श्रोताओं, हम ऐसे देश के वासी हैं जिसने समस्त विश्व को ज्ञान दिया, जिसकी प्राचीन ज्ञान परंपरा ने विश्व के अंधकार को दूर किया। जब विश्व में हजारों साल पूर्व ज्ञान का अभाव था, हमारे अपने भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। नालंदा में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक थे। उस समय यहाँ बौद्ध धर्म, गणित, खगोल, आयुर्वेद, व्याकरण सब कुछ पढ़ाया जाता था। हम सब ये तो जानते ही हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं कि न्यूटन ने दिया था। तो आप जानकर ये गौरवान्वित होंगे कि आज से 500 साल पहले 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को पहले ही परिभाषित कर दिया था। सुश्रुत और चरक को हम कैसे भूल सकते हैं। चरक संहिता के माध्यम से हमारे चिकित्सा विज्ञान को इन्होंने नई ऊँचाइयाँ प्रदान की। अभी तक हमने जितनी भी ज्ञान की बातें आपको बताई, ये केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा भी थीं।

बात तो सही है कि हम भारत के ही लोग हैं जो सबसे प्यार से रहते हैं, और अगर कुछ पास हो भी तो उस पर गर्व तो करते हैं, घमंड नहीं करते। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान केवल जानकारी भर नहीं था, यहाँ पर संस्कार भी था। प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा में शिष्यों को पूरी तरह गुरु को

सौंप दिया जाता था। फिर जो शिक्षा दी जाती थी उससे सक्षम और शालीन व्यक्तित्व का निर्माण होता था। आज जो हम आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ अन्य विधाओं की भी शिक्षा दी जाती है, ये हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है। योग, जिसका सामान्य अर्थ जोड़ना होता है, ये भी हमारे देश की देन है। अब तो हम हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आयुर्वेद के जरिए जो रोग चिकित्सा होती है उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, कहाँ तक गिनाएं हम अपनी समृद्ध परंपरा के विषय में। भारत की आज़ादी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी था, रास्ता कठिन था, लेकिन हमारे ज्ञान की परंपरा ने उस कठिन रास्ते को आसान बना दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, CV रमन आदि, इन सब ने ये दिखा दिया कि भारतीय बौद्धिक संपदा आज भी विश्व को नई दिशा दिखा सकती है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने पूरे विश्व को याद दिला दिया कि हम आज भी विश्वगुरु हैं। हम प्राचीन ज्ञान के उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान के अग्रणी देश भी हैं। अभी हाल ही में 4 सितंबर को EOS-05 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। इसके ज़रिए हमारा ये जो सैटेलाइट है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से देश के किसी भी हिस्से पर नज़र रख सकता है। ये सैटेलाइट एक ही बार में बड़े हिस्से की तस्वीर ले सकता है। इसके ज़रिए चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नज़र रखी जा सकती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, जंगलों की आग, चक्रवात में भी अहम भूमिका निभाएगा। श्रोताओं, ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, केवल इसका रूप बदलता है। भले ही हमारे विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रांताओं ने खंडहर बना दिया, लेकिन वो हमारे ज्ञान को नष्ट नहीं कर सके। नालंदा से लेकर श्री हरिकोटा लॉन्च तक एक ही सूत्र है, जिज्ञासा और लगन।

0: ज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल डिग्री या नौकरी नहीं होता। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो घने अंधकार को दूर करके उसे प्रकाशमान बना देता है, अंधेरा चाहे अज्ञानता का हो या संदेह का। हम अपने सुधी श्रोताओं से यही कहेंगे कि हमें पढ़ने की, ज्ञान प्राप्त करने की आदत बनानी चाहिए। कोई भी विषय हो, उसकी किताब को एक बार पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए, क्योंकि यही हमारी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाता है। क्यों ना आज से हम एक संकल्प लें कि एक नई चीज़ सीखेंगे, एक किताब पढ़ेंगे या बस एक सवाल पूछेंगे। ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बस चलती रहती है।
1: अपना या हमने मतलब के लिए अंधे होकर।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ, और उसके बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत का ये पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से।
1: De repente, y da sentido toda mi vida con tu querer.
2: Na me samjha, na me jana, jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi, na jaane kyun, mujhe sunke achha laga hai señorita.
1: No desvíes la mirada.

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अब हम आपको प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की आवाज़ों में दिल धड़कने दो फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं। लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान फिल्म का उषा उत्थुप और साथियों का गाया ये गाना, लिखा है इंदिवर ने और संगीत है बप्पी लहरी का।

0: ये था आज का फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 9:15 होने को हैं, थोड़ी देर में अगला प्रसारण होगा।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और उन्नाव जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
2: सितंबर के पहले पखवाड़े में जिले में अलग अलग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई। धार्मिक, प्रशासनिक, अपराध, आर्थिक, मौसम, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास से जुड़ी गतिविधियां चर्चा में रही। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी दिवस की गतिविधियां प्रमुख रही। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों में क्विज, पोस्टर प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और कविता पाठ आयोजित किए गए। कार्यक्रम में हिंदी को तकनीक और शोध से जोड़ने पर जोर दिया गया। जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकियां सजाई गई। भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम हुए। सहारनपुर पुलिस ने 20 रुपए के नकली सिक्के बनाने वाले बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। नगर कोतवाली पुलिस ने SOG और सर्विलांस टीम के साथ कार्यवाही कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 6400 नकली सिक्के यानी करीब 1.28 लाख रुपए की खेप बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक नकली सिक्कों की फैक्ट्री हरियाणा के सोनीपत में चल रही थी और गिरोह का नेटवर्क पंजाब से बिहार तक फैला था। पुलिस के अनुसार गिरोह अब तक 70 करोड़ से अधिक के नकली सिक्के बाजार में खपा चुका है। मुख्य सरगना उपकार लुथरा वर्ष 2001 से इस धंधे में सक्रिय था और दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। SSP अभिनंदन ने बताया,
3: इस गैंग का जो मुख्य सरगना है वो है उपकार लुथरा, जो कि मोहाली पंजाब का रहने वाला है, और इसमें कुल 8 लोग हैं पूरे गैंग में, जो कि अलग अलग चीजों को हैंडल करते थे। इनके पास से स्विफ्ट डिजायर और इको स्पोर्ट, ये हम लोगों ने बरामद किया है, और कुल 6400 सिक्के जो 20-20 के डिनोमिनेशन के हैं, लगभग 1,28,000 रुपए जिनकी कीमत है, उसको हम लोगों ने बरामद किया है, और इनके मोबाइल फोन्स जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो सब हम लोगों ने बरामद किया है। तो एक बड़े नेटवर्क को हम लोगों ने पकड़ा है और आगे भी इस पूरे नेटवर्क की कड़ी कहाँ कहाँ जुड़ेगी इस चीज का भी हम लोग इसको डेवलप करेंगे, और कौन कौन लोग अगर इसमें शामिल होंगे सभी को कानून की कार्रवाई की जद में हम लोग लाएंगे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
2: जिले में सरसावा पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 9 चोरी की बाइक बरामद की। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल चोरी के मामलों में भी पुलिस कार्यवाही जारी रही। मौसम परिवर्तन के चलते जिले में इस माह बुखार का प्रकोप बढ़ा। जिले में करीब 2000 मरीजों की जाँच की गयी, जिनमें 1500 लोगों में टाइफाइड की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बदलते मौसम और बढ़ते बुखार के मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गयी है। बादल और बारिश के बीच कभी तेज धूप तो कभी उमस भी रही। धान और गन्ने की फसलें भी बीमारियों की चपेट में आई। विभिन्न संस्थाओं और अस्पतालों की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। अंबाला रोड स्थित गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज में CIS द्वारा आयोजित शिविर में चिकित्सकों ने लोगों की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। अध्यक्ष रविंदर मिगलानी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर की उपस्थिति में इसका उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सैनी द्वारा किया गया। नगर निगम की एक मुफ्त समाधान योजना यानी OTS का करदाताओं ने लाभ उठाया। अब तक 913 आवेदन आए, जिनमें 695 का निस्तारण किया जा चुका है। श्री जहारवीर गोगावीर जी महाराज की स्मृति में आयोजित होने वाले सहारनपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ऐतिहासिक मेला घुघाल 21 सितंबर से शुरू होगा। आयोजन के लिए महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम ने 1.99 करोड़ का बजट पास किया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से मेले में सुरक्षा, यातायात, सफाई, पेयजल, प्रकाश और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सहारनपुर अग्निशमन सेवा को 18,000

0: लीटर क्षमता वाला नया फायर टेंडर मिला। बड़े अग्निकांड की स्थिति में यह वाहन राहत और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जिले में सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया। यह 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सेवा और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद वर्गों तक सेवा गतिविधियों को पहुंचाना और जन भागीदारी बढ़ाना है। जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और अन्य जन सेवा से जुड़े कार्यक्रम किए जाएंगे।
1: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव के तहसील सदर के अंतर्गत सराय कटियान स्थित औद्योगिक कॉरिडोर के एंटीग्रेन मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एक निजी वैश्विक पैकेजिंग कंपनी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 40 एकड़ क्षेत्र में फैली लगभग 2,000 करोड़ रुपये की निवेश वाली इस परियोजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा आने वाले समय में लगभग 2.2 अरब बेवरेज कैन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ यह प्लांट उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विनिर्माण इकाई के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों को इन्वेस्टमेंट के लिए केवल जमीन ही नहीं मिलती, उसे बेहतर कनेक्टिविटी, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, मजबूती बुनियादी ढांचा, कुशल मानव संसाधन, व्यापक उपभोक्ता बाजार और अनुकूल नीति का पूरा इकोसिस्टम मिलता है। श्री नंदी ने कहा कि सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और अन्य महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट का प्रावधान किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। संस्कृत विभाग द्वारा उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पारिवारिक विरासत से जुड़े बदरका गांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से यहां बहुउद्देशीय परिसर का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसका 75% से अधिक काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना पूरी होने के बाद बदरका गांव न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सुविधा संपन्न केंद्र बनेगा, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने वाले महत्वपूर्ण विरासत स्थल के रूप में विकसित होगा। इस परियोजना के तहत मुख्य भवन में 450 लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय हॉल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग ग्रीन रूम व शौचालय, ब्लॉक स्टाफ रूम, कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, पेंट्री, लाइब्रेरी और स्टोर रूम बनाए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में यहां विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। इस योजना को लेकर पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बदरका को केवल एक स्मारक स्थल के रूप में नहीं बल्कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को नई पीढ़ी तक पहुँचाने वाले महत्वपूर्ण विरासत केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जिले में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे आर सिंह ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं व जिला अस्पताल में 6 बेड आरक्षित है।
3: उन्नाव में हम लोगों ने सभी एमओसी के साथ बैठक करके सबको निर्देशित कर दिया गया है कि अपने यहाँ 2 बेड सीएससी पर 2 बेड और सीएमएस में जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पे 6 बेड कम से कम इसके लिए आरक्षित कर लिए गए हैं। इसके अलावा दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास है। वर्तमान में जो टेमीफ्लू हमारे पास वो पर्याप्त है, सीरप भी पर्याप्त है। इसके अलावा जो मास्क वगैरह है वो हमारे पास अभी पर्याप्त है। इसके अलावा कुछ जो स्टेट से निर्देश मिले थे, स्टेट्स के निर्देश के माध्यम में हम लोगों ने डिमांड भी करी है कि आगे अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम उसके हिसाब से हम लोगों ने दवाइयों की और अन्य जो लॉजिस्टिक है उसकी हम डिमांड भेज दी गई है।
2: वहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है, जहां फ्रंटलाइन वर्करों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों में किसी तरह का भय न फैलने दें। उन्हें लक्षणों के आधार पर मरीजों को उचित सलाह देने के लिए कहा गया है। डॉक्टर जे आर सिंह ने इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लक्षणों को 3 श्रेणियों में रखा है, जिसमें कैटेगरी ए में सामान्य लक्षण होते हैं जिनमें खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश और बदन दर्द शामिल है। ऐसे मरीजों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें घर पर आराम करने, बुखार की दवा लेने और परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। कैटेगरी बी में लक्षण अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होते हैं, इसमें खांसी, बुखार और बदन दर्द बढ़ जाता है। B1 श्रेणी में मरीजों को घर पर आइसोलेट रहने और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार लेने की आवश्यकता होती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कविता मिश्रा की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय के केंद्रीय हॉल में दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए प्रभारी न्यायाधीश द्वारा अधिक से अधिक वाद सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित किए जाने का आह्वान किया गया, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में जनपद

0: न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक अधिकारीगणों द्वारा मोटर दुर्घटना, बैंक रिकवरी, वैवाहिक व विद्युत संबंधी वादों सहित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 99,079 वादों का सफल निस्तारण किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देश गान।

0: ये आकाशवाणी प्रयागराज है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ की

तो आज की सुबह कुछ ऐसे ही एहसासात के नाम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ मरकज, मैं हूं आपका मेजबान शमसुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं और ये है आपकी अपनी सुबह की महफिल नगमगी।

आज की महफिल में भी एक कहानी है। एक दिल है जो पहले खुद अपनी कैफियत से हैरान है, फिर उसे एहसास होता है कि शायद उसे इश्क हो गया है, मगर इश्क की राह आसान कहाँ। फिर वही मोहब्बत खामोश होती है, आंखों से बयान होती है और आखिरकार एक याद बनकर रह जाती है। तो आइए आज की इस नगमगी का आगाज करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद हर आशिक ने कभी न कभी अपने दिल से ज़रूर किया होगा।

सामिन, दिल की कैफियत भी बड़ी अजीब चीज है। जब तक दिल खामोश रहे सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब किसी की याद उसकी धड़कनों में शामिल हो जाए तो फिर सवाल भी बदल जाते हैं। अभी हमने सुना, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, शायद जवाब भी मिल गया, इश्क। लेकिन इश्क का नाम लेना आसान है, इश्क को निभाना नहीं। मोहब्बत में सिर्फ हंसी नहीं होती, इंतजार भी होता है। सिर्फ कुर्बत नहीं होती, फासले भी होते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि दिल किसी को अपना मान चुका होता है, मगर जिंदगी उसे अपना कहने की इजाजत नहीं देती। इसीलिए कहा गया है, इश्क आसान नहीं। तो आइए अगली पेशकश में सुनते हैं मोहब्बत की उसी मुश्किल राह की दास्तान।

सामिन, इश्क की मुश्किल राह का सबसे खूबसूरत और सबसे तकलीफ देह पहलू शायद यही है। दिन गुजर जाता है लोगों के बीच हंसते हुए, लेकिन रात रात तो दिल से कोई पर्दा नहीं रखती। रात की तन्हाई में वही चेहरा सामने आता है, वही आवाज याद आती है, और फिर आंखें वो कह देती हैं जो जबान कह नहीं पाती। तो आइए अब उस मोहब्बत की तरफ चलते हैं जो दुनिया से छुपी रही मगर आंखों से छुपी।

सामिन, कुछ आंसू किसी के सामने नहीं बहाए जाते, वो बस रात की तन्हाई में तकिए से अपना हाल कहते हैं। इंसान रो लेता है मगर मोहब्बत कम नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ एक नया रंग ले लेती है। मुलाकात की जगह याद ले लेती है, गुफ्तगू की जगह खामोशी और क़ुर्बत की जगह एक ख्याल, पीछे रह जाती हैं तो बस याद।

याद कितना छोटा सा लफ्ज है, मगर अपने अंदर पूरी जिंदगी समेटे हुए है। लेकिन दोस्तों, यादों के साथ जीना भी एक फन है। हर गम को जाहिर कर देना जरूरी नहीं होता, हर दर्द का तमाशा बनना मोहब्बत की तौहीन भी हो सकती है। कुछ लोग टूट कर भी खुद को बिखरने नहीं देते, शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, गम अगर दिल में रहे तो उसे दिल की शान बना लीजिए, मगर अपने वकार को उस गम की कीमत मत बनने दीजिए।

0: सामईन, ये था आज की नगमगी का सफ़र। सामईन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ मरकज़, और ये थी आपकी अपनी महफिल नगमगी। तो सामईन, आज की इस खसूसी महफिल यानी नगमगी से अब अपने मेज़बान शमसुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्णिमा राय के गाए भजन। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्णिमा राय के स्वर में ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थी पूर्णिमा राय। आप सुन रहे थे इनके गाए भजन। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप

0: सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े एक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में प्रधान को अपने दल का समर्थन देने की घोषणा की। पुलिस ने बताया कि प्रधान के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रधान का नाम 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े कई मामलों में है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के जल्द पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। ये सर्वेक्षण विदेश में कारोबार करने के लिए स्वीडन की कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोह स्टेडियम में होगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माही में भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए लोक माधुरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत। आज कलाकार हैं अनुराधा श्रीवास्तव और तेरस लाल और साथी। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा श्रीवास्तव के स्वर में ये देवी गीत।

अनुराधा श्रीवास्तव के गाये लोकगीतों के बाद अब हम आपको तेरस लाल और साथी के स्वर में सुनवा रहे हैं ये गंगा गीत।

अनुराधा श्रीवास्तव के गाये लोकगीतों के बाद अब हम आपको तेरस लाल और साथी के स्वर में सुनवा रहे हैं ये गंगा गीत।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे संग्रहालय से के अंतर्गत भेंट वार्ता। प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क से ये भेंट वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं। भेंट करता है सुप्रसिद्ध समालोचक सत्यप्रकाश मिश्र।

0: अश जी, आप 82 साल के हो गए और हिंदी तथा उर्दू दोनों ही भाषाओं में मिलाकर लगभग 150 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी। आपकी कई पुस्तकों का संसार की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका। पंजाबी में भी आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। इतनी लंबी साहित्यिक अवधि में आपने हिंदी साहित्य को, उर्दू साहित्य को, पंजाबी भाषा को बहुत कुछ दिया है। निस्संदेह साहित्य की दृष्टि ये एक बड़ी देन है। लेकिन इधर हिंदुस्तान में, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ घट चुका है। इन पिछले 10 वर्षों के अनुभव ने, सामाजिक बदलावों ने, राजनैतिक बदलावों ने, लोकतंत्र के चुनाव ने आप पर निश्चय ही बहुत व्यापक प्रभाव डाला होगा। फिर हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में जो कुछ लिखा जा रहा है उससे आप भली भांति अवगत हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, निरंतर उससे सजग रहते हैं। इस बीच में जो कुछ आपने लिखा है संस्मरण के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, या कहानी और नाटक के क्षेत्र में अगर कुछ लिखा हो, काव्य पुस्तकें दो आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, संस्मरण दो खंड प्रकाशित हो चुके हैं, इन सब में पहले के लेखन की तुलना में क्या नया है जिसको पढ़ करके कोई ये कह सके पाठक कि ये पिछले 10 वर्षों का अनुभव अश्क जी के इन रचनाओं में दिखाई पड़ता है? पिछले 70 साल की जिंदगी का अनुभव ये 10 साल की जिंदगी के अनुभव से जुड़ करके कुछ नया देता है।
1: अब सत्य प्रकाश जी, बात यह है कि लेखक दो तरह के होते हैं। एक वो लेखक होते हैं जो दैनंदिन जिंदगी पे तुरंत संवेगों से प्रचालित होकर लिखते हैं। दूसरे लेखक वो होते हैं जो भोगे हुए को 10-5 बरस बाद या 20 बरस या 30 बरस बाद उसको लिखते हैं और सही परिप्रेक्ष्य में देखकर वो साहित्य सर्जना करते हैं। मैं दूसरी तरह के लेखकों में हूँ। एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के दिनों में रूस की क्रांति पर स्टालिन पर लोगों ने कविताएं लिखी, बाद में स्टालिन बाद हो गए, वो कविताएं बेकार हो गई। तो तुरंत संवेगों पर लिखी गई कविताएं एक आरजी अस्थाई महत्व रखती हैं। अब मैं तो पिछले 50 साल से सिर्फ एक किताब लिख रहा हूँ। आप मुझसे ये डिमांड नहीं कर सकते कि मैं जो 50 साल से किताब लिख रहा हूँ, जिसकी रूपरेखा मैंने 50 साल पहले बनाई थी, उसमें आज का आ जाए। ऐसे सीधा तो नहीं आएगा। लेकिन चूंकि इस बीच मैंने बहुत ज़िंदगी भोगी है, जो सवाल आपने उठाए हैं वो पिछले 50 साल के संदर्भ में किस रूप में आए हैं, वो जैसे ये छठा खंड है, इसमें कुछ चैप्टर्स में लगातार आज की समस्याओं पर उस जमाने में एक बहाना लेके 153A का और राजपाल की हत्या का सारी बातें कह दी। तो ये जो उपन्यास होते हैं ये स्थाई होते हैं और आज से 100 साल बाद भी प्रासंगिक अगर नहीं रहते तो लिखना बेकार है। फिर मैंने विधाएं बांटी हुई हैं। कुछ ऐसी विधाएं हैं जिन पे मैं डे टू डे आज की बात कहता हूँ, जैसे पीली चोंच वाली चिड़िया की बेशुमार कविताएं हैं, या ये जो मेरा खंड काव्य है, कैसे आज की पूरी बात नहीं कहता, आज का पूरा जीवन उसमें प्रतिबिंबित है, एक पागल के माध्यम से पढ़ लीजिए। तो मैं तो ऐसे लिखता हूँ और ऐसे मैंने लिखा है। अगर ना हो ये तो इतनी चर्चा क्यों हो?
0: नहीं तो अश जी, आपके कहने का तात्पर्य, और आपने हमारा ख्याल है कुछ खोया और कुछ पाने वाली पुस्तक में लिखा भी खोने और पाने के बीच में, कि अदृश्य नदी से लेकर के पीली चोंच वाली चुड़िया के नाम, और ये जो अभी छप करके स्वर्ग एक तलघर है आपकी काव्य पुस्तक आई है, इसमें तीनों में कुछ सामाजिक जिंदगी का सामयिक वर्णन

लोक मधुर कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अनुराधा श्रीवास्तव और तेरस लाल और साथी के गाए गीत लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: आपने किया है। आपके जो पिछले उपन्यास रहे हैं, चाहे वो गिरती दीवारें हो, चाहे एक नन्ही किंदील हो, इन उपन्यासों में भी कम से कम आपका जो अनुभव है उसको पढ़ करके ये लगता है कि यह तात्कालीन उथल पथल से, तत्कालीन समाज की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ अनुभव है, और अपने उपन्यासों में आप उसका काफ़ी विविध, काफ़ी विस्तार से प्रभावपूर्ण वर्णन करते रहे हैं। निमिषा में जो आपका उपन्यास इस पिछले 10 सालों में ही छपा है, उस उपन्यास में जो नारी की समस्या आपने उठाई है, क्या वो निमिषा की जो नारी है वह चंपा से या चंदा से या सत्या से कुछ भिन्न है?
1: हाँ, भिन्न तो है, भिन्न तो है, क्योंकि वो अपनी कीमत पर जीना चाहती है। वो कहता है तुम चोरी से मेरे साथ शादी कर लो, वो इनकार कर देती है, तो भिन्न है। और वो बबांगे दुहल चौड़े दिहाड़े अपने रिश्तेदारों की नामंजूरी मंजूर करते हुए लेकिन उनको कह के शादी करना चाहती है। वो नारी मॉडर्न है। वो जो उसका प्रेमी है या जिससे वो प्रेम करती है, वो एक मुनफाल आदमी है, ढुलमुल यकीन है, जैसे कि कलाकार होते हैं और निम्न मध्यवर्गीय घर से जुड़े हुए लोग होते हैं। उसका चित्रण उसी तरह से हुआ है जैसे कि निम्न मध्यवर्गीय घर से जुड़े हुए लोगों का होता है। ये अपर वर्ग की है और माता पिता मर गए हैं, आज़ाद हो गई है और पूरे तौर पर आज़ाद औरत है। ये बात
0: एस जी, आपके पिछले उपन्यासों में भी और आपने कई जगह अपने साक्षात्कारों में और लेखों में लिखा भी है कि आपके पूरे काव्य का केंद्रीय तत्व, तो जहाँ तक वर्गों का सवाल है, मध्यम वर्गीय और विशेषतः निम्न मध्यम वर्गीय रहा है। ज़्यादातर आपके उपन्यास और कहानियों के पात्र निम्न मध्य वर्ग के रहे हैं, कुछ एक पात्र मध्यम मध्य वर्ग के या उच्च मध्य वर्ग के रहे हैं। निम्न मध्य वर्ग के पात्रों के, विशेष रूप से स्त्री पात्रों का जो वर्णन आपने किया है, वह ज़्यादातर ऐसा लगता है कि एक घरेलू, एक गृहस्थ वर्णन है, जो कहीं कहीं तो जरूर टकराता है बाहरी बदलावों से, लेकिन बाहरी बदलावों से बड़ी सीमा तक समझौता करता है। तो निमिषा में भी जैसा कि मुझे लगता है और मैंने पढ़ा है कि उसमें भी जो प्रमुख पात्र है वो कभी कभी तो कोशिश करती है टकराने की, लेकिन वो भी उसी निम्न मध्यवर्गीय मकर जाल में फंस करके रह जाती, ऐसा क्यों है?
1: देखिए, एक बात मैं आपको काट के कहना चाहता था कि ये तो ठीक है कि 40 साल हो गए, समाज में बदलाव आ गया, पर हमारी आंतरिक जिंदगी में बहुत बदलाव नहीं आया। अरे, पहले औरतों को जलाया नहीं जाता था, अब जलाया जाता है, और बद से बदतर हो गई है जिंदगी, हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन पिछड़ापन आ गया है और ज़्यादा आ गया है। साहित्य के लिए अब कोई नहीं रहा है, पहले तो था, तो हालात बदतर हुए हैं, इसलिए जो मैं लिखता हूँ उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई।
0: आपने अपने काव्य ग्रंथों में विशेष रूप से पीली चोंच वाली चिड़िया के नाम और ये स्वर्ग एक तलघर है में, जहाँ तक मुझे याद है कि कहीं भी इस समस्या का जैसा भी आप उल्लेख कर रहे हैं, स्त्रियों के प्रति यह जो अमानवीय और क्रूरतम स्थितियाँ हैं, इसका उल्लेख सीधे तौर पर तो नहीं किया है, और मेरी जानकारी में अब शायद जो आप उपन्यास लिख रहे हैं उसके अगले खंड में इस तरह की स्थितियों का चित्रण आए, लेकिन ये सही है कि जो मनुष्य में मूल्यों की गिरावट है और साथ ही साथ जो पूरा हिंदुस्तान या पूरा देश बड़े व्यापक स्तर पर आपके हिसाब से पागल से कहीं ज़्यादा कुछ बदतर हो रहा है, जो आपके इस स्वर्ग एक तलघर है का मूलभूत विषय है, और जो आप, जहाँ तक मुझे याद है, एक उसी की कविता का एक हिस्सा है कि जब हमाम में सब नंगे हों, निन्नी मामा सही दिखेंगे, मेरे जैसा हो जिसको मूल्यों की चिंता, सबको सहज दिखेगा पागल, जिसमें प्रकारांतर से आपने अपने को भी एक तरह से पागल सा दिखने की बात की है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल्यों की इतनी बड़ी चिंता इधर आपके उपन्यास, आपके मूल रूप से काव्य ग्रंथों में, लेखन में जो विकसित हुई है, इससे क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता आश जी कि आप आज के जीवन के प्रति कुछ ज़्यादा ही कुछ निराश हो गए हैं क्या?
1: नहीं, निराश तो देखिए इंसान के प्रति मैं हूँ ही नहीं। कारण ये होता है कि अगर आप पुराना इतिहास पढ़ें, और मैं तो पूरे परिप्रेक्ष्य में, सदियों के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, चिंतक हूँ, तो हमारे समाज में कई अंधेरे युग भी आए हैं। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हम एक अंधेरे युग की ओर बढ़ रहे हैं। इकबाल ने अपनी एक गज़ल में ये लिखा है कि कौम गोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम,

0: और उसने लिखा है कि अगर कौम जिसमें है तो उसके जो वेरियस लोग हैं वो उसके अज़ा हैं, और ये जो दौलतमंद और सरमायादार और संस का ये उसके अज़ा हैं, और महफले तर्ज़ हुकूमत चेहरा है ज़ेबाए कौम, और ये जो हुकूमत का प्रशासन है ये उसका चेहरा है। लेकिन शायर रंगी नवा है दीदा है बीनाए कौम, जो शायर है वो इस कौम की इस जिस्म की आँख है, जब कोई अंग दर्द करता है तो आँख रोती है, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आँख। अब जब आप शायर को यानी कि अदब को यानी कि साहित्य को संस्कृति से बात कर देंगे तो जाहिर है कि हालात तो बस से बदतर हो ही जाएंगे, पर इस पे कोई आने वाला लिखेगा? मैंने तो इशारे किए हैं, मैं तो इशारे करता हूँ, लेकिन आज से 8-10 साल बाद जो हालात होंगे उस पर लिखेगा। लेकिन नज़र ये आता है कि अमेरिका की तरह यहाँ का भी साहित्य माफिया का इसका जैसे वहाँ ये सब चलता है इस पर लिखा जाएगा, और मूल्यों का विघटन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालांकि हमारा सारा चिंतन मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए ही है।
1: अशी, जब आपको मूल्यों के प्रति इतनी अधिक चिंता है, और प्राय आप कहते भी हैं, इंटरव्यूज में भी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के लेखों में भी कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो आपका चेहरे अनेक का छठा खंड है या पांचवा खंड है, बल्कि पूरी माला ही है, उसमें जिस प्रकार से आप अपने से संबद्ध व्यक्तियों की और आपके अनुसार और लगता भी है अपने बारे में भी जिस प्रकार की स्थितियों का चित्रण करते हैं, घटनाओं का चित्रण करते हैं, क्या वो मूल्य परंपरा में बाधा नहीं उत्पन्न करती आपको ऐसा लगता?
0: कैसे करती है? दोष तो इंसान में होते हैं। अगर आप मूल्यों की प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो उन दोषों को जानना तो होगा ही। अगर आदमी अपने दोषों को जानता है और उनका चित्रण करता है तो उनका दंश तो काट ही देता है। अगर आपको पता हो कि मुझ में ये दोष है, दोष तो आप दूर नहीं कर सकते अगर आपकी आदत का अंग बन गया है, क्योंकि वो संस्कारों से दोष होते हैं, संस्कारगत होते हैं। तो जब आप उन दोषों को इस खुली तरह से कहते हैं तो आप जानते हैं और उनको थोड़ा कम कर देते हैं। और अगर आपने चेहरे ने एक ध्यान से पढ़ा है तो वो तो जिंदगी का एक शास्त्र मैंने लिखा है, और अंत में सूत्र दिए हैं। जैसे मैंने विद्वेष पर दूसरा खंड लिखा है और अपने ही विद्वेष की बात की है और किस संदर्भ में की है ये भी लिखा है, लेकिन अंत में लिखा है कि जो आदमी विद्वेष पालता है वो उतनी देर तक सफ़र करता है, और भाव प्रवण आदमी की ये ट्रेजेडी है कि बदला लेने के बाद भी वो सुख नहीं पाता।
1: जिस साहित्यिक जिंदगी की चिंता चेहरे अनेक में आपने की है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि मात्र उतनी ही अश्क की साहित्यिक जिंदगी है?
0: नहीं, ये तो देखिए सवाल है, मैंने सिर्फ दोषों पे लिखा। मुझे मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ज्यादा क्यों उसमें उम्मीद करते हैं, जबकि मैंने तो दोषों पे लिखा है। अब जो गुण है, गुण तो मुझ में होंगे ही, अब गुणों पे तो दूसरे लिखेंगे या मुझे इतना टाइम मिलेगा मैं गुणों पे लिखूंगा, किन गुणों के कारण मैं ये कर पाया?
1: और दूसरों के गुणों पर कौन लिखेगा जो चेहरे अनेक में वर्णित हैं?
0: तो गुणों पर भी लिखा जा सकता है, मैंने लिखा भी है। जैसे कि अगर आप परतों के आर पार पढ़ें तो उसमें चंद्र हासन पढ़िए, चंद्र हासन पर मेरा संस्मरण पढ़िए, मेरा हमदम मेरा दोस्त बेदी पे पढ़िए। क्यों नहीं गुणों पे लिखा? गुणों पर भी लिखा है लोगों के जिनमें हैं, पर गुण जैसे कि सत्येन कुमार ने अभी एक पत्र में लिखा है कि बड़े लोग बहुत कम हो गए हैं, छुटाई बढ़ती चली जाती है। आप पूरे दिल्ली के परिदृश्य को देख लीजिए, यहाँ के परिदृश्य को देख लीजिए, पुराना ज़माना क्या सुनहरी ज़माना नहीं लगता आज के संदर्भ में? दो आदमी मिलते नहीं हैं कभी।
1: अजी, आपने अच्छी बात की, और आप ये प्रायः कहते रहे हैं कि पुराने ज़माने के जो लेखक थे उनसे भी आपने सीखा, और इसको बड़ी बेबाकी के साथ कई जगह आपने कहा है कि ज्ञान से मैंने ये सीखा, अमुक से ये सीखा, अमुक से ये सीखा, कवियों के बारे में भी कहा है। तो पिछले 10 साल में जो आपकी इतनी लंबी यात्रा रही है, तो जाहिर है अनेक नए लेखक आपके सानिध्य में आए होंगे, उनसे आपने रूबरू चर्चा की होगी, उनकी रचनाओं पर चूंकि आप लिखते रहते हैं, अभी अभी सद्या प्रकाशित कई पत्रों में और एक दो लेखमालाओं में भी आपने नए लेखकों का कहानीकारों का जिक्र किया है, तो फिलहाल क्या ऐसा कोई रचनाकार आपकी निगाह में इन पिछले 10 सालों में आया जिसने अश्क जैसे इतने बड़े लेखक को कुछ प्रेरित किया हो?
0: नहीं, हाँ जरूर किया है। देखिए मैं तो ग्रहणशील आदमी हूँ, हाँ। मैं तो अपने पाठक से भी जो मुझे आलोचना करके भेजते हैं कई बार सीखता हूँ। एक बार चुरू से खत आया गिरती दीवारें पर, एक एक पेज पढ़ के उन्होंने 13 पेज का खत लिखा और गलतियाँ लिख दी,

0: ये गलतियाँ इसमें। मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया। मैं एक कहानी सुना रहा था अपने भाई को, अंत में उन्होंने कहा कि इसका अंत ये होना चाहिए, पुअर हेडर। अरे मैंने कहा भाई साहब कमाल कर दिया आपने, फौरन मैंने उसको अंत किया। अभी मैं अभी ये जो खंड काव्य आप कहते हैं, ये दूसनाथ मुझसे नाराज़ भी थे, मेरे मित्र हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, और वो मुझे मिलने आया अस्पताल में। मैंने कहा दूसनाथ से बैठे बैठे तुम मुझे ज़रा पढ़ लो। उन्होंने पढ़ा, कहा जी इसमें पिछले 10 पेज कमज़ोर हैं। मैंने कहा वो जल्दी में मैंने लिख दिए हैं क्योंकि मैं आ रहा था अस्पताल, वो ये मैं लिखना चाहता हूँ, अजीब वही आना चाहिए। अब वो बड़ा मुश्किल था, एक बहुत ही सख्त बीमारी की हालत में, एक फिजिकल पेन में वो सब आइडिया आ गया, और मैंने लिखा और भेजा दूरनाथ को। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक बन गया। तो भाई क्यों नहीं, मैं तो सीखता भी हूँ और दिखाता भी हूँ और राय भी लेता हूँ जिनको मैं मानता हूँ। अब जिनको मैं मानता ही नहीं उनसे मैं कैसे राय ले सकता हूँ। सत्येन है बहुत अच्छा कहानीकार, बहुत मानता हूँ मैं उनको, और भी हैं जिनको मैं मानता हूँ। मैं ग्रहणशील आदमी हूँ, मैं हर एक से सीखता हूँ। अब लोग नहीं सीखते मैं क्या कर सकता।
1: अभी आपने बीमारी का जिक्र किया, तो इतनी बार बीमारी का जिक्र आप करते रहते हैं कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि आप बीमार हैं। लेकिन एक जगह जहाँ तक मुझे याद है कहीं आपने लिखा है कि आपने अपने पद्य काव्य ज्यादातर बीमारी में लिखे हैं, जैसे दीप जलेगा
0: अधिकांशता।
1: तो ये जो आपका स्वर्ग एक तलघर है, ये पद्य काव्य है, क्या इसे भी आपने बीमारी में ही लिखा है?
0: नहीं, वो 10 पेज जो पिछले थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे, वो मुझे बहुत तकलीफ हो गई यही दमे की बरसात में, तो एक फिजिकल भी तकलीफ हो गई। तो उस फिजिकल पेन में अब मुझे सूझ गया, कारण ये होता है कि दिमाग मेरा सत्य प्रकाश जी आप माने या ना माने 24 घंटे काम करता है। मैं जब बात भी करता हूँ किसी से, खाना भी खाता हूँ, आमतौर पर तो मेरे घर में रेडियो बंद कर देते हैं सब, लेकिन मैं बात करता हूँ भी। कई बार मेरी बीवी कहती, मैं कहता हूँ रुको जी मैं कविता लिख रहा हूँ, योग अभ्यास कर रहा हूँ, बात करती है, तो मेरा दिमाग का एक हिस्सा हमेशा वर्क करता रहता है। तो अब इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता कि जो कहीं फंसी हुई चीज़ है वो कब कैसे। मैंने देखा है कि तीव्र पेन में शायद दिमाग पलायन चाहता है, ऐसा है शायद, और उसमें वो चीज़ बन जाती है।
1: हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं, घर बड़े रचनाकार को कुछ, किसी को सुर्ती खाने की आदत है, किसी को अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो लगता है ऐसा है। क्या आपको बीमारी से कुछ ताकत मिलती है या प्रेरणा मिलती है?
0: पलायन, जैसे ये जो खंड काव्य है मेरा दूसरा, बहुत सशक्त खंड काव्य है, अफसोस है कि उसकी चर्चा नहीं हुई, अच्छा छपा नहीं, चांदनी रात और अजगर, वो मैंने पीलिया की बीमारी में 3 महीने में लिखा था, मुझे याद आ गेजी आए थे तब मैं लिख रहा था। कारण ये है कि बीमारी तो बीमारी है, तकलीफ होती है तो उससे मन भागता है।
1: शायद एकांत मिलता हो?
0: एकांत तो है ही, लेकिन मन भी तो भागता है। तो मैंने देखा कि क्रोध में, गुस्से में, झगड़े में मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ।
1: ये स्वर्ग एक तलघर है की भूमिका में आपने लिखा है कि जहाँ तक है मैंने अनेक खंड काव्य पद्य कथाएं हैं। एक मूलभूत प्रश्न ये होता है कि अगर ये सभी खंड काव्य एक वर्णात्मक शैली में लिखे गए हैं और इनका केंद्रीय वृत्त कथा का है, तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये मूलतः पद्य में लिखी हुई कहानियां ही हैं?
0: देखिए ऐसा है सत्यप्रकाश जी कि मैं केवल कवि नहीं हूँ, मैं कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार, कवि हूँ। इसलिए मेरी कथाओं में, कविताओं में भी, लंबी कविताओं में कथा तत्व या उपन्यास का तत्व या कहीं कहीं नाटक का तत्व, डायलॉग आ जाना स्वाभाविक है।
1: ये तो सही है कि जो बात कहती है वो, प्रश्न ये होता है कथा कहती है बात या कि मूलतः उसमें से निकलने वाला काव्य तत्व कहता है, ये एक अलग सवाल। लेकिन आप जो कविताएं लिखते हैं, एक तरफ तो अत्यधिक सजग हैं अपने पूरे साहित्य परंपरा के प्रति, अपने पौराणिक आख्यानों के प्रति जिसका उल्लेख आप प्राय करते हैं, साहित्य के निरंतर दैनंदिन होने वाले उथल पथल के प्रति, सामाजिक घटनाओं के प्रति इतनी अतिरिक्त सजगता है आपकी, और दूसरी ओर आपने कहीं कहा है कि कविताएं आप पर उतरती हैं लगभग वैसे ही जैसे कि ऋषियों को मंत्र दिखाई पड़ते थे या ये कि धर्म ग्रंथों में।
0: ऐसा नहीं है, मेरा कहना आमद का कवि हूँ, जोर बांध के कला कला के लिए जैसे लोग लिखते हैं बना के, मैं नहीं लिखता हूँ। मैं चूंकि फील करता हूँ, दुख भोगता हूँ, ये सब होता है, तो जब कविता का मूड होता तो उतर

0: तो है, ये तो ठीक बात है। चित्र उतरते हैं ऐसे कि ऐसे, जैसे कि आजकल मैं सर रियलिस्टिक कविताएं लिखता हूँ मॉडर्न, तो भाई वैसे ही चित्र आते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता।
1: लेकिन एक शाश्वत मूड लगता है कि आपकी सभी रचनाओं में पाया जाता है।
0: ये ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लिख रहा हूँ, और जैसे मैं 50 साल से नॉवल ही लिख रहा हूँ, अब इस साल में इन 10 सालों में 11 किताबें हिंदी में और 11 किताबें मैंने उर्दू में लिखी हैं, जिसमें 3-3, 4-4 बिल्कुल नई हैं। अब ये मैंने उर्दू अफसाना निवीसी के 40 वर्ष में लिखा, इतना शोर मचा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन वो लिखता नहीं है, कोई सच्ची बात तो कहता ही नहीं है। लोग बन के लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं। मैं कहता हूँ संस्मरण जब लिखते हो तो उसको अफसाना ना बनाओ, आप नावल लिखो, आप कहानी लिखो। अगर आप जीवनी लिखते हो तो सच लिखो। अब इसमें क्या बुराई है, अब लोग नहीं लिखते, और अगर कोई लिखता है तो उसको गाली देते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सच लिखता हूँ।
1: क्या आप ऐसा मानते हैं कि अफसाना जो है अर्थात फिक्शन, उसमें थोड़ा बहुत काल्पनिकता की या असत्य की गुंजाइश है, क्योंकि वो
0: बहुत ज्यादा।
1: और दूसरा ये है कि इसके ठीक विपरीत क्या आप मानते हैं कि संस्मरण और जीवनी में सच की ही गुंजाइश और केवल सच ही लिखा जा सकता है?
0: मैं समझता हूँ कि लिखना चाहिए, पर मैं भाई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं तो एक निम्न मध्य वर्ग का बीच का आदमी हूँ। मैंने तो कभी देखिए कभी कृष्णचंद्र का डिडम पीटा, कभी मंटो का, कभी मैंने तो कभी परवाह ही नहीं की, मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की। मैं तो अनवरत लिख रहा हूँ, मुझे ये सुख देता मैं लिखता हूँ।
1: अभी आपने सहसा अपने दोस्तों की भी याद इसी में कर ली, तो मुझे इसी 10 वर्ष के भीतर छपी आपकी पुस्तक मेरा हमदम मेरा दोस्त की याद आ गई। उसमें वेदी के कुछ खत आपने छापे हैं। हाँ। जिसमें एक खत में वेदी ने आपको लिखते हुए लिखा है, क्योंकि आप इतना ज्यादा लिख चुके हैं शायद उसी की ओर वेदी का ध्यान रहा होगा, कि कलम के इस घोड़े को इतना सरपट दौड़ाना क्या माने रखता है कि बेचारा मंजिल से कोसों दूर हाँफता हुआ गिरे और दम दे दे। उन्होंने भी पूछा है क्या यह सच नहीं है। मैं भी पूछना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा आपने लिखा है, और क्या आपको कभी कभी लगता है जी कि जितना कुछ आपने लिखा है वह सब कुछ महत्वपूर्ण है?
0: ये कैसे हो सकता है? हाउ इट्स नॉट पॉसिबल। होता यह है कि लिखना बहुत होता है, उसमें थोड़ा सा ऐसा रह जाता है जो 100 साल तक प्रासंगिक रहे, और उसी के लिए इतना ज्यादा लिखना होता है।
1: कभी कभी ये लगता है कि इधर आपने जो संस्मरण लिखे हैं, जो जाहिर है कि चेहरे अनेक के 5वें खंड में भी नहीं आए, हो सकता 6ठे खंड में आए, इन संस्मरणों के संदर्भ में अन्य लोगों ने भी कहा है कि ये जो आपका आर्षत तो है या रिसीप तो है, ये रिसीप तो इन संस्मरणों में क्या घुल सका है, घुल मिल सका है?
0: अब मैं ये नहीं जानता, मैंने बहुत ही क्रूरता से ये लिखा, ये क्रूर कर्म है, ये अच्छा कर्म नहीं है, ये नर्म कर्म नहीं है, ये क्रूर कर्म है। कोई आदमी दोषों का विवेचन करे और अपने सारे दोष लिखा दे, वो क्यों? आप कहेंगे आपके बच्चों को इससे बुराई मिलेगी, नहीं, इसलिए कि ये जानना तो चाहिए क्यों इन तमाम दोषों के बावजूद बॉदलेयर बॉदलेयर है, क्यों इतने दोषों के बावजूद टॉल्स्टॉय टॉल्स्टॉय हुआ, दोष तो उसमें भी बड़े थे। तो ये दोषों का आकलन सिर्फ इसलिए होता है कि इन दोषों को कैसे उस आदमी ने सिद्ध किया। जैसे दोषों से क्या फायदा उठाया, बीमारियों से क्या फायदा उठाया, और जो नाकामियां हुई उनसे क्या फायदा उठा। दो शेर मेरी जिंदगी का मोटो है, एक तो मीर का है, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया। नाकामियों से काम लेने की एक पद्धति है जिसको मैंने सीखा है मीर से। दूसरा मेरा शेर है कि फेंक दे चाहे हवादिश राह से हर बार दूर, जाएगी मंजिल कहाँ जब जिंदगी मंजिल में है। जब आपने पूरी जिंदगी मंजिल में लगा दी हो तो एक बार आए बुरे दिन वहां फेंक दिया, फिर आप उठ के मंजिल की तरफ चल दिए, फिर उधर जा पड़े, फिर आप उठ के मंजिल की तरफ चल दिए, तो वो कहीं जाएगी नहीं, ये निरंतरता उसमें बनी रहती है। जागरूक लेवल पर ये काम होता है और आदमी अपने आप को साधता है। रियाजत है, तपस्या है, तपस्वी है।
1: नहीं, ये तो सही है कि एक साहित्य भी अपने आप में एक तपस्या है, और नरेश जी की तरह से कहूं तो एक यज्ञ है, और आप उस यज्ञ में लीन हैं। ये मैं जानना चाहता हूं कि इतने प्रतिष्ठित नाटककार होते हुए और बहुत ही हिंदी में

0: महत्वपूर्ण नाटक लिखने के बाद पिछले 10 सालों में तो मेरी जहां तक जानकारी है कोई कहानी या नाटक आपका नहीं छपा। लिखा भी है आपने कि नहीं लिखा ये नहीं मानता, लेकिन मुझे याद है कि एक जगह आपने शायद आपकी जो नई पुस्तक है खोने और पाने के बीच में, उसमें आपने एक लेख लिखा है मेरी कथा यात्रा, उसमें आपने कहीं ये कहा है कि अगर मैं अगली कोई कहानी लिखूंगा तो वो आकाशचारी की तरह से होगी और उसमें कुछ घिला मिला यथार्थ और फंतासी का के बीच का कोई रास्ता होगा। और ये लगभग जो आपने अभी आपका काव्य संकलन उसमें भी कुछ घुला मिला यथार्थ और कुछ फंतासी मिली हुई है, तो क्या ऐसी कोई कहानी आप लिख रहे हैं या
1: लिख तो नहीं रहा, पर मेरे दिमाग में पूरी बनी हुई, एक सेकंड में लिख दूंगा जब भी प्रेरणा हुई उतरेगी, ऐसे ही है तो सब कुछ ठीक। संकोच था क्योंकि जिस पे लिखनी थी वो जिंदा थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इसलिए अब तो वो कोई संकोच नहीं है, लेकिन अब ली तो जिंदगी से है। दूसरी बात यह है कि सत्य प्रकाश जी, विधाएं दो हैं, जैसे कि उपन्यास है, जब मैं इतना बड़ा उपन्यास लिख रहा हूं तो कहानी नहीं लिख सकता, कविता ही लिख सकता हूं, संस्मरण ही लिख सकता हूं, इंटरव्यू ही दे सकता हूं। ये दोनों विधाएं, कहानी और उपन्यास, एक विधा है और नाटक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट विधा है। तो जब मैं उपन्यास लिख रहा हूं 750 पेज का, 10 साल में मैंने लिखा है, एंड इट इज ए प्रोफाउंड नावल, मेरे सारे नावलों में सबसे इंपॉर्टेंट ये छठा खंड होगा, सातवां उससे भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वरना लिखने का मतलब ही कुछ नहीं।
0: वो तो सही है,
1: तो उसके लिए तो जान दे ही रहे हैं। पर जब इतना ये होगा तो फिर कहानी सत्य प्रकाश जी नहीं हो सकती।
0: नाटक के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: नाटक तो मैं लिखा सकता था या लिख सकता हूँ, लेकिन फिर एक ही काम कर सकता हूँ, दो तीन जब मैं विधाएं एक वक्त में लिख सकता हूँ तो नाटक कहाँ से लिखूंगा।
0: इस समय आप क्या लिख रहे हैं फिलहाल?
1: इस समय मैं ये एक संस्मरण लिख रहा हूँ और कविताएं लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दो काम कर रहा हूँ। कविता बहुत लंबी बन गई है और बहुत परेशान कर रही है, और 10 दिन से वही लिख रहा हूँ, और छोटी छोटी कविताएं बीच में हो जाती हैं। और सुबह की चाय, ये एक शीर्षक है, सुबह की चाय, एक घंटा मैं 5 बजे चाय पीता हूँ, जो भी सोचता हूँ, और रोज कोई एक चीज तो सोचता नहीं, वो मैं 15 मिनट में टेप कर देता हूँ,
0: जो अंत प्रक्रिया टाइप जॉटिंग्स,
1: जो भी मन में आता है सवेरे, पिछली कल की घटना पर या आज की घटना पर या ऐसे ही अखबार में पढ़ी हुई घटना पर या कुछ भी, तो वो मैं करता हूँ। और ये भी एक किताब हो चुकी है, 2 किताबें।
0: आपने कोई डायरी अभी तक नहीं छपवाई मेरी जानकारी में?
1: डायरी तो मैं नहीं लिख सका, मैंने बड़ी बार कोशिश की, क्योंकि मैं लंबा लिखता हूँ, मुझे हर चीज़ बड़ी लंबी आती, मेरी याद बड़ी बड़ी फोटो जैने का, इसलिए डायरी नहीं लिख सकता। डायरी वो लिख सकता जो संक्षेप लिखे।
0: ये आश्चर्य का विषय है कि अस जी की कोई डायरी अभी तक नहीं छपी।
1: मेरी डायरी सारी यात्री के पत्रों में है, क्या लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, कब क्या लिखा, क्या आधा लिखा, क्या पूरा लिखा। अब यात्री के पत्र छपे तो मेरा कुछ पता चले।
0: अस जी, अब चूंकि आप लगातार लिख रहे हैं, सतत रचना रत हैं, तो इस प्रकार से एक दृष्टि से आपका लेखन भी एक अर्थ में सनातन हुआ। तो मैं चाहता हूं कि इस समय जो नवीनतम आपकी कविता हो वो आप सुनाएं।
1: ये 2 छोटी कविताएं हैं, जो लंबी कविता लिखते लिखते ऐसे ही बीच में आ गईं। पहली कविता का नाम है जिंदगी एक मुकद्दस शय है, मुकद्दस पवित्र। जिंदगी एक मुकद्दस शय है, एक बड़े कामयाब उर्दू अदीब ने कहा। जिंदगी एक मुकद्दस शय है, एक बड़े कामयाब उर्दू अदीब ने कहा, और ग़िज़ा भी मुकद्दस है जो जिंदगी को कुव्वत बख्शती है, और ग़िज़ा भी मुकद्दस है जो जिंदगी को कुव्वत बख्शती है। लेकिन कब बदतर हो जाती है जिंदगी मौत से, लेकिन कब बदतर हो जाती है जिंदगी मौत से और ग़िज़ा जहर से, इसे सिर्फ हसास लोग ही जानते हैं, हसास भाव प्रवण। दूसरी कविता है, और ये बिल्कुल 3-4 दिन पहले की है, और ये दरअसल मेरे ऊपर पूरी तरह फिट होती है, हसबे हाल कविता है। अचानक मेरा सबसे छोटा पोता हाथ में मेरा खुला हुआ लघु उपन्यास लिए हुए आया। मैंने सिर उठाया, देखा, आंखें फैली हुई, होंठों पर हल्की सी मुस्कान और कुछ कहने को बेतरा बेताब। मैंने प्रश्नवाचक आंखें उठाई, बोला।

0: पापा आपने बहुत अच्छा प्रोफेशन चुना है। बोला, पापा आपने बहुत अच्छा प्रोफेशन चुना है। प्रोफेशन चुना है? मैं मुस्कुराया, बेटे ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी जिंदगी है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बात अश जी आपने कही, ये कि जो आपके लगभग 82 वर्षों के साहित्यिक जीवन के बारे में जानता है वह यह बड़ी आसानी से नतीजा निकाल सकता है कि अश की जिंदगी और साहित्य में कोई अंतर नहीं है। आपकी इस कविता के अंतिम पंक्ति सुन के मुझे याद आ रहा है कि एक बार किसी ने आईएनएस्को का इंटरव्यू लिया था और एक सवाल पूछा था कि आपके लिए साहित्य क्या है। छूटते ही उसने जवाब दिया था, ब्रीदिंग, सांस लेना। लगभग ऐसी ही स्थिति आपकी भी है, और यह है अपने आप में साहित्य के प्रति और स्वयं जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को उजागर करती है। आपने काफी समय दिया, आप जैसा लेखन जो हर समय की कीमत साहित्य से वसूलना जानता है, इतना समय दे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद।
2: हमारे संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे सत्य प्रकाश मिश्र। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश कार्यक्रम एक ही कलाकार।

कुछ धुनें कानों से होकर दिल तक पहुंचती हैं और कुछ धुनें दिल में उतरकर जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं।

सलिल चौधरी का संगीत भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें मिट्टी की खुशबू थी, लोकगीत की सादगी थी, शास्त्रीय सुरों की गहराई थी और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा की अद्भुत रंगत भी।

सलील दास सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वे सुरों के ऐसे शिल्पकार थे जो एक छोटी सी धुन में पूरी कहानी कह दिया करते थे।

बंगाल की धरती से निकली सरोज चौधरी की संगीत यात्रा भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर तक पहुंची। फिल्म दो बीघा जमीन से हिंदी सिनेमा में उनकी आमद हुई और फिर जागते रहो, मधुमति, परख, काबुलीवाला, आनंद और छाया जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत को सिर्फ सुनाई देने वाली चीज़ नहीं बल्कि महसूस होने वाली संवेदना बना दिया।

गुजरे जमाने के जाने माने संगीतकार सलिल चौधरी पर केंद्रित आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर भी। सलिल चौधरी की धुनों में कभी गांव की पगडंडी दिखाई देती है तो कभी शहर की भीड़ में खोया हुआ इंसान।

कभी प्रेम की पहली दस्तक सुनाई देती है, तो कभी जीवन के संघर्षों की आहट, तो कभी अपने वतन को याद करता कोई इंसान।

सलील चौधरी भारतीय सिनेमा के उन विलक्षण संगीतकारों में थे जिन्होंने लोकधुन, भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा को एक अनोखे अंदाज में मिलाया। वे संगीतकार के साथ साथ गीतकार, कवि, लेखक और वाद्य संगीत के

सुर अगर सच्चे हों तो वक्त उन्हें मिटा नहीं सकता, गीत अगर दिल से निकले हों तो ज़माना उन्हें भुला नहीं सकता।

0: सच है क्या, सब सच है। जिंदगी ख्वाब है।
1: सलिल चौधरी एक नाम नहीं, भारतीय संगीत की वो खूबसूरत रवायत है जिसमें मिट्टी भी है, मोहब्बत

0: सच है क्या जिंदगी ख्वाब है।
1: सलिल चौधरी का जन्म 1925 में हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला और परिवार के वातावरण में ही उन्होंने संगीत की बुनियादी समझ हासिल की। आगे चलकर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन सलिल दा का संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं था। 1944 में वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के आंदोलन से जुड़े और बंगाल में उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं में रहे। उस दौर में उनके गीतों में समाज, संघर्ष और आम आदमी की आवाज़ सुनाई देती थी।

बंगाल और असम की लोक धुनें, भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियां, पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की ऑर्केस्ट्रेशन तकनीक, इन सबको सलिल चौधरी ने अपनी धुनों में इस तरह पिरोया कि संगीत नया भी लगता था और अपना भी। उनकी रचनाओं में कभी बांसुरी बोलती थी, कभी स्ट्रिंग्स का समूह कहानी कहता था, कभी लोक धुन वातावरण रचती थी और कभी कोई साधारण सी धुन सीधे दिल में उतर जाती थी।

मधुमती के संगीत के लिए सलील चौधरी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिला। बाद के वर्षों में उन्हें HMV सिल्वर डिस्क 1976 और अलाउद्दीन स्मृति पुरस्कार साल 1985 में दिया गया। 1988 में भारत की संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें मीडिया में संगीत के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया।

0: ये था जाने माने संगीतकार सलील चौधरी पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमने आपको जिन फिल्मों के गाने सुनवाए उनके नाम हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में। कार्यक्रम में दूसरा गीत आपने सुना छाया फिल्म से, आवाज़ें थी तलत महमूद की। कार्यक्रम का तीसरा गीत हमने लिया था मन्नडी की आवाज़ में काबुली वाला फिल्म से। आनंद फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। इसके बाद आपने सुना था मुकेश की आवाज़ में जागते रहो फिल्म का गाना।
1: तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे।
0: फिर हमने आपको सुनवाया था लता मंगेशकर की आवाज़ में रजनीगंधा फिल्म का।

0: प्रतिक्रियाएं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
1: इशारे मुझको यहां ले आए
0: 8004926250 यानी 8004926250।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम का आखिरी गीत जो बैकग्राउंड में चल रहा है, इसे हमने लिया फिल्म एक गांव की कहानी से, आवाज़ तलत महमूद की। ये था सलील चौधरी पर केंद्रित आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम से अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा को इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के लिए आप अपना फीडबैक

केके और सुनिधि चौहान की आवाजें, समीर की गीत रचना, प्रीतम का संगीत, फिल्म का नाम गरम मसाला।

राशिद अली की आवाज़ में आप सुन रहे हैं जाने तू या जाने ना फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा अब्बास टायर वाला ने, धुन तैयार की ए आर रहमान ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। इसके अलावा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। एक और प्लेटफॉर्म है DD फ्री डिश, वहाँ भी हमारे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।

महबूब की गीत रचना भी आप सुन रहे थे के एस चित्रा की आवाज में, संगीत ए आर रहमान का था, फिल्म बॉम्बे का सदाबहार गाना था ये।

सईद कादरी की गीत रचना अभी आप सुन रहे थे, मुस्तफ़ा जाहिद और साथियों की आवाज़ों में। संगीत प्रीतम का था, फिल्म आवारापन।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयाग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से

0: विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said, over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
0: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन

आज रात 8:30 पर आपको सुनवाएंगे अटल ऑडिटोरियम राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित 20वें रोजगार मेले पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संस्कृति भारती कार्यक्रम का प्रसारण समय रात्रि 9:30 और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10:00।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर सुनिए श्री राम शंकर का ख्याल गायन। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आएंगे 12:30 पर। बनगढ़ कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी प्रियंका चौहान के गाए लोकगीत और सुमन खन्ना की वार्ता होगी व्यस्त जिंदगी में परिवार के लिए समय कैसे निकालें। दो बजकर 30 मिनट पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम, कलाकार राजा राम यादव और साथी आशा राम पटेल और साथी तथा छेदीलाल और साथी। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे आपको सुनवाएंगे शंकरलाल पाल और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं रोज की तरह 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे धर्मदीन यादव और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी भी सुनाया जाएगा। हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता का विषय होगा डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। सुगम संगीत कार्यक्रम में 7:45 पर कलाकार होंगी नेहा चटर्जी और रात 8 बजे आने दीजिएगा फिल्म संगीत का। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध सारंग में गाया ख्याल, कलाकार श्री रामशंकर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री राम शंकर का राग शुद्ध शारंग में गाया ख्याल, इनके साथ तबले पर संगत की श्री श्रवण कुमार भट्ट ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब सुनिए फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर
0: जी बताइए। सुरेंद्र जी, कौन सा
1: जी,
0: गीत सुनेंगे?
1: चांदनी फिल्म का।
0: हाँ जी,
1: पर्वत से काली घटा टकराए।
0: तो चांदनी फिल्म के इस गाने की फरमाइश की है सुरेंद्र जी ने, तो उनकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैडम, संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया झोंसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बोल रहा हूं।
0: महेंद्रनाथ कुशवाहा जी की क्या फरमाइश है
1: मैडम? जब जब फूल खिले जी, गाने के बोल है लता जी की आवाज में, परदेशियों से ना अखियां मिलाना, परदेशियों को तो है एक दिन जाना।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत से गाने का चुनाव किया है महेंद्र जी ने। तो महेंद्र
1: हाँ, मैडम थोड़ा नाम भी
0: हाँ जी हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, दीपिका कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा, और सूरत से हमारे दो भाई आए हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: राजेंद्र कुशवाहा, सबल कुशवाहा।
0: तो सुनिए अपनी मन पसंद गाने को, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

0: फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: जी अंजना मिर्जापुर।
0: प्रभाकांत जी मिर्जापुर से बात कर रहे हैं। तो प्रभाकांत जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी हमें फिल्म का गाना,
0: नगीना फिल्म का। कौन सा गाना?
1: जी आप
0: कोई भी गीत। अच्छा, पहली बार कॉल की प्रभाकांत जी?
1: जी हमारे
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जिस गाने को पसंद किया है उसे हम सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी।
1: मेरा नाम नितेश सारिया है
0: जी। नितेश जी,
1: फिल्म का नाम है मिलेंगे मिलेंगे
0: जी।
1: गाने बोले मुझे तुमसे कितने मोहब्बत,
0: राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाएं ये गीत
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला जी, मनोज नामदेव।
0: जी, मनोज नामदेव जी ने मध्य प्रदेश से हमें कॉल की है। तो भाई, अपना नाम बताने के बाद हमें ये भी बता दें कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा पुलिस पब्लिक
0: जी,
1: और उसमें गाना है मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से।
0: वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक इस समय में जब हम लोग हेलो फरमाइश, हेलो अनुरोध कार्यक्रम करते थे, तो इस गीत की बहुत फरमाइश आती थी।
1: बिल्कुल सही सही बात दीदी।
0: तो इस हिट गाने को मनोज जी ने सुनना चाहा है। तो मनोज जी किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते?
1: बिल्कुल दीदी, हम नाम लेना चाहते लेकिन उनका तो कॉल आ ही जाता है, इसलिए अन्य श्रोताओं को अगर मौका।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है पुलिस पब्लिक।

0: यथा था फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
2: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की

अपने सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे, आज रात 8:30 पर हम आपको सुनाएंगे अटल ऑडिटोरियम राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में आयोजित 20वीं रोजगार मेला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय

0: सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that free trade agreements are opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements paved the way for new partnerships and markets for country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. He said the talent and skills of country's youth have won the trust of the entire world.
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
2: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 19 सितंबर 2026 को 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में 51,000 से ज्यादा नए भर्ती होने वाले नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरी खतूत तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने नौमुंतखब उम्मीदवारों से भी खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा,
1: युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट सम्पन्न हुई। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार बने।
0: ये तकरीब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़िद हो रही है, जिसमें मरकजी वजीर कीर्ति वर्धन सिंह शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर में 45 मकामात पर जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। नए भर्ती किए गए मुलाजमीन हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में शामिल होंगे, बशमूल महकमे महसूलात, वजारत रेलवे, वजारत दाखिल।

0: गंगा, अरे ओ गंगा बहिनी, हम कहे राम राम।
1: राम राम गुंजा बहिनी, और अपन पनघट सुने बैठी सब बहिनी हरन के गंगा और
0: गुंजा के राम राम, राम।

0: और बतावा का हाल चाल बा घरे दुआरे के।
1: देखा गंगा बहनी घरे दुआरे कुल सब नीक बाटे, मुला देखा मौसम के जोने उतार चढ़ाव बा।
0: हाँ, परीक्षा शुरू हुई
1: हाँ, है ना? हाँ।
0: तो लागत है कि देखा कब उनका सबके बुखार हो जाए, जुकाम हो जात बा। तो मतलब आज के समय में बड़ा ध्यान दे के जरूरत बा। और कुल में अंग्रेजी दवा ना खियावे हरदम, कुछ हो भावा अंग्रेजी दवा खियादा। लड़कियन के आयुर्वेदिक चीज दे के चाहिए
1: बिल्कुल।
0: आज के समय में। तो ज्यादा जैसे देखा पहले के टाइम पे होत रहा कि यह मनई के पास यह एकमात्र उपाय ही रहा कि यही चीज से मनई के ठीक करेगी।
1: बिल्कुल सही कहो मुला, देखा जो अंग्रेजी दवा होती वो जल्दी तो आराम करा थी।
0: हाँ।
1: लेकिन जितने शरीर के फंक्शन है, मतलब जितनी भाग है शरीर
0: हाँ,
1: की
0: हाँ,
1: अंदरूनी,
0: हाँ,
1: वो सब है कि कितना डिफेक्ट, मतलब कि कितना सारा नुकसान पहुंचाए देती।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आज हम सब हम ये सोचे कि ये बहुत जरूरी विषय है कि अपने बहनी हरिन से यही विषय पे बात किया जाए कि देखा मतलब जो खाली ये जो आयुर्वेद शब्द है
1: हाँ
0: ये खाली चिकित्सा पद्धति ना है,
1: हाँ बहनी
0: बल्कि अपने जीवन शैली,
1: हाँ
0: अपन जो संस्कृति बा और अपने स्वस्थ जीवन से जुड़ा बा।
1: बिल्कुल।
0: तो हम सोचे कि आज आयुर्वेद क्यों जरूरी है ए विषय पे हम सब बात करी। तो आयुर्वेद नाम लेते देखा मन में भारत के प्राचीन परंपरा, जड़ी बूटी,
1: हाँ
0: प्राकृतिक चिकित्सा और स्वस्थ जीवन के तस्वीर उभर जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आयुर्वेद खाली बीमार होए के बाद दवा ले के पद्धति न होए।
1: हाँ
0: आयुर्वेद हमें ये सिखावत है कि बीमारी आवे के इंतजार काहे किया जाए ना,
1: बिल्कुल।
0: जब स्वस्थ रहे के कला पहले से सीखी जा सकत है।
1: सही कहो बहनी, देखा काहे कि जोने आयुर्वेद है हमार सबे के स्वस्थ मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखत है, एके बदे बहुते जरूरी बाटे। काहे से
0: बिल्कुल
1: कि बीमारी के जो लक्षण का दबावे के बजाय ओकर जड़ से, मतलब मूल कारण रोग के जो होत है ओ पर काम करत है ई
0: बिल्कुल।
1: दवा।
0: तो देखा आयुर्वेद खाली उपचार ना है, काहे के मतलब कि
1: हाँ
0: आयुर्वेद खाली उपचार ना ही कि
1: हाँ बहनी
0: जीवन के पद्धति है।
1: बिल्कुल।
0: देखा हम सब अक्सर स्वास्थ्य के खाली बीमारी के अनुपस्थिति मान ली थे, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य खाली इतने ना हो कि हमें कोनो बीमारी ना आए ना। स्वास्थ्य के अर्थ है शरीर स्वस्थ होए, मन प्रसन्न होए और पाचन ठीक होए,
1: बिल्कुल।
0: नींद अच्छी होए और दिनचर्या संतुलित होए और जीवन में मानसिक शांति भी होए,
1: बिल्कुल।
0: है ना? तो देखा आयुर्वेद हमें अपने शरीर के समझे के दृष्टि देते है। ये हमें बतावत है कि हमार भोजन कैसन होए, हमार दिनचर्या कैसन होए और ऋतु के अनुसार जैसे जो समय चलत बा ओकरे ओकरे अनुसार जीवन शैली में का परिवर्तन होए और शरीर तथा मन के बीच में संतुलन कैसे बनावा जाए।
1: सही कहू, इमा जो इलाज से बेहतर बचाव पर जोर दिन जात है कि सही, जैसे तू बताओ कि खान पान, नियमित दिनचर्या, हाँ ये सबके संतुलन बनाए रखत है और
0: बिल्कुल
1: साथ ही साथ समग्र स्वस्थ से शरीर मन और आत्मा के बीच जो संतुलन बनाए कर मानसिक शांति मिला थी और उसे जो है शरीर के ऊर्जा दुगनी हुई जाती।
0: बिल्कुल बहनी। देखा आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में केहू के पास समय ना है ना,
1: हाँ
0: तो दिनचर्या यहर बाहर होगी। बस
1: बिल्कुल।
0: दिनचर्या मन ही बनाए के ना चलत बा कि टाइम से खाना पीना हो जाए, टाइम से कुल हो जाए। तो खान पान जब बदलत बा तो तनाव बढ़त बा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और महत्वपूर्ण हो गया बा।
1: बिल्कुल। और एक ही साथ साथ जाना था, आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय पद्धति तो है, मूला एकेर मेन उद्देश्य बात है स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षा करत है और रोगों के जड़ से दूर करत है। इमें शरीर के तीन दोष वात पित्त और कफ के बीच संतुलन बनाए के स्वस्थ बनाए रखत है।
0: बिल्कुल बनी। देखा कहा भी गए बा कि पहला सुख निरोगी काया।
1: हाँ
0: हमारे पास धन हो सकत है,
1: बिल्कुल।
0: सुविधा हो सकत है, सफलता हो सकत है,
1: हाँ
0: लेकिन यदि अगर शरीर और मन स्वस्थ ना है तो इस सब के आनंद अधूरा रह जाता
1: व्यर्थ
0: है।
1: गया
0: और
1: बनी।
0: यही कारण बा कि आयुर्वेद हमें खाली बीमारी के इलाज ना है बल्कि स्वस्थ जीवन के समझ दे पे भी जोर देते है।
1: बिल्कुल। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और उपचार आमतौर पर सुरक्षित है, मुला गलत तरीके के उपयोग करें या बिना डॉक्टर के सलाह से कीन गवा सेवन से इनकर कईयों तरह के नुकसान या दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे लीवर और किडनी पर असर होत है, पाचन तंत्र के समस्या होत है, धीमा असर इलाज के तो होत है, मुला गंभीर या आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत नहीं देत, जैसे रोग बढ़े के खतरा रहत है। आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी हैं, जिनका भगवान विष्णु के अवतार भी माना जाता है।

0: और देखा एक
1: हाँ
0: चीज़ और बहनी, कि दैनिक जीवन में आयुर्वेद के उपयोग, अगर हम सब सोचे तो देखा हम सब कोने समय उठी थे, पहले के मने ही भोरहरे उठ जात रहे, है ना, उठे के बाद कूटब पीसब अपन काम करब और कितना स्वस्थ रहते रहन।
1: कहा कि
0: आज
1: कुला
0: आज 7-8 बजे पहले केहू के नींद ना खुलत
1: सही कहो
0: रहो।
1: बहनी, तुहार जो दिनचर्या बताओ वो सब शारीरिक व्यायाम हो जात रहन। घरे के
0: बिल्कुल
1: काम के साथे साथे हम सबके शारीरिक व्यायाम भी हो जात रहा,
0: व्यायाम भी
1: जैसे
0: हो जात रहा
1: भूख खुल
0: और
1: के
0: हाँ
1: लगत रही और पाचन क्रिया भी स्वस्थ रहत रहा।
0: स्वस्थ रहत रहा। तो अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद के जौन महत्व रहा, ओके विषय पे हम सब बात करते रहे। तो हम सुबह कौने समय उठी थे, कौ खाई थे, कितना खाई थे,
1: हाँ
0: कब खाई थे और कितनी देर सोई थे, कितना
1: हाँ
0: व्यायाम करी थे और अपने मने के कितना आराम दी थे, ये सब बात हमारे स्वास्थ्य के प्रभावित करत है। आयुर्वेद की खूबसूरती यह बा कि ये
1: हाँ
0: स्वास्थ्य के जीवन के अलग अलग हिस्से से जोड़ के देखत है,
1: बिल्कुल
0: जैसे भोजन, नींद, दिनचर्या, ऋतुचर्या, मानसिक संतुलन और
1: हाँ
0: शरीर के प्रकृति, ये सब विषय पे ध्यान देव आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण हिस्सा है बहनी।
1: काहे से देखा हमार कुल चिकित्सा के पहले जो निर्माण तो नहीं रहन, बड़े बड़े डॉक्टरन नहीं रहे, मुला हमार जो गांव के
0: वैद्य जीवन
1: दाई वैद्य जी रहे, कुल उपचार करत रहन, महिलाओं के लिए दाई बनी रहे, जो उनकी
0: बिल्कुल
1: पूरा घरेलू जच्चा बच्चा के इंतजाम
0: हाँ
1: करत रहे
0: बिल्कुल
1: और कैसे प्रसव करावत रहे। मुला जब खतरा ज़्यादा बढ़ जाए तो ओकरे बदे इंतजार नहीं करे के चाहिए, अच्छे चिकित्सक के पास जाए चाहिए, परामर्श ले चाहिए।
0: बिल्कुल देखा आयुर्वेद के अर्थ खाली काढ़ा, जड़ी बूटी या
1: हाँ
0: घरेलू नुस्खा न हो,
1: बिल्कुल बहनी।
0: आयुर्वेद एक व्यापक स्वास्थ्य दृष्टिकोण है बहनी। हालांकि देखा यह आवश्यक हुआ कि कोनो भी बीमारी के स्थिति में योग्य चिकित्सक से सलाह ले लें,
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: तू कहुआ बहन के, कोनो भी
1: बिल्कुल
0: औषधि या
1: हाँ
0: उपचार के उपयोग पहले विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करें,
1: बिल्कुल
0: लेकिन स्वस्थ जीवन के बदले संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, शारीरिक सक्रियता और मानसिक संतुलन, ये सब बातन हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: बा। कहें से कि आज हम सब जो ने तकनीक के युग में जियत बाटी, तो हमारे पास दुनिया की जानकारी कुछ सेकंड पे मोबाइल पे उपलब्ध हो जात
1: बिल्कुल
0: बा
1: बहनी।
0: ना, लेकिन सवाल ये बा कि का हम अपने शरीर की आवाज़ उतने जल्दी सुन पाई थे जितना मोबाइल हमें दुनिया में होए वाली बात बतावत
1: बतावत
0: बा,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हाँ,
0: लेकिन हमारे शरीर हमेशा चुपचाप बतावत रहते ओकरे साथे का होत बा,
1: लेकिन
0: जैसे
1: एक इंसान है कि
0: हाँ
1: जब एकदम लास्ट समय आ जाते हैं,
0: अंतिम
1: बहुत
0: समय
1: ज्यादा
0: तक
1: दिक्कत हुई जाती शरीर के, तब वो चिकित्सा के
0: तब वो जाके दिखावत है,
1: हाँ
0: लेकिन पहले ही जैसे
1: शुरुआती
0: शरीर
1: लक्षण है तो उकरे बदे अपन सही इलाज और सही देखभाल खान पान कर लें तो ज्यादा बड़ी समस्या से जूझे के नहीं पड़त।
0: कुल मिलाए के देखा बहनी, आयुर्वेद हमें जोन बा अपने शरीर के साथे संघर्ष करब ना बल्कि उस ओका समझे सिखावत है।
1: बिल्कुल
0: ये हमें प्रकृति के साथ संतुलन के बात करत है, ये हमें बतावत है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी ना होए,
1: हाँ
0: एक इलाज ना बल्कि जीवन जिए के एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन आयुर्वेद के ज्ञान के अपनावत भय, वैज्ञानिक प्रमाण और योग्य चिकित्सक की सलाह और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ध्यान में रखब उतना आवश्यक हुआ। तो देखा अपने स्वास्थ्य के हल्के में ना लें, अपने भोजन, नींद और दिनचर्या के प्रति जागरूक रहें भैया बहनी
1: बिल्कुल,
0: हरें सब लोग,
1: अगर शरीर कोनो भी संकेत देता है तो
0: हाँ
1: ओका जो है
0: समझे के प्रयास
1: समझे के
0: करें,
1: प्रयास करें, ओका जो है तो हटावे ना ही ध्यान से कि
0: हाँ
1: ठीक हो जाए
0: हाँ और
1: ई।
0: आवश्यकता पड़े पे योग्य चिकित्सक के सलाह ले में संकोच ना करें।
1: बिल्कुल बहनी।
0: कहें से कि स्वास्थ्य कोनो ऐसा चीज तो है ना है कि जौन एक बीमारी आओ एक बात खरीद जा सके, है ना, स्वास्थ्य उस संपदा है जेके रक्षा हमें हर दिन करे होत है।
1: और देखा ओके ओके अलावा कोनो और बड़ी संपदा नहीं है, काहे कि अगर स्वस्थ शरीर है तो
0: हाँ
1: सब कुछ निमन है।
0: सब कुछ है बहनी। और अंत में देखा आयुर्वेद की जो भावना है कि प्रकृति से जुड़िए, अपने शरीर को समझिए,
1: बिल्कुल
0: अपने मन को समय दीजिए और स्वास्थ्य को जीवन की पहली प्राथमिकता
1: बिल्कुल
0: बनाइए,
1: बहनी।
0: यही संदेश के साथ आज की सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ हम सब अब एक गौनई की तरफ बढ़ा जाए,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बहनी हाँ,
0: तो चलो तो कब बढ़िया से कहरवा सुनाए दी सावित्री श्रीवास्तव बहनी से।
1: अब बहनी हरे भी सुने।

0: सुन के मन आनंद में हो जाता है।
1: हाँ बिल्कुल, देखा पनघटे पे बातचीत जानकारी के साथ साथ गीत गाने ही होत रहा था, तो मन अपने हरियर भर रहा था, है
0: बिल्कुल।
1: ना? तो देखा इसी क्रम में आज अपने पनघटे पे एक ठो बातचीत पर।
0: हाँ।
1: व्यस्त जिंदगी में परिवार के लिए समय कैसे निकालें।
0: और देखा सुमन खन्ना से आस्था यादव बहनी की बातचीत आए, तो चला हम आओ तू सुनी और हमार बहनी अरे भी सुने।
1: चलो सुना जाए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमरे सबके पास काम के लिए समय बा, मोबाइल और सोशल मीडिया के लिए भी समय बा, और दूसरी जिम्मेदारी के लिए भी समय बा। लेकिन अक्सर जोने परिवार के लिए हम इतनी मेहनत करी थे, वही परिवार के साथ बैठे और दिल से बात करे के समय कम पड़ जाता है। इक्के घरे में रहते हुए भी हम सब

0: कबो कबो एक दूसरे से दूर हो जाए थे। गदेलन अपने माता पिता से बात करे चाहते, माता पिता बच्चन के साथ समय बितावे चाहते, और पति पत्नी एक दूसरे के साथ सुकून के पल बितावे चाहते, लेकिन व्यस्तता के बीच ई छोटी छोटी खुशियां पीछे छूट जातीन। तो कुछ था महत्वपूर्ण सवालन पे बात करे के बदे अपने पनघटे पे मौजूद है सुमन खन्ना बनी, आपके बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले हम आपसे यह जानने चाहब कि आज के व्यस्त जीवन शैली में परिवार के लिए समय निकालब इतना मुश्किल काहे हो जात बा।
1: आपने पूछा आज कैसे परिवार के लिए समय नहीं निकलता, तो मैं बताती हूँ। आज महंगाई के चलते सबको कमाना पड़ता है, माँ हो, हमारे भाई हो, हमारे बहने हो, जो सबको कमाई करनी पड़ती है। इसकी इस भाग दौड़ी जिंदगी में परिवार के लिए समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन कठिन है, नामुमकिन नहीं है। अगर हम इसको चाहें तो हम परिवार के साथ एक एक पल हम उनके साथ बिता सकते हैं, लेकिन इससे जब हम उनके साथ अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो इससे रिश्ते मजबूत नहीं होते बल्कि एक मानसिक शांति भी मिलती है।
0: बिल्कुल सही कही आप। तो क्या वास्तव में हमारे पास समय की कमी बा या फिर हमारे सबके प्राथमिकता बदल गए बा?
1: नहीं, हमारे पास समय की कमी भी है, प्राथमिकता भी बदली है। अगर हम मैं आपको छोटे छोटे तरीके बताती हूँ कैसे हम कर सकते हैं, तो जैसे छोटे छोटे दैनिक अनुष्ठान करें। अनुष्ठान का मतलब है जैसे हम लोग करते हैं, चलो आज घर में कोई पूजा पाठ रखी है, सब लोग इकट्ठे हो जाएं,
0: इकट्ठे हो जाएं, उसी बहाने मुलाकात
1: मुलाकात होगी। हाँ। बच्चे मिलेंगे अपने माँ बाप से, माँ बाप भी बड़े उत्सुकता से, बच्चे आज खाना पड़े खाना पीना भी अच्छा सा बनेगा घर में। हाँ। और दूसरा, इस अनुष्ठान होने से मतलब और भी है कि हम लोग एक समय खाना खाएं सबके साथ। जैसे दिन भर तो हम काम पे रहते, सुबह नाश्ता नहीं कर पाते, दोपहर में खाना नहीं खा पाते, लेकिन हम कम से कम कोशिश करें कि हम रात को अपने बच्चों के साथ खाना खाएं। अब बच्चों के साथ का मतलब ये नहीं खा ले आप पति पत्नी और बच्चे, अपने माता पिता को भी उनमें शामिल करें।
0: बिल्कुल, सवेरे से कितना भाग दौड़ रहा था कि सवेरे अपन टिफिन लेके वो चला गए, गदेलन चला गए, तो और मतारी बाप बचत बेचारे एक कोने बैठा रहा थे। नहीं, सबके साथ बैठ के कहे से कि उनके प्यार आशीर्वाद भी जरूरी है।
1: और इससे क्या होता है, आदमी अगर आधी रोटी खाएगा, जब परिवार के साथ बैठ के रोटी खाता है तो एक रोटी ज्यादा ही खाई जाती है। वही सब्जी अकेले में अच्छी नहीं लगेगी, वही सब्जी सबके साथ बैठने में बहुत अच्छी लगेगी। और उसके बाद दूसरी बात है, आजकल आपने बोला ना फोन, सोशल मीडिया, ये सब का जमाना है, तो मैं तो अनुरोध करूंगी कि जब खाने का समय हो तो कोई भी फोन या लैपटॉप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करे, आपस में बातचीत करे।
0: बिल्कुल सही कहीं बहनी आप ये बात की, हम तो मानव कैसे कि देखा आजकल गदेलन बिना फोन खाना ना खाते, पहले फोन दा तब हम खाना खा।
1: लेकिन ये गलत आदत है। अब मैं मानती हूँ इस चीज को कि आजकल पढ़ाई नहीं हो पाती फोन के बिना, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो थोड़ा सा खाने का समय उसको एक अलग कर दे। तो एक तरफ माता पिता को या बच्चों को खुद भी चाहिए फोन एक तरफ सब फेंक दे, कोई फोन को ना उठाए और बैठे खाना खाएं, सब्जी के बारे में पूछें कैसा बना है खाना, माता पिता से हालचाल पूछें, एक दूसरे के बारे में जाने, बच्चों से पूछे आज तुमने क्या पढ़ाई करी, पति पत्नी आपस में पूछे तुम्हारा कैसा रहा दिन, कौन दोस्त से मिली, किससे बात हुई है, या तुमने कपड़ा कौन सा खरीदा, इस सब के बारे में पता करें। ये ना करें कभी भी कि फोन बैठे खाना खाने फोन हाथ में लिया, नहीं, अपने माता पिता से पूछे कि कोई दवा तो नहीं खत्म हो गई, हालचाल ठीक है, दिन में खाना खाया कि नहीं खाया, सोई कि नहीं सोई। तो माँ बाप को बहुत जरूरत होती, बड़े खुश हो जाते हैं माँ बाप कि हमारा बच्चे, हमारे पोता पोती, हमारे बहू बेटा हमको सब आपस पूछ रहे हैं।
0: अच्छा, यही बता रिश्ते में दरार भी आओ तो देखा मनाई ना, अपन काम पे चला जाते हैं, आए के बाद थका भी रहा थे, के अलावा फोन उठा ली है तो फोन में घुस जाइए, अब कब एक घंटा दो घंटा तीन घंटा बीत जाए तो उन्हें खुद पता ना चलत, ओकरे बाद खाना पीना खाएं सोई गए, मतारी बाप के या परिवार के बच्चन के टाइम तो दिए ना है। तो वही हिसाब से देखा मानसिकता भी बच्चन के भी चेंज होत बा, जैसे बच्चन बदमाशी करत हैं या कुछ छुपावत, उनका सबके तो समय ही ना मिला कि अपने पिताजी से कुछ बताई कि हाँ आज स्कूल में ही भा, आज हमें ही चाहिए, आज वो चाहिए।
1: नहीं तो पहले जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो माँ होती है वो सबसे पहले घर में गुरु है ना, तो अब जैसे लड़कियां हैं तो कहते हैं माँ ही उसकी पक्की सहेली है, लड़के भी कहते हैं, लड़कों के लिए भी माँ ही अच्छी दोस्त है
0: बिल्कुल,
1: या पिता। तो आजकल ऐसा समय हो गया, ना माँ बाप के पास समय है और बच्चे ये फोन कर करके देख देख के चीजें छिपाने लगे, माँ बाप को पूरा राजी नहीं बताते, कोई बात उनसे बताते ही नहीं, उनसे साझा नहीं करते अपने। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हम लोग को फोन तो मैंने बताया अलग कर दीजिए, लेकिन बच्चों की तरफ ज्यादा अपना ध्यान बताइए।
0: हाँ, लड़कियों के दोस्त बने,
1: दोस्त बनिए,
0: उनके माँ बाप मत बनिए, अपनी सब चीज
1: बताइए, उनको अंकुश में रखा, उनको अनुशासन में रखा, नहीं ऐसे नहीं बोलना, हम तुम्हारे बाप

0: ये सब नहीं करना चाहिए उनको, दोस्ती से प्यार से, अगर लड़की है तो माँ उसकी सहेली बन जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। दो सहेलियां जैसे आपस में बात करती, ऐसे बहनें बातें करती, ऐसे बात करे तो आज कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चे और माँ बाप में प्यार ना बने, इससे शारीरिक क्या मानसिक क्या सब तरह से शांति ही शांति मिलेगी,
1: शांति मिलेगी। अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन इतना करें कि जितना चल जाए, बहुत ज्यादा अनुशासन फिर वो बच्चे के खराब कर देते हैं।
0: और इसके और दूसरा मैं बताती हूँ समय निकालने के, हम लोग रात को एक सैर रख ले, छोटी सी सैर, ज्यादा नहीं, तो ये है कि रात को जब खाना वाना खा लिया सब बच्चों को, माँ बाप को भी धीरे धीरे ले ले, नहीं चल पाते तो चलो थोड़ा थोड़ा पकड़ के सहारा देके थोड़ा सा चले गए सैर के लिए रात के समय। जब रात को सैर करने जाते हैं तो बाहर की एक ताजी हवा मिलती है।
1: लोग ही कहते हैं कि हम परिवार के लिए ही तो कमाते हैं, तो फिर कहें परिवार के समय न दे पावे की स्थिति बन जाती है,
0: क्योंकि हम लोग परिवार के लिए कमाते हैं लेकिन हम चाहते हैं इतना ज्यादा कमा लें कि परिवार को ही भूल जाते हैं जिसके लिए कमा रहे हैं। जिसके लिए हम कमा रहे, उसके लिए क्या करना है हमको, अपने जो दिनचर्या है, जो हमारे दिन भर की, जैसे हमने इस समय खाना खाना, इस समय सोना है, इस समय हमको कॉफी जाना, इस समय पढ़ाई करनी है, इस समय हमें पूजा पाठ करनी, इसी तरह हमको रहना चाहिए कि इस ये समय हमारा परिवार के लिए, ये नहीं कि आप चार घंटा बैठे, 15-20 मिनट भी बहुत है परिवार के साथ बैठने के लिए। उसमें क्या है, आप उनको अपने, ये नहीं घर आए तो ऑफिस का काम ले आए, ऑफिस की ही बातें कर रहे हैं, या और माता पिता सबको भूल गए, अपने आपस में बातें कर रहे हैं, या हम पति पत्नी आपस में ही लगे, बच्चे आपस में ही लगे हैं, कोई माँ बाप को ध्यान ही नहीं दे रहा, तो उनको अपनी दिनचर्या में भी शामिल करना बहुत जरूरी है। अब हम कहते हैं, आपने कहा परिवार के लिए कर, लेकिन कमा किसके लिए, तो उनको घुमाने लेके जाए ना परिवार को,
1: बिल्कुल,
0: कहीं कहीं बाहर ले जाए, कभी कहीं पिकनिक ले गए, नहीं है छोटे से छोटे कोई फिल्म दिखाने ले जाए बच्चों को, कोई हाथ मिला ले जाए बच्चों को दिखाने के, कमा तो उन्हीं के लिए रहे ना परिवार के लिए, तो खर्चा भी तो करें उन पर, ये थोड़ी है बैंक में जोड़ देना है कमा रहे हैं, कब कमाए उनको करें, तो परिवार के लिए समय निकाले ना, उन पर भी खर्चा करें, आज है कल किसने देखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ कि पति पत्नी अगर दोनों लोग कामकाजी हैं तो अपने रिश्ते और परिवार के लिए समय कैसे निकले हैं।
0: पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं ना, तो दोनों को समय से निकल जाना है, है ना, या तो वो लोग के बाद बहुत कमा रहे हो तो घर में कोई नौकरानी धर लें जो भैया बच्चों को सबको देखे, लेकिन अब उसमें क्या है,
1: हमेशा आजकल भरोसेमंद
0: नहीं है और समय भी नहीं है, जैसे आजकल हम लोग रोज पढ़ते हैं ये कांड हो गया वो कांड हो गया घर में चोरी हो गई ऐसा, तो वो भी तो इसके लिए डर लगा, इसके लिए अगर आपस में समझौता कर लें, अगर उनके कंपनी में या उनके दफ्तर में है कि भाई 3 दिन तुम घर से काम कर लो, 3 दिन हम घर से काम कर लें, हाँ। तो बच्चों की देखरेख भी घर की भी देखरेख सब है। अगर मान लो जो उनको 6 दिन जाना है दोनों पति पत्नी को, तो उसके लिए इनको क्या करना है, अगर पत्नी सवेरे उठती है खाना बना रही तो पति को भी सहयोग करना चाहिए, बच्चों को तैयार कर दे, झाड़ा पोछी थोड़ी सी करवा दे, या जो बर्तन वर्तन खाली उनको बाहर निकलवा दे, ड्रेस व्रेस निकाल दे बच्चों को छोड़ने के लिए, उनको बस स्टैंड तक चले, तो दोनों को परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ही समय से निकालना। अगर पत्नी खाना तैयार करी, टिफिन बना रही है, सब कुछ करी, तो पति को इतना चाहिए कि वो भी अपनी पत्नी का सहयोग करे,
1: बिल्कुल
0: छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करे।
1: दादा दादी और परिवार के बुजुर्गन के लिए समय निकालब का है महत्वपूर्ण, नई पीढ़ी जोन बा ये दिशा में काम ना करत बा,
0: नहीं उसको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नई पीढ़ी कब तैयार होती है, जब हम माँ बाप है नए बच्चे तैयार हो रहे हैं,
1: हाँ।
0: तो बच्चे अपने माँ बाप को देखेंगे ना, वो अपने माँ बाप को कैसे समय दे रहे हैं,
1: बिल्कुल तो नींव से ही तो घर बने,
0: हाँ, तो हमको वो देखेंगे कि हमारे माँ बाप कैसे अपने बच्चों को समय देते हैं, ये संस्कार आ जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: जब वो देखते हैं कि हमारे दादा दादी को हमारे माँ बाप बहुत पूछते हैं, तो अगली जो नई पीढ़ी आएगी वो भी जरूर पूछेगी, क्यों नहीं पूछेगी, जब और ये है कि आज ना आश्रित नहीं होना चाहिए ना माँ बाप ना दादा दादी किसी को भी, स्वावलंबी होना चाहिए, कि अगर नहीं पूछते हैं तो वो बुरा मानने की जरूरत है, लेकिन समय निकालना चाहिए। इसलिए कभी बीमार है माता पिता या कोई बोल देखने वाला ही नहीं है, और आप दफ्तर से आए मियाँ बीबी दोनों आए, दोनों अपने अपने कमरों में घुस गए, या बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, दिन भर का गुस्सा बच्चों पे निकाल रहे, थकावट, वो गलत है। अगर वही बच्चा लड़का आता है 2 मिनट माँ के पास बैठ जाए, माँ की झोली से ज्यादा कोई बड़ी गोद नहीं होती दुनिया में, तो आए माँ बाप के पास बैठे, वो भी प्यार से पूछेंगे बेटा आ गए खाया कि नहीं खाया दिन भर, वो भी पूछेंगे, तो वो जब आपको राह देख रहे हैं तो आपको उनके लिए समय 5 ही मिनट का निकाले, हम कहाँ कहते हैं 2 घंटा, उस 5 मिनट में उनको जन्नत मिल जाती है।
1: बिल्कुल निकाले चाहे, देखा अगर ना निकली है तो उनकी उनकी पीढ़ी भी तो वही देखत बा,
0: वो ही देखेगी आगे भी वही काम करेगी,
1: आगे भी वो दोहरे साथे भी वही करे जो आप अपने मतारी बाप के साथ करत है, वही काम आपकी औलाद करे।
0: इसके साथ और बताएं, घर में अगर आपने बुजुर्गों साथ परिवार के साथ समय निकालना है तो छोटे छोटे कामों में सबको परिवार को लगा लें। जैसे एक कभी छुट्टी होती है तो बच्चों

0: को लगा लें, चलो भैया सफाई कर लें, बड़े बूढ़ों को दे दे ये कपड़ा है, अलमारी ठीक करें, आप तहवा दें, समझिए आप तहवा दें उसको, हम सलीके से लगा दें, पंखों का सफाई करनी, घर की सफाई है, हम रोज नहीं हो पाती 6 दिन में, एक छुट्टी के दिन सब सफाई, बागवानी करने चलो, तो उसमें क्या है, हम एक दूसरे का हालचाल भी पूछ लेते हैं, हंसी खेस भी होती रहती है और गाना बजाना भी चलता रहता, नाचते कूदते सब काम हो जाता है। तो बच्चों के साथ इस तरह से परिवार हम खेल कूद के भी बिता सकते हैं।
1: अच्छा बहनी, आजकल देखे हैं कि छुट्टी के दिन भी मन ही व्यस्त रहते हैं ना अपने ऑफिस के काम में,
0: तो ही तो मैंने पहले ही कहा कि कोशिश करें कि अपने ऑफिस का काम या दुकान का काम घर में ना लाएं, अगर परिवार के साथ समय निकालना है तो घर का काम ना लाए।
1: सही बात है बहनी, देखा माता पिता, एक पति पत्नी और एक व्यस्त आदमी, ये तीनों भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या भाई बताए दें?
0: सबसे जरूरी बात यह है कि एक तो परिवार के साथ बैठना सीखें, दूसरा उन लोग को ले जाने के लिए कोई बहाना न बनाए, बाहर ले जाना है घुमाने, जैसे रात की सैर करने मैंने बोला, तो ना कहीं पिकनिक वगैरह जाए तो अपने बच्चे नहीं माता पिता को लेके भी जाए, वो लोग बहुत खुश होते हैं। और तीसरी बात है, जैसे बच्चों के खाने पीने पे ध्यान रहते, कभी कभी माता पिता के पसंद का भी खाना घर में बनाए, तो इस व्यस्त भरी जिंदगी में क्या होगा, दो ही सब्जी बनी, बड़ी खुशी से सब लोग खाएंगे, कभी बच्चों की खुशी, कभी अपनी पत्नी की खुशी, कभी पति की तो खुशी, कभी माता पिता की।
1: तो इससे परिवार एकजुट भी होते हैं, आपस में प्यार
0: एकजुट भी रहता है,
1: सद्भावना के भाव भी रहता है, हाँ,
0: और भावना शारीरिक क्या मानसिक क्या आर्थिक रूप से सब साथ देते हैं, कभी पैसा नहीं तो बच्चे भी कहेंगे लो गुल्लक तोड़ लो, ले लो इसमें से, ले लो मम्मा,
1: बिल्कुल
0: मम्मा पापा ये काम कर लो। तो इस तरह से परिवार को व्यस्त जिंदगी में इसी तरह हम परिवार के साथ समय निकाल सकते हैं।
1: बिल्कुल बहनी, देखा इतनी सुंदर सुंदर और महत्वपूर्ण बात आप हमारे साथ साझा कीन, हमारे बहनी हरण के साथ साझा कीन, तो आपके बात से एक बात तो स्पष्ट होता है कि परिवार के समय दे के लिए हमेशा घंटों की जरूरत ना होती कि बहुत देर टाइम दे तब परिवार खुश रहे, उनकी जरूरत ये होती कि आप उनका प्राथमिकता दे और उनके साथ रहा। आज हम सब ये छोटा सा संकल्प ले कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ पल उन लोगों के लिए निकाली, जरूर निकाली जिनके लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करी थे अपने परिवार के लिए।
2: देखा गंगा बहनी, कितनी नीक के बातचीत रही सुमन खन्ना से, आस्था यादव बहनी की बातचीत कितना फरिया फरिया के कीन, और हमारे बहनी हरे भी सुनिए और गुनिए।
1: बिल्कुल, तो एक रे साथे एक ठो गौ नहीं और हो जाए।
2: बिल्कुल बहनी, नेकी और पूछ पूछ।
1: तो चला सुना जाए एक ठो पूर्वी सावित्री श्रीवास्तव बहनी से,
2: चला सुन लें जाए।

0: गुंजा बहनी
1: हाँ
0: देखा कितनी नीक गौनाई रही ना।
1: देखा एक गौनाई से हाँ। एक संदेशो देता है कि जब हमने घरे छते पे द्वारे पे चिड़िया या कौवा बाग देत रहा या
0: हाँ, तो लागत है केहू आए जरूर,
1: केहू आए जाए।
0: तो आज हम सोचत रहे कि अपने रसोई घर के पनघटे पे
1: हाँ।
0: कोनो ऐसा चीज बताओ तो अपने बहनी हरेन के कि स्वादिष्ट भी होते और मतलब
1: पोषण
0: सेहतमंद भी
1: बिल्कुल
0: होते।
1: देखा आज हम गंगा बहनी रसोई घर से लाए बैठे मक्के की टिक्की।
0: अरे वाह।
1: तो सबसे पहले बहनी हरे सामग्री लिख लें। मक्के के आटा 2 कटोरी ले लें, 3 उबले आलू 2 से 3 घिसे हुए ले लें, हरी मटर है, ताजे मक्के के दाने जोन आधी कटोरी आटा
0: अच्छा,
1: परसे।
0: आटा भी पिसा हुआ ले लें और दाना भी हरा वाला ले लें जो आजकल आवत बा।
1: बिल्कुल बने। आप एक प्याज ले लें जो उनकी बारीक काटा हुआ हो, हरी मिर्च ले लें 2 ठी, कोनो बहनी यारे तेज भी खाते हैं तो अपने स्वाद अनुसार मिर्ची लें, अदरक 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लें, हरी धनिया बारीक कटी हुई लें, मसाला हल्दी पीसी, लाल मिर्च पीसी, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा और अमचूर पाउडर पिसा हुआ हो और नमक स्वाद अनुसार ले लें मैंने, और घी या तेल सेके के बदे ले लें।
0: अच्छा।
1: अब बहनी अरे विधि जान लें मक्के की टिक्की के। तो सबसे पहले एक ठो बर्तन में मक्के का आटा, 3 जोने आलू बताए रहे हैं उबला हुआ घिसा हुआ, ओका आटे में हरी मटर प्याज हरी मिर्च अदरक जोने मसाला बताए बटे सबके आटा में मिलाए के नरम आटा सान लें, कुछ बेरी ओका ढक्के रख दें। अब जोने आटा गूथे रहे उसे छोटी छोटी लोई ले लें और गोला करके हथेली से दबाए दबाए के हल्का चपटा आकार के गोल कर टिक्की बनाए लें आकार दे के। अब एक तवा का चूल्हा में गर्म हो दें, तवा में थोड़ा सा तेल लगाए दें गर्म करें। अब ओमें जो ने टिक्की है मध्यम आँच में दोनों तरफ से सेक लें, धीरे में धीमी आँच में, तेज करबू बहने तो जर जाए तो धीमा करके उका खूब अच्छे से सेक लें। अब हमारा मक्के की टिक्की बन के तैयार बा। तू चाहे हरी चटनी से खा या टमाटर की चटनी से खा, साथे साथे परोसो और स्वाद के आनंद उठावे।
0: वाह वाह, मुंह में पानी आएगी। देखा हम घरे चलब तो जरूर बने
1: बिल्कुल बहनी। और देखा मक्के में कितना पोषण रहा थे,
0: बिल्कुल
1: पाचन के बदे भी फाइबर रहा था।
0: आजकल तो देखा समय भी चलत बा, तो यही पे तो है खूब बढ़िया से एक गीत सुनाए देते नदिया के पार फिल्म से लता जी की आवाज में। चला सुना जाए।

0: जा बहनी।
1: हाँ बहनी,
0: देखा गीत सुन के कितना मन खुश होएगा
1: ना। बिल्कुल बहनी।
0: तो अब एक ईमेल संदेश सुन लिया जाए। चलो सुना जाए। हाँ, बातन में हो था अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन। हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: पनघट प्रोग्राम @ gmail.com। स्पेलिंग है

0: ANGHATPROGRAMME एट द रेट ऑफ gmail.com, पनघट प्रोग्राम एट द रेट ऑफ gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
2: बेसब्री से इंतजार रही।
1: गुंजा बहनी।
3: हाँ बहनी।
1: देखा पनघटे पे आए पे कितनी नीक नीक जानकारी बहनी हरन से साझा करे के मिलत है, कितना गीत गो नहीं मिलत है। मन कहा था कि पनघटे पे ही सारा दिन बिता है दे।
3: घर जावे कब हमार सुबह के एक घंटा कैसे बीत जाता कुछ पता नहीं चलत,
1: पता ना चलत बत कही करत करत। तो देखा सखियन के वो होते ना कि जब चार सखिया मिल बैठ के बतियाए शुरू करती तो कब समय बीत जाते पता ना चलत है ना। तो देखा अब अगले पनघट में हम सभी खूब अच्छी अच्छी जानकारी लेके आई अपने सखियन के लिए,
3: बढ़िया बढ़िया लोकगीत लेके आओ,
1: लोकगीत और ऊपर से वो प्रतिक्रिया दे,
3: हम
1: प्रतिक्रिया अवश्य दे। हाँ। तो चलो बहनी हरे राम राम किया जाए, चले के बेला भाव राम राम बहनी हरे
3: राम राम बहनी हरे।

0: appeal. On to sports. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. India time. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Toor will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lavlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. The India Meteorological Department, or IMD, has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. Heavy to very heavy rainfall is also likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights, India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubin Garg on his death anniversary, and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है

0: 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
0: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
0: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
0: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने

0: वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
1: इंडिया हैज लॉन्च,
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस,
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान

0: किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये

0: सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
1: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
2: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
1: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब समय हो चला है लोकगीत कार्यक्रम का। आज हम सुनेंगे राजा राम यादव और साथियों के गीत। तो पहला गीत है देवी गीत विधा से, हो पहड़वा वाली ना।

लोकगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, 3 बज रहे हैं, ये सभा संपन्न होती है। अगली सभा 5 बजे आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। इस दौरान FM 100.3 MHz पर विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे चुरू की घड़ी में 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा 11 में बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत। आज के कलाकार हैं शंकरलाल या पाल और साथी। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं देवी गीत।

0: इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सवाल जरूर फेस किया होगा, बड़े होकर क्या बनोगे? और हमारे जवाब होते थे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सिविल सर्विस। लेकिन आज सवाल यही हो और सामने हो जेंजी, तो उनका जवाब क्या होगा? उनके इसी जवाब से मिलेगा वो दो फैक्टर जो आज के भारत को नई दिशा दे रहे हैं। कौन से हैं वो दो फैक्टर, बात होगी उन पर भी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मैं अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो में हमारी पहचान है हमारी आवाज़, तो आज मैं आप पे छोड़ती हूँ कि मेरी आवाज़ से आप पहचाने कि आज आपके साथी कौन है।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे उन दो फैक्टर्स की जिन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया है हमारी लाइफस्टाइल से लेकर सोशल चेंज और इकोनॉमिक तक, एंड दैट इज इन्फ्लुएंसर एंड इनोवेटर। आज जब हम यूथ से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं तो उनका जवाब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता, अब हमें जवाब मिलता है कि मुझे अपना खुद का चैनल शुरू करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, या फिर खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, ऐप लॉन्च करना है। एक तरफ इन्फ्लुएंसर बनने का सपना,

सोशल मीडिया की वजह से हर हाथ में कैमरा है, हर किसी के पास मंच है अपनी बात कहने का। कम उम्र में लोकप्रियता, ब्रांड एंडोर्समेंट और अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी यूथ को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एल्गोरिदम का दबाव भी है, और वहीं दूसरी तरफ इनोवेटर का रास्ता। ये रास्ता आपको कहाँ ले जाएगा, बात होगी उस पर भी, लेकिन ये गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

इनोवेटर वो युवा है जो सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान खोजता है, चाहे वो क्लीन टेक हो, एआई हो या नया बिजनेस मॉडल। वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इन्फ्लुएंसिंग और इनोवेशन एक दूसरे के विरोधी हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है इन्फ्लुएंसिंग इनोवेटर बनना, यानी अगर आपके पास बेहतरीन आइडिया है तो उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए इन्फ्लुएंसिंग की कला आना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को समझना होगा कि रील की क्षणिक प्रसिद्धि ही सब कुछ नहीं है, असली पहचान वही है जो समाज में स्थायी बदलाव लाए।

आज के युवाओं की दुनिया स्क्रीन के रिफ्रेश रेट से बदल रही है। एक हाथ में स्मार्टफोन है जो हर सेकेंड नए ट्रेंड्स का मेला दिखाता है, तो दूसरे हाथ में वो बेचैन दिमाग है जो दुनिया को बदलने की छटपटाहट रखता है। इसी दोहरे पर खड़ा है आज का युवा। एक तरफ है इन्फ्लुएंसर की रातों रात मिलने वाली शोहरत और दूसरी तरफ इनोवेटर का वो खामोश जुनून जो इतिहास रचता है। इन्फ्लुएंसर्स की राह रील्स और शॉर्ट्स के इस दौर में इन्फ्लुएंसर होना किसी जादुई चिराग से कम नहीं लगता। 15 से 30 सेकेंड का कंटेंट, लाखों व्यूज और रातों रात सितारा बनने का खुमार, कंटेंट का हुजूम और ब्रांड की कतारें युवाओं को एक ऐसी आभासी दुनिया में ले जाती है जहां लगता है कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर है। लेकिन ये चमक कब तक? ट्रेंड्स बदलते ही डिजिटल दुनिया का ये ताज उतरने में भी वक्त नहीं लगता। ये एक हवा का वो झोंका है जो छूकर तो गुजरता है पर निशान नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ बंद कमरों, लैब्स और गैरेज में देर रात तक जलती हुई ट्यूबलाइट्स के नीचे

बैठा एक इनोवेटर होता है जो समस्याओं से भागता नहीं, उन्हें गले लगाता है। चाहे वो प्रदूषण से लड़ने की तकनीक हो या फिर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कोई ऐप। यहाँ तुरंत तालियां नहीं बजती, यहाँ असफलताएं भी मिलती है। लेकिन जब इनोवेटर का विचार सच बनता है तो वो सिर्फ अपना नाम नहीं बनाता बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवार देता है। सपना वो नहीं जो सिर्फ स्क्रीन पर चमके, सपना वो होना चाहिए जो किसी की जिंदगी में नई रोशनी भर दे। युवाओं को अब ट्रेंड्स का गुलाम नहीं बल्कि बदलाव का आर्किटेक्ट बनना होगा।

यकीनन आज की डिजिटल क्रांति ने युवाओं के सपने और आकांक्षाओं को नया मोड़ दिया है, लेकिन इसी बीच युवाओं के बीच ये बहस तेजी से छिड़ी है कि देश और समाज के भविष्य के लिए वास्तविक दिशा कौन सी सही है। इसमें अगर हम देखें तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आज काफ़ी डिमांड है उनकी। इसमें एक तरफ लाइक्स, शेयर, फॉलोअर्स के जरिए तुरंत पहचान मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएशन के जरिए करियर के नए रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन कई बार ये चमक धमक केवल ट्रेंड्स तक सीमित रह जाते हैं। इसका सामाजिक प्रभाव सहती हो जाता है। इनोवेटर्स वे सोच विचार वाले युवा हैं जो तकनीक, विज्ञान, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में जमीनी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढते हैं। नए विचारों, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के जरिए समाज में वो लॉन्ग टर्म चेंजेस लाते हैं। तो युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लुएंसर और इनोवेटर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। आज के समय में यदि एक इनोवेटर अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए इन्फ्लुएंसर की राह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करे तो वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।

श्रोताओं, अब बारी है हमारे सेगमेंट प्रेरणा पुंज की। और आज की हमारे प्रेरणा पुंज हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतक अल्बर्ट आइंस्टाइन केवल भौतिकी के सिद्धांतों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मानव जाति के लिए असीम जिज्ञासा, रचनात्मक और लगन की अमर प्रतीक थे। 14 मार्च को जर्मनी के उल्म नगर में जन्मे आइंस्टाइन ने अपने क्रांतिकारी विचारों से ब्रह्मांड को देखने और समझने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। बचपन में आइंस्टाइन सामान्य बच्चों की तुलना में देर से बोलना सीखे थे। स्कूल में उनके टीचर उन्हें पढ़ाई में अक्षम समझते थे। पारंपरिक और रटने वाली शिक्षा प्रणाली से उनका मन हमेशा विद्रोही रहता। उनके भीतर छिपी अद्भुत जिज्ञासा ही उनकी असली ताकत बनी। जब वो 5 साल की थे तो उनके फादर ने उन्हें कंपास दिया। सुई को हमेशा उत्तर दिशा की ओर वो हैरान रह जाते। इसी छोटी सी घटना ने उनके मन में प्रकृति के अदृश्य बलों को समझने की प्रेरणा दी। साल 1905 को विज्ञान के इतिहास में एनस मिराबिलिस कहा जाता है। प्रयोगशाला और आधुनिक उपकरणों के बिना केवल अपनी कल्पना और गणितीय सोच के बल पर उन्होंने इसी वर्ष 4 ऐतिहासिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,

इसने साबित किया कि प्रकाश तरंगों के साथ साथ कणों यानी फोटोन के रूप में भी व्यवहार करता है, और इसी खोज के लिए उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। ब्राउनियन मोशन, इसने परमाणुओं और अणुओं के वास्तविक अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। इसी के साथ आपको बता दें, स्पेशल रिलेटिविटी, इसने साबित किया कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यमान, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे सेगमेंट प्रश्न मंच की, जिसमें हम सवाल पूछते हैं और इसका सही जवाब अब अगले सेगमेंट में हम बताते हैं। तो कल का हमारा सवाल था, सत्य एक पथहीन भूमि है, ये कथन किसका है? इसका सही जवाब है जिदू कृष्णमूर्ति। आपको बता दें, जिदू कृष्णमूर्ति जी को वर्ल्ड टीचर की उपाधि दी गई थी, हालांकि उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उनका मानना था कि जिंदगी से बड़ा टीचर कोई नहीं होता है। और आज का हमारा सवाल है, भारत की पहली रंगीन कलर फिल्म कौन सी थी? आई रिपीट, भारत की पहली रंगीन कलर फिल्म कौन सी थी? आप इसका जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 8004926250। आई रिपीट, 8004926250। वैसे जाते जाते मैं अपने थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ आपसे। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम बीमार हो जाते हैं एकदम से, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उसका हिंट कहीं ना कहीं हमें 3-4 दिन पहले मिलता रहता है। जैसे रिसेंटली मैंने फेस किया कि शुरू में मुझे सर दर्द हो रहा था थोड़ा बहुत, मुझे लगा कैजुअल है, हो जाएगा, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब डॉक्टर ने पर्चे में पहले ही लिख दिया आराम, और मेरे भैया को कहा कि इन्हें सिर्फ आराम करना है। तो इस स्टेज पे हमें नहीं पहुंचना है। शुरू में आपको जो भी बॉडी आपको साइन दे रही है, प्लीज़ उसे नोटिस करिए और उसे प्लीज़ फॉलो करिए। कैजुअल नहीं लेना है। मुझे तो वायरल फीवर हुआ था, लेकिन हो सकता है कोई बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती थी। तो उस स्टेज तक हमें नहीं जाना है और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है। आई थिंक मैंने पानी को लेकर खिलवाड़ किया था, मैंने पानी ऐसी बाहर कहीं पी लिया था, तो वो चीज़ नहीं करना है। डॉक्टर ने फिर कहा कि उबाल कर छान कर पियो। सो बहुत बेटर है कि आप घर से अपनी वाटर बॉटल लेकर चलें। हम हमेशा जल्दबाजी में घर से निकल जाते हैं, और जब धूप लगती है ना और प्यास लगती है, फिर लगता है कि ओहो क्या भूल गए। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें हमेशा क्लियर रहना है। घर का खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवजन सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी ए कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवाल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। ABVP के यश डबास अध्यक्ष चुने गए, जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में ABVP की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय

0: निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब आपको जानकारी देते आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, 10 बजे सुनवाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे। धर्मदीन यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत और परिवार कल्याण की बात। 7:31 पर आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। डॉक्टर प्रणय कृष्ण श्रीवास्तव की वार्ता का विषय होगा क्लासिकी बनाम रोमांटिक एरा।

7:45 होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे नेहा चटर्जी के स्वर में भजन और गीत। 8:00 चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे अटल ऑडिटोरियम राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में आयोजित 20वें रोजगार मेला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर होगा प्रवीण कुमार मिश्र का। और अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 10 बजे सुनेगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम, इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:00 पत्रोत्तर का कार्यक्रम होगा चिट्ठी आई है, आपके पत्रों के उत्तर देंगी कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता और आपके प्रश्नों को आप तक पहुंचाएंगी वंदना राठौर। गलत समझा आपने, जीवनलाल गुप्ता की लिखी ये झलकी आज इतवार है कार्यक्रम में आप सुनेंगे। समय रहेगा 8:30। सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम से शुरू होगी हमारी पहली सभा। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर रामचंद्र से बातचीत कृषि और वन उत्पादन। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर कल हम आपको सुनाएंगे डॉक्टर आबिदा अकमल की वार्ता स्तनपान जरूरी क्यों। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुबह 7:00 आप सुनते हैं, कल सुनिएगा इसका 65वां भाग। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनेगा पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य का स्रोत वादन और दिन में 12:15 पर सुनवाएंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम होगा 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर कलाकार होंगी मनीषा निर्की और शाम 7:45 पर सुनाएंगे अरुण गुलवाड़ी के स्वर में भजन और गीत। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमाथरी 10:05 पर होगा, कलाकार होंगे कमलेश चंद्र यादव और साथी और संगीता मिश्रा। और दिन में 2:30 पर आप जिन कलाकारों को सुनेंगे वो हैं फूलचंद्र यादव और साथी, मुंशी राम बहादुर और साथी, कुंवर सिंह और साथी। बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ होगा दिन में

11:15 पर बच्चे सुनेंगे जय श्री श्रीवास्तव की कहानी चालाक लोमड़ी। आपकी फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीत आप तक पहुंचाएंगे हेलो अनुरोध कार्यक्रम के साथ 11:15 पर। 5 बजे ग्रामीण बच्चों के कार्यक्रम बाल गोपाल से शुरू होगी हमारी सायंकालीन सभा। बच्चे सुनेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव की बाल कहानी लालच के लड्डू। 5:15 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसमें कल युवजन सुनेंगे डॉक्टर एनी बेसेंट पर केंद्रित प्रेरणा पुंज और पंचायत घर कार्यक्रम होगा 6:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। मुक्तव्यापारसन्धिभिः देशस्य युवकेभ्यः नूतनावसराणां द्वाराणि उद्घाट्यन्ते इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रख्यातवान्। 20वें रोजगार मेला समारोहे 150,000 नवनियुक्तेभ्यः नियुक्तिपत्राणि चासौ प्रादात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् भारते प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनस्य परिमाणं वैश्विक मध्यमानस्य अर्धादपि न्यूनं वर्तते। अथ G20 देशेषु COP21 संकल्पान् समयात् पूर्वमेव सम्पाद्य भारतेन अधिगतम् अद्वितीयं साफल्यम्। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 इत्यस्यान्तर्गतं देशस्य बहुसंख्येषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 34,000 ग्रामीण युवकानां प्रशिक्षणं विधास्यते सर्वकारेण। जलाप्लावन विभीषिकातः साहाय्य प्राप्तये प्रयतमानाय नेपालाय भारतेन 11 टन परिमिता नूतन साहाय्य सामग्री प्रेषिता। अपि च जापान देशे अद्य 20वें एशियाई क्रीडा महोत्सवस्य औपचारिक समारंभो जातः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे दृश्य श्रव्य माध्यमेन समायोजिते 20वें रोजगार मेला समारोहे विभिन्नेषु सर्वकारीय संस्थानेषु 150,000 नवनियुक्त युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितवान्। अत्रावसरे सम्बोधयन् श्रीमोदी अवोचत् यत् विगतेषु वर्षेषु केन्द्रसर्वकारेण आगामि भविष्यस्य सज्जतायै युवकानां कौशलसंवर्धने तेभ्यः नूतनावसराणां प्रदाने च निरन्तरं ध्यानं केन्द्रितम्।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री मोदी न्यरूपयत् यत् सर्वकारः अप्रशासकीय क्षेत्रेपि उद्योगावसराणां द्रुतगत्या विस्ताराय कटिबद्धतया कार्यं करोति। अनेनैव उद्देश्येन प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययसाध्या प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रारब्धा। अस्याः योजनायाः माध्यमेन प्रायः 2 कोटि परिमिताः युवानः प्रथमतया कार्यबले प्रवेष्टुं समर्थाः भविष्यन्तीति आशास्यते। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रतिपादितं यत् भारतेन विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु प्रायः 40 देशैः सह मुक्तव्यापारसन्धिः हस्ताक्षरितः, येन देशस्य युवकेभ्यः अवसराणां नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि सन्ति। सः अवोचत् यत् एतादृशाः व्यापारसन्धयः देशस्य उद्यमिभ्यः नूतनसहभागितानां विपणीनां च मार्गं प्रशस्तं कुर्वन्ति, युवकानां कृते च आजीविकायाः नूतन संभावनाः सृजन्ति। श्रीमोदिना उल्लिखितं यत् भारतमद्य विश्वस्य तृतीयं विशालतमं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रं संजातम्।
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् भारते प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनस्य प्रमाणं जागतिक मध्यमानस्य अर्धादपि न्यूनं वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य जलवायु

0: उद्घाटनम् अत्रावसरे समुद्घोषितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

पंचन भैया के, राधा वहिनी के प्रणाम। तो पंचन भैया, आज अपनी पंचायती में ना सबसे पहले आज हम बात करब आपसे जौन अपने खेती किसानी में हमका सभी के सबसे ज़्यादा जरूरत पड़त है, वो है अपन खेती किसानी के बढ़िया बनावे के लिए, फसल के अच्छा बनावे के लिए, उत्पादन बढ़ावे के लिए ओमा जरूरत पड़त है पैसा। तो भैया, अपन बीज, खाद, दवाई और खेती से जुड़ी और जितने भी जरूरत है ना, ओकर खातिर जो पैसों की जरूरत पड़त है, ओकरे बारे हमार सरकार की ओर से एक बहुत बढ़िया योजना है, और उ योजना से हमार पंच भैया हरे समय समय पे जुड़त रहा था, लेकिन जौन भैया हरे योजना से नहीं जुड़े हैं उनके लिए ही खास है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तब भैया देखा कि अपने खेती में समय समय पर नई नई फसलन के बारे अपने सबे के कौनो न कौनो तरह से जरूरत पड़त रहता है कि हम सबे कहूँ न कहूँ से ऋण ले ली, और जब हम सबे ऋण ले लेते तो ओकर जो ब्याज दर होते है वो इतना ज़्यादा होते कि चुकावत चुकावत लगत है कि फसल के जौन भी उत्पादन है, जौन भी हम आमदनी करते ही वो सब ओमा चला जाए। तो भैया, अगर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ ले ली हैं तो आपका समय पर ऋण मिल जाए और ओकर जौन ब्याज दर है वो भी बहुत कम आए। तो भैया, आज हम एक बात करब कि 2 लाख से के तक के जौन भी लोन है उमा आपके कोनो तरह के गारंटी के जरूरत नहीं पड़त है। आप खेती के उत्पादन के बढ़ावे के लिए, अपन जरूरत पूरा करे के लिए लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इहो है भैया के पशुपालन होए, मछली पालन हो, कोनो तरह के और भी काम करे के होए तो आप ई योजना के लाभ ले सकते हैं। ई योजना के बारे भैया अपन दस्तावेज लेके आप कोनो अपने बैंक में जाएं, ई योजना के कार्ड बनवाए लें और वो कार्ड से आपके लाभ मिल सकते हैं। तो ई लाभ के आप 5 वर्ष तक वैध रहते हैं, तो जौन भी भैया हरे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ ले चाहत हुए वो बैंक में जाएं और एकर लाभ ले लें। तो भैया, अपने पंचायती में बात बात कही तो होत रही, लेकिन उससे पहले गीत गवनई ना हुई तो कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो आज अपने पंचायती में गवनई है बरम दीन यादव और संघातिन के, आवाज़ सुना जाए उनके विकास गीत।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: पंच भैया देखा बरमदीन यादव और संघातिन के गवनई सुना गवा साथे साथ संदेशों सुन लेवा गवा। लेकिन पंच भैया आज अपनी पंचायती में हम आप सबे से एक और खास बात करब, वो है बागवानी की। देखा अपन सबे के काम है खेती किसानी के, लेकिन अगर हम सबे अपने खेती किसानी के साथे साथे पशुपालन में ध्यान दे और साथे साथ अगर बागवानी में अच्छा ध्यान दें तो हमार सबे के आमदनी बढ़ सकते हैं। फल सब्जी फूल मसाला और दूसर बागवानी वाली फसलन से भी ना हम सबे अपन खेती के दायरा बढ़ा सकते हैं। तो बागवानी के समग्र विकास खातिर ना हमार सरकार एक और योजना लेके आए हैं। वो योजना है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। काहे का मतलब ये है कि जौन भी हम बागवानी में कोनो नया तरह का अगर हम सबे बागवानी करब, चाहे वो फूलन के करी, फूल के फलन के करी या मसाले के करी।

0: उसे हमार सभी के जौन आमदनी है उ तो बढ़ सकत है, हमार खेती में जौन पैदावार है उत्पादन है वह बढ़ सकत है। तो अच्छी पौध और नए बाग लगावे के ना पुराने बागन के सुधार, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन, बागवानी यंत्रीकरण और फसल कटाई के बाद की व्यवस्था जैसे के बढ़ावा दे के लिए हम सभी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बात कर रहे थे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ के हमार किसान भैया हरे, हमार पंच भैया हरे अपन जौन भी तरह के काम है ओका बढ़ा सकते हैं। इकर लिए हमार जौन भी बागवानी फसलन है ओकर विकास में हमार सरकार, हमार जिन भी किसान भैया हैं उनके साथ है। और हम सभी देखते हैं कि जौन भी बागवानी करत हैं हमार भैया लोगन वो आगे बढ़त हैं, तो काहे ना हम सभी भी नई तकनीकी के अपनाए के, आधुनिकरण के अपनाए के, बागवानी में कुछ नवा कह के, चाहे देखा हम आर प्रयागराज के आसपास के जौन भी जिला हैं उमा आम, अमरूद, आंवला, केला तरह तरह के हम सभी बागवानी करत आए हैं। लेकिन अगर उमा हम फूलन से बागवानी करी, मसालन के करी, नई विधि से करी, नई तकनीकी से करी, अपन नए विचार के लायके करी और इमा साथ दे के बरे आपके तरह तरह के ब्लॉक में हमार सभी के जागरूक हमार डॉक्टर साहब बैठा थे उनसे आप सभी बात कर सकते हैं। और नई खेती के बारे में आपके कोनों भी तरह के चर्चा करे के हो, कोनों तरह के जानकारी लेके हो, तो आप हमार सभी के कार्यक्रम के जरिए भी ले सकते हैं जहाँ विशेषज्ञ भैया आवत हैं और आप सबसे बातचीत करते हैं कैसे में का कीन जा सकते हैं। तो हमार सब पंचम भैया हर के यही सलाह है कि खेती के साथ साथ नई बागवानी से भी जुड़े, मसाला के बागवानी से जुड़े, फल के बागवानी से जुड़े और साथ साथ फूल के बागवानी करें। तो नई बागवानी, नई तकनीकी, नई सोच के साथ अगर हम सभी अपन खेती किसानी के आगे बढ़ाओ तो हमार सभी की आमदनी भी हुई और खुशहाली भी आई। तो भैया बात बात कही तो और भी हुई, लेकिन अब समय होते आज शनिवार के दिन है तो परिवार कल्याण की बात हुई। परिवार कल्याण की बात में आज दांतों के प्रमुख रोग एवं उनसे बचाव के बारे में डॉक्टर अनिल कुमार से आशुतोष सुंदरम जी के बातचीत बा, सब पंच भैया हरे सुने और रोके गुने।
1: ग्रामीण भाइयों, आज हमारे साथ पंचायत घर कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार, आप डेंटल सर्जन हैं और आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि दांतों की प्रमुख बीमारियां क्या होती हैं।
2: दांत एक हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है और दांत जितना ऊपर निकला रहता है उतना ही करीब करीब वो मसूड़े के अंदर दबा रहता है।
1: अच्छा,
2: तो दांत की मुख्यतः दो बीमारियां हैं, एक तो जिसको बोलते हैं कीड़ा लगना
1: जी,
2: जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कैरीज और आम भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग जाता है।
1: अधिकांश लोग इससे प्रभावित रहते हैं कि दांतों में कालापन आ जाता है।
2: हाँ, अधिकांश लोग इससे प्रभावित रहते हैं
1: जी।
2: और कीड़ा लगने का बहुत शुरुआत में मरीज को क्योंकि कोई तकलीफ नहीं होती इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता है
1: जी।
2: लेकिन उसी वक्त अगर वो जरा सा ध्यान दे दे, उसमें फिलिंग करा ले, केमिकल साथ हैं उसकी फिलिंग करा ले तो दांत बच जाता है
1: जी।
2: और नहीं ध्यान देता तो वो कीड़ा जो है वो एक्चुअली दैट इज डिके, वो धीरे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। फिर वो दांत की दूसरी लेयर में आया, जब दूसरी लेयर में आता है तो थोड़ा ठंडा पानी लगना, गर्म पानी लगना, ये सब शुरुआत होती है, लेकिन तब भी इसको मरीज ओवरलुक कर जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब ये कीड़ा लगता कैसे, जिसे आम भाषा में कहें कीड़ा लगना?
2: कीड़ा एक्चुअली जब हम मीठा खाते हैं या खाना वाना खाने के बाद हम मुंह को साफ नहीं करते हैं तो जो कीटाणु इनएक्टिवेटेड पड़े रहते हैं वो मीठा वगैरह खाने से थूक का पीएच बदल जाता है, वो एसिडिक हो जाता है मीडियम।
1: अच्छा,
2: तो जब वो उसका पीएच बदल जाता है तब ये कीटाणु एक्टिवेट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे दांत को गलाने लगते हैं। एक्चुअली इट इज़ डीमिनरलाइजेशन
1: जी जी,
2: जो दांत जिन चीज़ों से बना होता है, कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस वगैरह से बना होता है, इनका ये डीमिनरलाइजेशन है
1: जी जी।
2: और देयर इज़ नथिंग, मतलब कीड़ा कोई चीज़ नहीं है जो कि दांत पे बैठ के काटे। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियल फ्लोरा होता है पेट के अंदर है वैसे ही मुंह के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, तो उसकी वजह से ये डीमिनरलाइजेशन होता है।
1: हमें लगता है कि ये हमारी जो खान पान की आदतें हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा प्रभावी हो जाता है।
2: हाँ, खान पान की आदतें और मुँह की सफाई
1: जी।
2: हमारे देश में बल्कि उत्तर भारत में कहिए कि मुँह की सफाई पर आदमी बहुत कम ध्यान देता
1: जी जी अभी भी लोग मतलब इतनी चेतनता के बाद भी लोग बिना कुल्ला किए बिना मुंह साफ के खाने पीने लगते हैं।
2: सुबह उठेंगे बिना कुल्ला किए पान मसाला दबा लेंगे, पान दबा लेंगे।

0: ऑल दिस एंड दैट. तो मुंह की सफाई के बारे में अभी हम लोग इतने ज़्यादा कॉशियस नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा अब लोग कॉशियस हो रहे हैं. थोड़ी सिर्फ थोड़ी चीज़ें ध्यान रखी जाएँ, और सुबह सो के उठ के कायदे से ब्रश कर लें और रात को सोते समय ब्रश कर लें, तो काफ़ी कुछ कीड़े से बचा जा सकता.
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे ग्रामीण परिवेश में लोग जो टूथब्रश है ये तो करते ही, इसके अलावा दातून का प्रयोग किया जाता है, ये कहाँ तक लाभकारी? नीम की दातून खासतौर से.
0: दातून बहुत अच्छी चीज़ है, दातून को खूब चबाना चाहिए
1: जी,
0: लेकिन उसको जो ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं है उससे, क्योंकि वो उसके जो ब्रिसिस बनते हैं यानी जो तार बनते हैं वो इतने महीन नहीं होते, वो होते हैं मोटे
1: जी.
0: वो मसूड़ों में जा करके मसूड़ों में जख्म पैदा करते हैं
1: जी.
0: और उसको चबाना खूब चाहिए. इसको चबाते चबाने से क्या होता है, मसल्स ऑफ मस्टिकेशंस यानी वो मसल्स जो हमको चबाने में सहायक होती हैं उनकी खूब एक्सरसाइज हो जाती है, दांतों की भी खूब कसरत हो जाती है, तो मसल्स ऑफ मस्टिकेशन और दांत खूब हेल्दी रहते हैं. गम्स की भी मसाज हो जाती है तो वो भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं.
1: तो ये सब चीज़ें लाभप्रद हैं कीड़े से बचाने में.
0: हाँ,
1: इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या बीमारियां होती हैं दांतों में सामान्यतः?
0: और दूसरी जो बड़ी ख़ास बीमारी है जिसको बोलते हैं पायरिया.
1: जी,
0: पायरिया दो शब्द से मिलकर बनता है, पाय और रिया, जिसका मतलब होता है मवाद का बहना, फ्लो ऑफ मवाद.
1: अच्छा.
0: एक्चुअली जब आप हम लोग दांत नहीं साफ करते तो दांत के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है.
1: जी.
0: अगर हम दांत के ऊपर अपनी जवान फेरें तो हमको महसूस होता है एक पतली सी लेयर है, इसको बोलते हैं प्लाक. इसी प्लाक में बैक्टीरिया फंसते हैं और वो धीरे धीरे आपके मसूड़ों को, फिर वही आ जाता है कि जो थूक का मीडियम चेंज हो जाता है तो वही बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं. ये धीरे धीरे आपके मसूड़ों को गलाने लगते हैं, मसूड़े गलते जाते हैं, नीचे की तरफ सरकते जाते हैं. आपने देखा होगा बहुत से लोगों के दांत और मसूड़ों के बीच में काला काला या हरा हरा जमा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टार्टार या कैलकुलस.
1: अच्छा.
0: तो यही कैलकुलस या टार्टार जो है धीरे धीरे मसूड़ों के अंदर की तरफ ये घुसता पहुँचता चला जाता है, मसूड़ों को नष्ट करता जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, ये उस हड्डी के ऊपर अटैक करने लगता है जिस हड्डी पे दांत फंसे होते हैं
1: जी.
0: और जब उस हड्डी पे हड्डी गलने लगती है तो अल्टीमेटली दांत धीरे धीरे हिलने लगता है और वो फिर अपने सॉकेट से बाहर निकल आता है. ये मोटे तौर पे ये है पायरिया.
1: अच्छा.
0: इसका भी इलाज यही है कि अगर आप दो बार ब्रश कर लें तो जिसको अभी मैंने बताया था प्लाक, ये प्लाक ख़त्म हो जाता है. ये प्लाक मुंह के अंदर अगर जमा रहता है तो हमारे थूक से म्यूसिन कार्बोहाइड्रेट्स ये सब एब्जॉर्ब करता रहता है और ये धीरे धीरे कठोर होता चला जाता है. अगर इसको हम एक दफ़े कायदे से ब्रश कर लेते हैं खूब ढंग से तो ये प्लाक ख़त्म हो जाता है और ये 12 से 14 घंटे के लिए ही ख़त्म हो जाता है प्लाक. इसीलिए दो बार ब्रश करने की सलाह देते हैं
1: डॉक्टर साहब. एक बार जब बीमारी हो गई हमें दांतों की तो फिर हमें उसका इलाज तो कराना ही पड़ता है, लेकिन आप एक सामान्य रूप से क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए वो किन बिंदुओं का पालन करें, क्या आवश्यक चीज़ें अपनाएं?
0: एक तो मीठा अवॉइड करें
1: जी.
0: अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो मीठा खाने के बाद बहुत कायदे से मुँह धो लें ताकि कोई शक्कर का कोई कण ना रहने पावे. और सबसे अच्छी सलाह जो है या सबसे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप सुबह उठ करके और रात को सोते समय ब्रश जरूर कर लें. ब्रश के बारे में भी बता दें, ब्रश बहुत मुलायम होना चाहिए, उसका हेड यानी वो चीज़ जिसके के ऊपर तार होते हैं वो बहुत छोटा होना चाहिए.
1: अच्छा.
0: ब्रश करने का भी एक तरीका है ऊपर वाले दांतों के लिए नीचे की तरफ और नीचे वाले दांतों के लिए ऊपर की तरफ, यानी ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए. बहुत से लोग दाएं बाएं घुमाते हैं,
1: ऐसा नहीं करना
0: वो गलत है
1: जी. ऊपर नीचे करके आप अपने दांतों को
0: स्वस्थ रख सकते हैं.
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब ने आपको जो सलाह दी आप उसका पालन करिए तो निश्चित रूप से आपके दांत स्वस्थ रहेंगे. सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: तपन भैया, हम सबे सुनाए गवा आशुतोष सुंदरम जी से डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी के बातचीत जो दांतों के प्रमुख रोग और उनसे बचाव के बारे में बतावत रहे. तो पंच भैया आपसे विदा लेके समय हो गया है. पंचो राम राम.

0: पंचो जय हिंद।
1: अभिषेक भैया।
0: हाँ पुनीता बहनी।
1: भैया अपने देश के रहे हर मनाई तक पर्याप्त अनाज हुए और वह पौष्टिक खाद्यान्न के उपलब्धता हो, यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और भैया यह उद्देश्य से जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करा गया।
0: बिल्कुल बहनी, और यू मिशन का उद्देश्य यह है कि जो है चावल है, गेहूं है, दलहन है, ये जैसी जो प्रमुख फसलें हैं इनका उत्पादन बढ़ावा जाए और उत्पादन बढ़ाए के हर पंचतीर पहुंचावा जाए।
1: और भैया देखो इका और उद्देश्य यह है कि अपने जो किसान भाई हैं, पंच भाई हैं, जो उन खेती करत हैं, उनका बढ़िया से बढ़िया यानी उन्नत बीज उपलब्ध करावा जाए और आधुनिक कृषि तकनीक के माध्यम से खेती बाड़ी सिखाई जाए और पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग कैसे करा जाए, फसल प्रबंधन कैसे करा जाए, ये सब बातें जो नहीं है भैया प्रशिक्षण दिन जाते और उनके माध्यम से अपने पंच भाई के यहाँ जागरूक करा जाते।
0: और बहनी देखा जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इमा खाली उत्पादन बढ़ावा खाली या योजना नहीं ली गई है, मूल्य के साथ साथ में यहाँ आपकी खेती के जो माटी है ये कैसे निक रहा है, की उर्वरता शक्ति कैसे बनी रहा है, देश में यह खाद्य सुरक्षा के यहाँ मजबूत की जा सके, ये दिशा में यह तमाम तनके महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
1: और अभिषेक भैया जब हम पंच खेती पाती करे थे ना तो जहाँ बातें हम कोई कर रहे हैं दलहन के, तिलहन के, चावल के, और साथ है भैया देखो हम सबको अपने मिठास के फसल भी उपजाई थे, तो अपने गन्ना से नहीं संबंधित सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आगामी पेराई सत्र में किसानों को सप्लाई स्लिप जारी होने से पहले ही ई गन्ना ऐप पर अपना गन्ना कैलेंडर, अनुमानित उत्पादन और संभावित सप्लाई स्लिप की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे वे घर बैठे ही जान सकेंगे गन्ना कब काटा जा सकता है और चीनी मिल को कब तक सप्लाई करनी है। गन्ना विभाग अंतिम गन्ना कैलेंडर तैयार कर रहा है। चीनी मिलों में पेराई शुरू होने से पहले यह canup.in पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के सर्वे से संबंधित विवरण भी सिस्टम पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस डिजिटल सुविधा के तहत किसान ई गन्ना ऐप पर अपना गन्ना कोड दर्ज करके कैलेंडर के साथ संभावित सप्लाई स्लिप की संख्या भी देख सकेंगे। जिन किसानों को कोड याद नहीं है वे अपना नाम और गांव का विवरण डालकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे गन्ना आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता काफी हद तक कम हो जाएगी। किसान समय से कटाई और मिल तक पहुंचाने की तैयारी कर सकेंगे। स्लिप जारी होने पर उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए अलर्ट भी भेजा जाएगा। यह सुविधा किसानों को बेहतर योजना बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी।
0: प्रीता बहनी ये तो रही आज की खबरें और अब बारी है देखो आज की बातन के, तो का है आज की बातन में यहाँ विशेष बताए दो पंच बहन के यहाँ।
1: भैया आज की बातन में यहाँ है भेड़ बकरियन के आहार व्यवस्था और उनका प्रबंधन, जी के बारे में हम बता रहे हैं डॉक्टर इति मिश्रा और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो भैया सुनी जाए आज की बातें।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खेती के साथ साथ आप पशुपालन कर रहे हैं खास करके भेड़ और बकरी पालन, तो इस मौसम में भेड़ और बकरियों की आहार व्यवस्था और उनका प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक डॉक्टर इति मिश्रा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि भेड़ और बकरी पालन से जहाँ पशुपालक भाई बहन जुड़े हैं वहाँ उनके बेहतर स्वास्थ्य और अच्छे उत्पादन के लिए इस समय आहार व्यवस्था कैसे रखें, कितना रखें, कब रखें?
4: सबसे पहले मेरे पशुपालक भाई बहनों को नमस्कार। जहाँ तक ये बारिश का मौसम, बरसात के मौसम के दृष्टिगत आहार व्यवस्था का प्रश्न है, तो पहले मैं ये आप बताना चाहूँगी पशुपालक भाई बहनों को कि भेड़ और बकरी चराई पर निर्भर करते हैं। 6 से 8 घंटे वो चराई करते हैं
3: जी।
4: तो 6 से 8 घंटे की चराई के बाद भी उनको वो आहार पूर्ण नहीं है, उसको पूरा करने के लिए दाना मिश्रण या कंसंट्रेट मिक्स देने की ज़रूरत है। अब ये जो कंसंट्रेट मिक्स है ये घर में ही मौजूद स्थानीय जो लोकल अनाज और दालें उपलब्ध हैं उससे बनाया जा सकता है। तो उसमें आप 3 हिस्सा मक्का, गेहूं या जौ जैसा अनाज लेकर के उसमें 1 हिस्सा गेहूं जौ का चोकर ले सकते हैं और 1 हिस्सा खली ले सकते हैं, मूंगफली, सरसों या तिल।

0: की, इन तीनों को मिला करके एक कंसंट्रेट मिक्स बनाया जा सकता है और ये जो चराई आधारित जो पोषण था उसको पूरा करने में ये पूरी तरह से मददगार साबित होगा, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करना है, बढ़ते हुए बच्चों को, मेमनों को, और वयस्क में भी गाभिन है पशु, उसमें भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और बीमारी से बचाने के लिए भी खनिज लवण या मिनरल मिक्सचर भी देने की आवश्यकता है। लगभग आधा मुट्ठी एक वयस्क जानवर को दी जा सकती है, और इसके अलावा पशु के सामने एक नमक का ढेला भी रखा जा सकता है, जिससे जो भी वो पोषक तत्व या जो भी वो अनाज और जो भी चारा दाना ले रहा है उसके पाचन में वो सहायक होगा।
1: तो साधारण नमक या सेंधा नमक?
0: साधारण नमक भी दिया जा सकता है, सेंधा नमक और काला नमक भी दिया जा सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरा पोषण तभी होगा जब 24 घंटे स्वच्छ और ताजा पानी उपलब्ध रहे। लगभग एक वयस्क बकरी को 3 से 4 लीटर स्वच्छ ताजा पेयजल की आवश्यकता होती है
1: 24 घंटे में।
0: बरसात के मौसम के दृष्टिगत मैं कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो भी आप दाना खिलाएं उसमें ये जरूर देखें कि नमी के कारण कहीं फफूंद तो नहीं हो गई है। इसीलिए ताजा ही दाना मिश्रण बनाएं और ताजा ही उसको दे दें, इकट्ठा ना बनाएं, बहुत ज्यादा ना बनाएं।
1: डॉक्टर साहब, शारीरिक अवस्था के अनुसार आहार भेड़ बकरियों का तय करना होगा?
0: बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नवजात मेमना या बच्चा है, उसको खीस जरूर 1 से 2 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए। खीस में रोग प्रतिरोधक तत्व होता है और साथ ही मेमने का जो पहला मल जो उसके इंटेस्टाइन में, उसके आंत में रहता है, वो निकालने में भी सहायक होता है।
1: यानी पेट की सफाई हो जाती है।
0: पेट की सफाई हो जाती है। और उसके बाद 3 दिन तक 250 ग्राम दूध रोज देना चाहिए, एक पाव दूध रोज बच्चे को देना चाहिए। उसके बाद 2 सप्ताह के बाद धीरे धीरे वो दूध कम कर देना चाहिए और एक बच्चों में शुरू करना चाहिए क्रीप फीड या स्टार्टर फीड।
1: अच्छा।
0: वो जो क्रीप फीड स्टार्टर फीड होता है, इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। भेड़ और बकरियों में एक पेट नहीं होता, ये 4 पेट वाले जानवर हैं, र्यूमन होता है। तो र्यूमन के विकास के लिए और इनकी तेजी से ग्रोथ के लिए, इनके वजन में वृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है।
1: लेकिन इनकी मात्रा कितनी?
0: बिल्कुल, जहाँ तक मात्रा का प्रश्न है, ये अगर 5 केजी का बच्चा है तो उसे 50 से 100 ग्राम तक दिया जाए, और 8 केजी का पशु है तो 100 से 150 ग्राम, और धीरे धीरे बढ़ाते जब 12 केजी का 15 महीने का पशु है तो उसे 300 ग्राम तक एक वयस्क नर या मादा को 300 ग्राम फीड तक दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जो भी भेड़ बकरियों के मेमने हैं, बच्चे हैं, उनको स्टार्टर राशन जो आप देने की बात कर रही हैं, तो इसके कुछ खास नियम होंगे, कुछ सावधानियां होंगी?
0: हाँ बिल्कुल, सावधानियां और नियम जरूर हैं, क्योंकि ये शुरू में दूध पी रहे हैं बच्चे 2 हफ्ते तक, उसके बाद हम 2 सप्ताह बाद इसमें ये शुरू कर रहे हैं, तो इनके सामने मन चाहा थोड़ा सा दाना रख दिया जाए ताकि वो धीरे धीरे चखते रहें, और चखने के साथ धीरे धीरे इनमें उसको खाने की प्रवृत्ति बने और उसमें रुचि आए। और साथ ही इनका जो फीडर हो, क्री फीडर हो, वो इतना छोटा हो कि अन्य जो वयस्क मादा या नर हो या बकरी भेड़ हो, वो उस क्रीप फीडर में अपना मुंह घुसा करके उनका स्टार्टर राशन ना ले सके, केवल बच्चे ही उसमें ले सके। और जो भी ताजा दाना हो वो कम मात्रा में ही दे, इकट्ठा ना दे।
1: डॉक्टर साहब, जो गर्भित भेड़ और बकरियां हैं उनकी आहार व्यवस्था में कुछ खास?
0: गर्भावस्था में 4-5 महीने के गाभिन पशु को 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं।
1: यानी एक पाव अतिरिक्त,
0: जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं कि एक वयस्क को 250 से 300 ग्राम तक चाहिए उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो वही मादा अगर गर्भावस्था को प्राप्त हो गई है तो 300 ग्राम में 250 ग्राम या एक पाव अतिरिक्त जोड़ करके उसको दाना का मिश्रण दिया जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बरसात का मौसम है, ये तो रही आहार व्यवस्था की बात भेड़ और बकरियों के लिए, उनका प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है?
0: बिल्कुल, प्रबंधन का बिंदु है, तो हमने आहार के बारे में तो काफ़ी कुछ पशुपालक भाई बहनों को बता दिया है। बाड़े को लेकर के भी हमें बहुत सावधान

0: सावधान रहना है, क्योंकि बकरी में नमी के कारण कई ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, जैसे फुट रॉट है, पीपीआर है, तो हमेशा इनका शेड जमीन से ऊपर होना चाहिए, भूमि से ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, और धूप और हवा का आवागमन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि नमी ना रहे बाड़े में। और बाड़े में 10 वर्ग फीट बाड़े में स्थान होना चाहिए एक पशु के लिए, एक व्यस्क के लिए, और 20 वर्ग फीट बाहर का स्थान होना चाहिए,
1: खुला स्थान
0: घूमने के लिए। और इसके अलावा जैसा कि पहले भी है कि गीलापन और नमी से बहुत ज्यादा जरूरी है बचाव करना, बाड़ा सूखा रहना चाहिए।
1: देख, सब पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे भेड़ बकरियों की आहार व्यवस्था और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 705-459-7847 7054597847 7054-59-7847।
1: डॉक्टर इति मिश्रा, आज आप कार्यक्रम में आई और भेड़ बकरियों की आहार व्यवस्था इस मौसम में कैसी हो और उनका प्रबंधन कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: प्रीता बहनी, पंचन के यहाँ इंतजार रहा थे कि जानकारी के बातन के साथ साथ कुछ गीत गौने सुन जाए तो मजा आ जाए थे। तो देखो आज हम पंचन बद लायन है एक कजरी, जिसका सुनाए रही संजोली पांडे बहनी।

0: अभिषेक भैया,
1: हाँ बहनी,
0: जहाँ अपनी थाली में है
1: हाँ
0: दाल चावल रोटी जरूरी है, उसके साथ साथ हमका लागत है सब्जी और ज्यादा जरूरी है,
1: बिल्कुल भैया,
0: क्योंकि इनसे जो है बहुत पौष्टिकता मिलत है। तो ई पौष्टिकता भरी सब्जी तब ही मिली है हमका
1: हाँ
0: जब उनका अच्छा बीज उत्पादन हुई।
1: हाँ
0: तो
1: बहनी,
0: भैया देखो, आज अपने बीच में यहाँ है दूरभाष वार्ता के माध्यम से नहीं, परमेंद्र सिंह तोमर भैया
1: हाँ
0: जोन करते हैं सब्जी मटर बीज उत्पादन। तो भैया यह जानकारी लीन जाए आज के किसान के अंतर्गत परमेंद्र सिंह तोमर भैया से।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं जालौन जनपद के कौंच ब्लॉक के ब्रासनी गांव, जहां सब्जी उत्पादन और सब्जी बीज उत्पादन से जुड़े परमेंद्र सिंह तोमर भैया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। परमेंद्र सिंह तोमर भैया नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: आप सब्जी उत्पादन और सब्जी मटर के बीज उत्पादन के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, ये बताएं कि इसकी शुरुआत हुई कब से?
3: सर इसकी शुरुआत हमारी हुई है 2017 से। हाँ,
2: यानी लगभग 9 साल हो गए।
3: 9 साल। इसका हम जो ब्रीडर सीड लाए थे वो कानपुर चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से इसका ब्रीडर सीड लाए थे, जनक सीड।
2: अच्छा,
3: इसके पहले हम किसान थे और हमने देखा कि अच्छी क्वालिटी के उन्नत सील हमको बीज बोना है, अच्छी क्वालिटी के बीज हमें किसानों को देना है। हमारा जो किसानों का समूह जुड़ा है वो 50 गांव में हमारा किसानों का एक समूह बना हुआ है।
2: और सब सब्जी मटर उत्पादन करते हैं,
3: हाँ
2: तो जब पैदा होता है तो हरी मटर क्या बाजार को भी भेजते हैं?
3: हाँ जब पैदा होने के बाद हम किसानों में जो अच्छे किसान है, हमारा करीबन 5 राज्यों में बीज जाता है।
2: तो सब्जी मटर में कौन कौन सी प्रजातियां आप लगाते हैं अपने खेत पर?
3: अपने खेत में हम लगाते हैं AP3, GS10। GS10 में 3-4 वेराइटियां हैं, और काशी उदय, काशी नंदिनी और M7, अजंता 7 करके आती है एक वेराइटी लुधियाना यूनिवर्सिटी की,
2: जी
3: उसको भी लगाते हैं। अर्किल भी लगाते हैं, अर्किल का सीड हम पंतनगर से लाते हैं, कुछ सीड हम जबलपुर यूनिवर्सिटी से लाते हैं, कुछ हम दिल्ली पूसा से लाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियों से हम उसका जनक सीड लाते हैं, ब्रीडर। ब्रीडर से हमारा बनता है फाउंडेशन फर्स्ट और फाउंडेशन सेकंड हम किसान को देते हैं, और पूरा माल हमारा फाउंडेशन सेकंड से 35 में पूरा हमारा जाता है। बीज की जैसे जिस किसान को हम बीज लगवाते हैं उसकी देखभाल हम करते हैं, उसकी हम उसमें जो सेरिगेशन पौधा होता है उसको निकलवाते हैं, उसकी

0: थ्रेसिंग करने के बाद उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद अपनी मशीनों से ग्रेडर ग्रेफ्टी करते हैं। बीज बिधायन की हमारी जो मशीनें लगी हुई हैं
1: जी,
0: उसके बाद हमारा शॉर्टेक्स प्लांट से भी माल निकलता है। कोई दाना कटा पटा जो दाना होता है उसको हम निकलवाने के बाद उसकी बुनाई भी करवाते हैं। जैसे दाना हमारा कटा है, मिट्टी है, कंकड़ है, उसका सब मशीनों से निकलने के बाद उसमें काफी हमारा इन्वेस्ट निकल जाता है। जो नंबर एक की क्वालिटी जो बनती है, प्योरिटी जो होती है, 100 में से 100 भी दाने का जर्मिनेशन हो, वो हम किसानों में अन्नदाता किसानों को देते हैं।
1: तो इस साल क्या योजना है आपका, सब्जी मटर बीज उत्पादन का रकबा कितना होगा, और किसान भाई बहन जो 50 गांव में आपसे जुड़े हैं उनका मिलाकर के इस बार रकबा कितना होगा?
0: इस साल हमारा जो बीज का अनुमान है, जो हमें बीज बांटना है, वो हम बांटेंगे 1000 क्विंटल किसानों में बीज हम बांटेंगे, उसका हमारा 10 गुना उत्पाद होगा, 10000 क्विंटल का उत्पाद हो जाएगा। और हम अपनी जमीन में 400 बीघा जमीन में अपने खुद की जमीन में बीज करते,
1: यानी एकड़ में बात करें तो
0: मान के चलो 400 बीघे का अपना जैसे हो गया, हमारे यहाँ जो एकड़ होता है वो 2.5 बीघे का एकड़ हो गया है
1: जी,
0: 400 बीघे का हमारा एकड़ हो गया, करीबन 200 एकड़ के लगभग।
1: तो कब से बुआई की तैयारी है आपकी सब्जी मटर की?
0: 200 एकड़ का हमारा खुद का लगता है और बाकी हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो किसान भी लगाते हैं जो किसान है।
1: तोमर साहब ये बताएं कि इस साल बुआई की तैयारी कब से है आपकी?
0: हमारी बुआई की तैयारी अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है, 20 अक्टूबर से हम बीज उत्पाद का काम शुरू कर देते हैं।
1: तो बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप सब्जी मटर के उत्पादन और सब्जी मटर के बीज उत्पादन में?
0: बुआई से खेत की जब तैयारी करते हैं तो उसमें हम अपना कंपोस्ट खाद भी डलवाते हैं और उसमें खेत में हम गहरी जुताई भी करते हैं और फिर इसके बाद खेत अच्छे से बना के हम उसको मटर को बबवाते हैं। बिजाई करने के बाद जब हमारा मटर 25 दिन का हो जाता है उसमें स्प्रिंगलर सेट करवाते हैं, स्प्रिंगलर सेट माने चिड़िया वर्षा करते हैं।
1: अच्छा,
0: चिड़िया वर्षा करने के बाद हमारा जब फूल प्रफुल्लन पे आता है तो उसमें हम अपने अमीनो एसिड मिक्स दवा डलवाते हैं जिससे फूल अधिक आए
1: जी
0: और दाना हमारा बोल्ड निकले और उसमें समय समय पे जो भी फसल की आवश्यकता अनुसार उसमें डलवाते रहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह।
1: तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: मुनाफा 1 एकड़ में किसान का इस साल का जो रेशियो हम बताएं, इस साल जो हमने बीज दिया 1 एकड़ में बीज हमारा 75 केजी लगता है मटर का सीट
1: जी,
0: 75 केजी हमारा 7,500 रुपये का सीट हो गया, 7,500 का सीट हो गया, 2,500 रुपया उसका खाद पानी का मान के चलो 1 एकड़ में 2,500 रुपये वो खर्चा आ जाता है और 1 एकड़ में 3,000 रुपये कटाई का खर्चा आ जाता है
1: जी
0: और 1,000 रुपये थ्रेसिंग का खर्चा आ जाता है। तो हमारा 10,000 और 13,000 और 14 और 1,000 अतिरिक्त खर्चा और मान ले 15,000 रुपये एकड़ खर्चा आ जाता है
1: जी,
0: और इसमें हमारा उत्पाद हो जाता है 40,000 रुपये का।
1: अच्छा,
0: इसमें किसान को हमारे बच जाता है 25,000 रुपये।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है सब्जी मटर बीज उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम हमारे योगी जी का यहाँ पे योगी जी का कार्यक्रम लगा था हमारे जालौन में उरई में आए थे, तो मटर के लिए हमारे जिले के लिए योगी जी ने काफी सुविधा दे रखी है
1: जी,
0: जैसे कोल्ड स्टोर, जैसे मटर रखते थे घर पे तो उसका टंकी अंकी आ जाता था, खराब दाना हो जाता था, तो योगी जी ने हमारे कोल्ड स्टोर यहाँ पे काफी कर दिए हैं, उसमें का नाम कोल्ड वालों को सब्सिडी भी दी है।
1: कुछ हरी मटर बाजार को भी बेचते होंगे?
0: हाँ, बाजार में जो खाली फली है किसान तोड़वा लेता है, जैसे रेट फली का अच्छा रहता है तो फली वाली मटर किसान अलग करता है, अपना कुछ फली भी तोड़वा लेता है, कुछ अपना सीड भी तैयार कर लेता है।
1: आप भी सब्जी मटर सीधे बाजार को बेचते होंगे?
0: जो हमारे FPO हैं
1: जी,
0: FPO के माध्यम किसान का रेट कुछ महंगा जाता है
1: जी,
0: तो हम FPO के माध्यम बेचते हैं, उसमें हमारे जिला अधिकारी महोदय को अध्यक्ष बनाया है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: सर, हमारा मोबाइल नंबर है 9450

0: 6 4 5 0 3 5 94 50 64 50 35 94 50 64 35।
1: परमेंद्र सिंह तोमर भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई। आप सब्जी मटर उत्पादन कर रहे हैं और सब्जी मटर का बीज उत्पादन कर रहे हैं और पूरे देश में जाने जा रहे हैं। आपकी सफलता के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ अभिषेक भैया।
3: कार्यक्रम जो हम सबको बड़े निके से करी थे तो इंतजार रहा थे कि जो पंच भैया हम का सुन रहे हैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया हमरे तक पहुँचावे।
4: बिल्कुल भैया।
3: और प्रतिक्रिया पहुँचा चुके थे पंच भैया अपने चिट्ठी पाती के माध्यम से ने या ईमेल के माध्यम से ने, तो पंच भैया के यहाँ बता दो पता।
4: भैया अपने कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
3: पंचो हमारे ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com।
4: भैया आज अपन कार्यक्रम है तक सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
3: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअली 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से खोल रहे हैं अवसरों के नए द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत राज्य के 818 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में बनाएगा अपना स्थान। सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरठ में हुआ एयर शो, 9 हॉक जेट की कलाबाजियों ने हजारों दर्शकों को किया रोमांचित। और मथुरा में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया राधाष्टमी का पर्व। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ, आगरा सहित देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 167 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए सबकी सहभागिता की आवश्यकता है।
2: हम लोग विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, उसे सबकी सहभागिता की जरूरत, सबका कोऑपरेशन की जरूरत, सबकी मेहनत की जरूरत है और सबकी सोच की जरूरत है।
0: आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि रोजगार देने का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है।
3: 20वें रोजगार मेले में 12,75,000 लोग पहले ही पा चुके हैं और आज 45 स्थानों पर 51,000 लोगों को विभिन्न विभागों में प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है। और सभी बच्चों से जो मैं बात कर रहा था, उसमें सभी लोगों ने यही कहा है कि 100% पारदर्शिता के साथ लिखित के आधार पर बिना इंटरव्यू के उनकी नौकरी लगी है।
0: प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश की युवा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर कार्य कर रहे हैं।
4: हमारी सरकार युवाओं को इस देश का सबसे बड़ा सामर्थ्य मानती है और विकसित भारत है 2047 का स्वप्न युवाओं के योगदान से ही पूरा होना है। इसलिए 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं की शिक्षा, कौशल, पक्की सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर, इन सभी स्तंभों पर काम किया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से देश के कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन में आए बदलाव के बारे में। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री

0: जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन एक केंद्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य भारत के कमजोर जनजातीय समूह को विकास से जोड़ना है। यह योजना विकास को आजीविका और आर्थिक अवसरों से भी जोड़ती है। इसके तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी दी गई है। योजना के तहत जून 2026 तक 2.67 लाख पक्के मकान पूरे हो चुके हैं। 8,473 गांव में 100% पाइप से पानी की आपूर्ति भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के जरिए होने वाला विकास आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर दे रहा है।
1: पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था।
0: गोरखपुर जनपद के ग्राम जंगल तिनकोनिया के राम गणेश ने बताया कि पीएम जनमन योजना से उसके गांव की तस्वीर बदल गई है।
2: पीएम जनमन योजना के तहत लाभ मिला है जो कि हमारे गांव में कभी न तो पानी मिलता था, न बिजली मिलता था, न तो राशन कार्ड मिलता था, न तो हम लोग को मकान मिलता था। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें हम लोग को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और बिजली आई।
0: यह योजना कमजोर आदिवासी समुदायों को भारत के विकसित भारत की यात्रा के केंद्र में रखती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में नवचयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 9.5 लाख नौजवानों को नियुक्ति दी है और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा जब यूपी की ताकत बनेंगे तो प्रदेश नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में खुद को स्थापित करेगा, हर क्षेत्र में नए भारत के नए यूपी के रूप में अपना स्थान बनाएगा।
4: 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रतिभाशाली युवा जब यूपी की ताकत बनेगा तो यूपी भारत की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। नए अवसर पैदा होंगे हर एक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपना स्थान बनाएगा।
3: सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरठ के मोहिउद्दीनपुर स्थित न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आज एक एयर शो का आयोजन किया गया। आयोजन में शामिल होने के लिए हिंडन एयरबेस ने से उड़ान भरकर 9 हॉक जेट विमान मेरठ पहुंचे और प्रदर्शन किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में मेरठ के 3 स्क्वाड्रन लीडर भी शामिल रहे। भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। वहीं गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जबकि पीलीभीत में स्कूल कॉलेजों में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। मथुरा में राधाष्टमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राधा रानी की पावन जन्मस्थली बरसाना में ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी का पंचामृत से आज सुबह अभिषेक किया गया। इस मौके पर देश विदेश से आए श्रद्धालु आयोजन के साक्षी बने। श्रद्धालुओं की भारी संख्या के चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बरसाना क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है, जबकि 325 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को राधाष्टमी की बधाई दी है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 18 सितंबर 2026 तक विभिन्न आपदाओं से बचाव और राहत के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों को अलग अलग मदों में कुल 249.76 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ सहित देश के 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअली 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र, कहा मुक्त व्यापार समझौतों

से खोल रहे हैं अवसरों के नए द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत राज्य के 818 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में बनाएगा अपना स्थान। सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरठ में हुआ एयर शो, 9 हॉकजेट की कलाबाजियों ने हजारों दर्शकों को किया रोमांचित, और मथुरा में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया राधा अष्टमी का पर्व, देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर प्रणय कृष्ण श्रीवास्तव से क्लासिक बनाम रोमांटिक लेखन।
2: क्लासिक और रोमांटिक, ये काव्य के बारे में, साहित्य के बारे में दो प्रचलित दृष्टिकोण, साहित्य सिद्धांत और रचना पद्धतियां हैं। हिंदी में क्लासिसिज्म के लिए 2-3 शब्द प्रचलित हैं। एक है आभिजात्यवाद, दूसरा है शास्त्रवाद और तीसरा है श्रेण्यवाद। प्राचीन रोम में साहित्य के पाठक वर्ग की सामाजिक बौद्धिक स्थिति को देखते हुए दो तरह के साहित्य की रचना की जाती थी। एक स्क्रिप्टर प्रोलेटेरियस कहा जाता था, दूसरा स्क्रिप्टर क्लासिक्स। पहले का संबंध अशिक्षित कामकाजी निम्न वर्गीय जनता से था तो दूसरे का संबंध सुशिक्षित भद्र वर्ग से। यही वर्ग टैक्स देने वालों का भी था। ऐसे में क्लासिक साहित्य का शुरुआती अर्थ वह साहित्य था जो भद्र वर्ग की संस्कृति और सुरुचि को ध्यान में रखकर परिमार्जित और शास्त्रबद्ध रीति से रचा जाता था और जिसे समाज का उच्च वर्ग का संरक्षण प्राप्त रहा करता था। भारतीय काव्यशास्त्र में साहित्य में ग्राम्यता या भदेशपन के निषेध की जो बातें की गई हैं उनमें भी क्लासिकीयता का यही बोध निहित है। कामसूत्र और काव्य मीमांसा जैसे प्राचीन ग्रंथों में काव्य चर्चा जिस नागरिक या विदग्ध गोष्ठियों में की जाती दिखाई गई है उन सब गोष्ठियों का स्वरूप भद्रलोक वाला ही है। अरस्तु ने साहित्य के कुछ नियम बनाए और उसकी विधाओं का वर्गीकरण किया। साहित्य के स्तर में गिरावट से चिंतित होकर प्राचीन रोम में होरेस ने 65 ईसा पूर्व के लगभग प्राचीन साहित्य सिद्धांतों और प्राचीन श्रेष्ठ कवियों और कृतियों के अनुसरण और अनुकरण को ही काव्य रचना के लिए आवश्यक माना। ऐसे में क्लासिक कृतियों का अर्थ प्राचीन ग्रीस की कालजयी कृतियों से लिया जाने लगा। बाद में क्लासिक शब्द का और भी अर्थ विस्तार हुआ। सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व की सभी कृतियों के लिए क्लासिक शब्द प्रचलित हो गया। अब क्लासिक कृतियों का अर्थ सिर्फ प्राचीन ग्रीक कालजयी कृतियां नहीं रह गईं। यदि शेक्सपियर के नाटक, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, एलियट की वेस्टलैंड जैसी कृतियां भी कालजयी रचनाएं मानी जाने लगीं, जैसे होमर या वर्जिल की कृतियां, तो ये इसी कारण था। यदि कालिदास या भवभूति क्लासिक कवि माने जाते हैं या तुलसीदास की रामचरितमानस, भारतेंदु की अंधेर नगरी, प्रसाद की कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं क्लासिक कही जाती हैं तो यहाँ क्लासिक शब्द का कोई संबंध न प्राचीनता से लिया जाता है और न ही ग्रीक भाषा की कृतियों से। लिहाजा क्लासिक साहित्य की धारणा का पिछले 2000 वर्षों में विकास होता गया है और आज के समय उसका एक ही अर्थ यानी कालजयी होना सर्वस्वीकृत है। लेकिन इस धारणा में क्लासिक के पिछले अर्थों की भी अनुगूंज कमोबेश अभी भी है। यदि प्राचीन ग्रीक रचनाओं के अनुकरण को ही काव्य रचना का रास्ता होरेश ने बताया था तो इसके भीतर यह निहित था कि इन कृतियों में कुछ शाश्वत मान मूल्य हैं जो देश काल परिस्थिति की भिन्नता के बावजूद सदैव ही प्रासंगिक रहेंगे। इस धारणा में यह भी निहित था कि मानव स्वभाव में शाश्वत कुछ ऐसा है जिसकी असंदिग्ध पहचान पुराने मनीषी कवियों ने की थी। लिहाजा प्राचीनता और देश विशेष का आग्रह छूट जाने के बावजूद रचना का कालजयी होना या हर देश काल में उसका प्रासंगिक होना, उसमें कुछ चिरंतन शाश्वत मानवीय सच्चाई का होना क्लासिक होने की शर्त बनी रही। प्राचीन ग्रीक क्लासिक रचनाओं और अरस्तु के काव्यशास्त्र के अनुशीलन और व्याख्या के उपरांत साहित्य में जो नियम बनाए गए वे क्लासिकीय काव्यशास्त्र कहलाए। इस काव्यशास्त्र में साहित्यिक परंपरा के प्रति निष्ठा, अनुकरण धर्मिता, विवेक और भावना में संतुलन, रचना में अभ्यास और प्रयास का महत्व, वस्तुनिष्ठता, अभिव्यक्ति में सादगी, संतुलन, स्वच्छता, अनुपात आदि को महत्व दिया गया। जैसे जैसे नियम जकड़बंदी और रीतिवाद का शिकार होते गए वैसे वैसे उन नियमों के प्रति असंतोष, अवज्ञा, विद्रोह का भाव कवियों में प्रबल हुआ। इसी प्रवृत्ति से रोमांटिक कविता और काव्यशास्त्र का विकास हुआ जिसने नियमों की पाबंदी की जगह स्वच्छंदता पर बल दिया। इसीलिए हिंदी में रोमांटिकता के लिए स्वच्छंदतावाद नाम प्रचलित है। लेकिन रोमांटिक प्रवृत्ति के पीछे सिर्फ साहित्य का अपना स्वतंत्र विकास क्रम ही जिम्मेदार नहीं है। यूरोपीय प्रबोधन काल में मानववाद की जो प्रतिष्ठा हुई उसने व्यक्ति के महत्व को रेखांकित

किया। व्यक्ति की निजी भावनाएं महत्वपूर्ण मानी गईं। यदि क्लासिक रचना अभिजात्य वर्ग से जुड़ी हुई थी तो रोमांटिक रचना का संबंध आधुनिक काल में विकसित होते मध्य वर्ग से था। प्राचीन क्लासिकी रचनाओं में कोई महापुरुष युग के आदर्शों को स्थिर करने के लिए गौरवशाली जीवन संघर्ष करता दिखाया जाता था। रोमांटिक रचनाओं में सामान्य लोगों की मन की भावनाएं व्यक्त हुई। प्राचीन काव्यशास्त्र अभिजात वर्ग के संरक्षण पर निर्भर होने के चलते उस वर्ग की अभिरुचियों से अनुशासित था। लोकतांत्रिक जीवन पद्धति और समाज व्यवस्था में सभी वर्गों के लिए किसी महापुरुष राजा या राजकुमार द्वारा एक जैसे आदर्श की स्थापना की जरूरत नहीं रह गई। छापे खाने आदि तकनीकी आविष्कारों के चलते भी साहित्य अभिजात्य वर्ग से छूटकर जन सामान्य की वस्तु बनता गया। रोमांटिक प्रवृत्तियों ने इसी माहौल से अपनी प्राणवायु खींची। अब अनुकरण की जगह नवोन्मेष, मौलिकता, नवीनता पर बल दिया गया। नियमों से बंधने की जगह प्रयोगधर्मिता बढ़ी। भाव, भाषा, शैली हर स्तर पर। भावना पर बुद्धि या विवेक के अंकुश के शास्त्रवादी आग्रह के विरुद्ध भाव प्रधानता पर बल दिया गया। वैयक्तिकता और आत्मपरकता को एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया। गुरु गंभीरता की जगह सौंदर्य भावना को महत्व दिया गया। स्वतंत्रता की कामना और विद्रोहीपन रोमांटिक काव्य के मूल्य माने गए। अभ्यास की जगह प्रेरणा और कल्पना शक्ति को महत्व मिला। 18वीं सदी के अंग्रेज कवि वॉर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बर्न्स, ब्लेक, कीट्स, शेली, बायरन आदि की कविताओं की लोकप्रियता का कारण यही मूल्य हैं। रोमांटिक कवियों ने अपने कविकर्म को परिभाषित भी किया। वॉर्ड्सवर्थ ने काव्य को स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी जैसी परिभाषा दी। कॉलरिज ने कल्पना शक्ति का विवेचन किया। व्यक्तिगत हर्ष विषाद व्यापक आदर्शों से कम महत्व के नहीं माने गए। इन व्यक्तिगत भावनाओं की प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति हुई। शैली की कविता टू ए स्काईलार्क में आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स जैसी पंक्ति एकांत विषादाकुल मन से निकलने वाले गीत के रूप में रूमानी कविता की एक छवि संप्रेषित करती है। इस पंक्ति का अनुवाद हिंदी में इन शब्दों में हुआ है, सबसे मधुर वो गीत जिसे हम दर्द के सुर में गाते हैं। व्यक्तिगत वेदना के संघनित होकर कविता में फूट पड़ने का बिंब तमाम रूमानी कवियों में अपने अपने स्तर पर अभिव्यक्ति पाता रहा है। पंत जी की पंक्तियां हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रसाद जी ने लिखा, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सिछाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। रूमानी काव्य प्रक्रिया के लिए बादल के बरस पड़ने, झरने या सोते के फूट पड़ने के बिंब बहुप्रयुक्त हैं। यह रचना प्रक्रिया अभ्यास जनित, बाह्य अनुकरण मूलक, आदर्शवादी क्लासिकीय दृष्टिकोण से बिल्कुल उल्टी है। व्यक्तिगत प्रणय, विषाद, विद्रोह आदि के साथ प्रकृति को आलंबन बनाना भी रोमांटिक काव्य की विशेषता है। क्लासिकीय आदर्शों पर रचे काव्य में प्रकृति भावनाओं का उद्दीपन तो हो सकती थी, आलंबन नहीं। रूमानी कविताओं में प्रकृति मनुष्य की तरह ही संवेदनशील होती है। आधुनिक युग में शहरी औद्योगिक सभ्यता में प्रकृति से मनुष्य के दूर हो जाने और प्रकृति के स्वार्थपरक शोषण के विरुद्ध रोमांटिक काव्य में प्रकृति के साहचर्य का जो भाव अभिव्यक्त हुआ है, वह पर्यावरण की चिंता से व्याकुल आज की दुनिया के लिए भी एक मूल्यवान स्मृति की तरह है। हिंदी के रूमानी काव्य का शीर्ष बिंदु निराला प्रसाद पंत महादेवी का छायावादी काव्य है, जो राष्ट्रीय आंदोलन की मुक्ति कामना से जुड़कर हिंदी साहित्य की महान धरोहर के रूप में आज हमारे पास है। जिस तरह नियमों की जकड़बंदी रूढ़िवाद में पतित होकर क्लासिकी काव्यादर्श को नष्ट करती है, उसी प्रकार कल्पना की हवाई उड़ान, अति वैयक्तिकता और अराजक आज़ादी की प्रवृत्तियां रूमानी काव्य के पतन को सूचित करती हैं। काव्य की गीतात्मकता गलेबाजी बन जाती है। क्लासिक और रोमांटिक अलग अलग युगों, प्रवृत्तियों और काव्य पद्धतियों के नाम जरूर हैं, लेकिन ये दोनों प्रवृत्तियां कहीं गहरे में एक दूसरे की पूरक भी हैं। समूची काव्य परंपरा में वे एक के बाद एक आवर्त लेती रही हैं, घूम घूम कर आती रही हैं। दोनों एक दूसरे की कमियों को मर्यादा में रखती हैं। स्वच्छंदतावाद के विरोध में नई कविता और समीक्षा का सिद्धांत देने वाले एलियट ने अपने को क्लासिसिस्ट कहा, जबकि फैज़ अहमद फैज सहित तमाम प्रगतिशील कवियों में रूमानियत का स्वर बहुत से आलोचकों ने देखा है। कहा जा सकता है कि क्लासिक और रोमांटिक साहित्यिक परंपरा के गहरे संस्कार का द्योतन करने वाले पद बन गए हैं, जिनसे शायद किसी युग की रचनाशीलता पूरी तरह आज़ाद नहीं रह सकती। हम निराला की रचना राम की शक्ति पूजा की गरिमा

0: औदात्य और भव्यता के लिए भी उसे क्लासिक रचना कहते हैं। लेकिन निराला स्वयं रोमानी युग के कवि थे। वे ऐसे कवि थे जिनमें क्लासिक, रोमांटिक और बाद की यथार्थवादी तीनों प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। वास्तव में क्लासिकीय और रोमांटिक दोनों प्रवृत्तियाँ परंपरा और संस्कार के तौर पर आज के कवि में भी पाई जाती हैं। साहित्य की समूची परंपरा में गहराई के साथ गुथी हुई ये दोनों प्रणालियाँ शायद सदैव ही साहित्य पर अपना असर किसी न किसी रूप में बनाए रखेंगी।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, क्लासिक बनाम रोमांटिक लेखन। वार्ताकार थे डॉक्टर प्रणय कृष्ण श्रीवास्तव।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम के कलाकार हैं नेहा चैटर्जी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मीराबाई के पद चलो मन गंगा।
1: क्लासिक और रोमांटिक,

अभी आप सुन रहे थे नेहा चैटर्जी के स्वर में मीराबाई के ये पद। लीजिए अब सुनिए इन्हीं के स्वर में गोपाल दास नीरज द्वारा लिखित ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे नेहा चैटर्जी के स्वर में ये सुगम संगीत। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। बस कुछ ही देर में फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत

नमस्कार, आज चित्रपट संगीत के इस सुरमयी सफ़र में आपके साथ मैं हूं दीप्ति मिश्रा। दोस्तों, सुरमयी शाम ढल चुकी है, रात की तन्हाई धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। ऐसे में इस सुरों की महफिल सजना तो लाजमी है। कहते हैं जब दिल में कोई बात हो और जुबां पर कोई नगमा तो वक्त ठहर सा जाता है। आज की इस महफिल की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही गीत के साथ जिसे लता मंगेशकर ने अपने स्वरों से सजाया है, संगीत दिया है खय्याम ने और बोल हैं राजेंद्र किशन के। फिल्म का नाम है खानदान।

दोस्तों, जब हम पुराने गाने के शब्दों की गहराई में उतरते हैं तो एक ही ख्याल आता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है। शायद वक्त, जो कभी किसी के लिए ठहरता नहीं, लेकिन जब ये गुज़र जाता है तो यादें बन जाती हैं। आइए वक्त के इस कारवां को थोड़ा और आगे ले चलते हैं और सुनते हैं साहिर साहब का लिखा ये अमर गीत, जो आज भी हर पीढ़ी के दिल के उतने ही करीब है। फिल्म वक्त के इस गीत को स्वर दिया है आशा भोसले ने और बोल हैं रवि के।

साहिर साहब की ये बातें सीधे रूह को छू जाती हैं, लेकिन सच कहूँ जब वक्त थमता है न तो दिल में बस एक ही शख्स का ख्याल रह जाता है। चलिए वक्त के पहियों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सीधे रुख करते हैं 90 के दशक की तरफ, उस दौर का संगीत जहाँ मेलोडी की हुकूमत थी, एक ऐसा सदाबहार नगमा जिसके बोल सुनकर आप भी कह उठेंगे कि मुझे भी बस तेरा ही ख्याल है। सोनू निगम की आवाज़, समीर के बोल, जतिन ललित के संगीत से सजा संघर्ष फिल्म का ये बेहतरीन नगमा आपके नाम।

दोस्तों, इस वक्त मैं यही सोच रही हूँ कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। शायद आप स्टीयरिंग व्हील थामे हेडलाइट्स की रोशनी में गाड़ी चलाते हुए लौट रहे हैं, या शायद रसोई में खाना खाने की या बनाने की तैयारियां चल रही हैं, मसालों की खुशबू के बीच रेडियो बज रहा है, या फिर आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले खिड़की के बाहर इस ढलती हुई रात को देख रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अभी वक्त है सब कुछ भूल कर आइए और साथ में गुनगुनाते हैं, कुछ गाते हैं, क्योंकि ये वक्त भी बड़ा अजीब है। क्योंकि जब ये अच्छा होता है तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, रात कुछ गहराने लगी है, आसमां पर लटका चांद ज़रा सा खूबसूरत लगने लगा है। तो ऐसे में दिल के करीब बसा वो चांद का दीदार करने की जो कसक उठने लगती है, तो उसके बारे में दो पंक्तियां हैं। आसमां पे तो चांद ही निकलता है यारो, मगर ज़मीं पर कोई अपना मुस्कुराता है तो समा ही बदल जाता है। ये है मुंबई मेरी जान फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिया है कुमार सानू ने, संगीत जतिन ललित का, और बोल हैं इंदीवर के।

दोस्तों, वक्त की खूबी तो यही है, ये कभी रुकता नहीं, बस चलता जाता है। चाहे खुशी हो या गम, ये बस गुजर जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है, जो अभी है उसे जी लिया जाए। तो हाँ, ये जो वक्त है, जो अभी इस पल हमारे साथ है, उसके साथ जी लो। आप रसोई में हैं तो गुनगुना लो, अकेले हैं तो मुस्कुरा लो, और अगर थोड़ा सा चाहो तो अपने आप से लड़ झगड़ भी लो, क्योंकि पता है कल कुछ हो, कल का क्या पता कल हो ना हो। तो अगर थकान हावी हो रही है तो आपके मूड को हल्का करने के लिए मैं कोई ऐसा गीत गाता हूँ जो आपको सुकून दे जाए। फिल्म है यस बॉस, स्वर हैं अभिजीत और अलका याग्निक के, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

दोस्तों वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी से है। सच में इस बदलते वक्त के बीच जब दिल नहीं चाहता कि ये खूबसूरत पल ख़त्म हो, तो बस जहन में एक ही गुजारिश आती है कि अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं।

आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए चित्रपट संगीत, और तब तक के लिए विदा दीजिए मुझे यानी दीप्ति मिश्रा को। नमस्कार।

प्रस्तुत है अटल ऑडिटोरियम में अटल ऑडिटोरियम में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में आयोजित 20वें रोजगार मेला पर आधारित रेडियो।

0: ब्यूरो रिपोर्ट वाचन और संपादन प्रवीण कुमार मिश्र।
1: प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले की रेडियो रिपोर्ट।

दिनांक 19 सितंबर को फाफामऊ स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अटल प्रेक्षागृह में केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय इलाहाबाद के तत्वाधान में रोजगार मेले के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं राज्य मंत्री रसायन एवं उर्वरक भारत सरकार और जीएसटी आयुक्त रंजीत कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त रंजीत कुमार का स्वागत भाषण हुआ।

0: श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं राज्य मंत्री रसायन एवं उर्वरक भारत सरकार और जीएसटी आयुक्त रंजीत कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त रंजीत कुमार का स्वागत भाषण हुआ। स्वागत भाषण देते आयुक्त रंजीत कुमार,
1: आप सभी का प्रयागराज की स्वर्ण धरती पर रोजगार मेला के इस अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित रोजगार मेला युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान करने के साथ साथ उन्हें राष्ट्र के निर्माण की मुख्य धारा में जोड़ने की एक पहल है। इसके पहले के भी रोजगार मेलों में आज हम यहाँ 20वें रोजगार मेले में उपस्थित हुए हैं, परंतु इसके पूर्व के रोजगार मेलों के द्वारा भी बड़ी संख्या में युवाओं को अलग अलग कार्यालयों और विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। और उसी कड़ी में आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस ऐतिहासिक पहल का हम हिस्सा बन रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया, आपका आज के इस कार्यक्रम में पधारना हम सभी के लिए अत्यंत सम्मान और प्रसन्नता का विषय है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स प्रयागराज की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और इस समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैं मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके मार्गदर्शन और उपस्थिति से आज का यह आयोजन और अधिक प्रेरणादायी बना है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब मैं विशेष रूप से हमारे नवनियुक्त युवा साथियों का स्वागत करना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र आने जा रहा है वह केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, यह आपके परिश्रम, आपकी योग्यता और आपके परिवार के वर्षों के विश्वास का परिणाम है।
0: आयुक्त केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के स्वागत संबोधन के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले में शामिल विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर वह नव चयनित उम्मीदवारों को संबोधित भी किए। नव चयनित उम्मीदवारों को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
2: आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही, साथ ही आपके माता पिता और आपके परिवारजनों की भी तपस्या है। यह आप सभी युवा साथी और आपके परिवारजनों बहुत बहुत बधाई देते हैं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका, सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर, हमारे एंटरप्रेन्योर और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार है। इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई कॉरपोरेशन पोर्टल की पहल की गई। साथियों, बीते वर्षों भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, क्या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास,

0: कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के पश्चात मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल का संबोधन हुआ। रोजगार मेले को संबोधित करती केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल,
2: आप सबके बीच आज इस 20वें रोजगार मेला के अवसर पर उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। ये 20वां संस्करण है। इससे पहले 19 संस्करण और आयोजित किए जा चुके हैं और हर बार जब हमने रोजगार मेला आयोजित किया है तो लगभग 50,000 या उससे अधिक अभ्यर्थियों के हाथों में पक्की सरकारी नौकरी के नियुक्त पत्र सौंपने का काम किया है। आज उसी क्रम में इस 20वें रोजगार मेला में जो देश भर में लगभग 45 स्थानों पर आयोजित किया गया है और जैसे मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ उसी प्रकार इन 45 अलग अलग स्थलों पर हमारे भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं हर एक स्थान पर एक हमारे मंत्रिमंडल के साथी भी उपस्थित हैं हमारे नए सफल अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए। और आज भी हम 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र पक्की सरकारी नौकरी के चयनित अभ्यर्थियों को सौंपने जा रहे हैं और भारत सरकार के तमाम अलग अलग मंत्रालय अलग अलग विभाग जिसमें मेरा अपना मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी शामिल है, इसके अलावा रेल मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, राजस्व विभाग है, वित्तीय सेवाएं विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, जल शक्ति मंत्रालय है, हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, CISF है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे विभाग हैं भारत सरकार के, अलग अलग मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े हुए ये नियुक्ति पत्र आज हमारे अभ्यर्थियों को सौंपे जाएंगे। और आज यहाँ भी लगभग 81, जैसा कि मुझे सूचित किया गया, 81 अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी सफल अभ्यर्थियों को भारत सरकार की ओर से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हम में से कोई भी व्यक्ति, हम जीवन में कभी भी कोई भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो ये हमारा अकेले का प्रयास नहीं होता है और यदि हम ऐसा सोच लें तो ये गलत होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों का हमारी किसी भी उपलब्धि या किसी भी सफलता में योगदान होता है। सबसे पहले निश्चित रूप से उसमें हमारे परिवारजन होते हैं लेकिन परिवार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति समाज के भीतर जो किसी न किसी रूप में अपना सहयोग हमें देते हैं जिसके कारण हम इस उपलब्धि को हासिल करते हैं और हमें सदैव सामूहिक रूप से ऐसे हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए। और आप सब तो सरकारी नौकरी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो सरकारी नौकरी तो सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। आप जिस भी विभाग में जाएं, जिस भी मंत्रालय में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं वहां पे आपका एक छोटा सा निर्णय, आपका एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा आपका योगदान किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है इसका एहसास शायद आपको अभी ना हो लेकिन कुछ समय गुजारने के बाद आपको यह जरूर स्पष्ट रूप से नजर आएगा। इसलिए आज के शुभ दिन पर मैं आपको बधाई तो दे ही रही हूं, आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से आपने कड़ा परिश्रम भी किया होगा, कड़ी मेहनत की होगी लेकिन आपको नियुक्ति पत्र मिल गया बस यही सारी कहानी खत्म नहीं हो जाती है। ये तो ये आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला है, इसके आगे एक बहुत यादगार आपकी यात्रा हो सकती है पर ये निर्भर करेगा आपके अपने सोच रवैये और व्यवहार पर। तो यदि आपकी सोच केवल यही तक सीमित है कि मुझे किसी सरकारी नौकरी का

0: नियुक्ति पत्र मिल जाए तो आप जीवन में बहुत कुछ जो कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे।
1: मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात रोजगार मेले में नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नव नियुक्त अभ्यर्थियों ने रोजगार मेले के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त किए। उद्गार व्यक्त करते नव नियुक्त अभ्यर्थी।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अमन सनी है और मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पे चयनित हुआ हूँ। पहले तो मैं मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि अगर मैं हमारे पीएम की बात करूँ तो पीएम के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें स्मूथली होने लगी है। जो पहले भर्तियां बहुत ज्यादा अटका करती थी वो सारी चीजें नहीं रही है और वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगा है सारा काम। अगर हम रेलवे की भर्ती की पहले की बात करें तो बहुत टाइम लगा करता था, लेकिन रिसेंट ईयर्स में बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें होने लगी है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मोदी जी।
3: सर डेफिनेटली एक बहुत ही खुशी का बात है कि ये मतलब जो भी पहल की गई है केंद्रीय सरकार के थ्रू या बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू, सर मतलब उसमें एक संयमित तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से और समय पे नियुक्ति मिल रही है, पारदर्शिता बढ़ गई है, ये सब चीजें सर डेफिनेटली क्रोज में काउंट होंगी बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। सर डेफिनेटली सर एक बहुत ही खुशी का मतलब अभी तो समय सर घर में पेरेंट्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल रहा है, सर टीचर्स का रोल रहा है, फ्रेंड्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, सर एक तरीके से क्यूमुलेटिव है एफर्ट, सबका कम्बाइंड इफेक्ट है।
1: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अटल प्रेक्षागृह में आयोजित 20वें रोजगार मेले में प्रयागराज में 81 अलग अलग विभागों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम का समापन हेमनाथ झा, सहायक आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर इलाहाबाद के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। प्रस्तुत रेडियो रिपोर्ट का संकलन और संपादन प्रवीण कुमार मिश्र का और प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की थी।
4: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट, वाचन और संपादन प्रवीण कुमार मिश्र का, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब से कुछ ही देर में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त

0: युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020

0: को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
3: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
2: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
4: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
2: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
5: I think close to 8 cargo planes have arrived.
6: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
5: The Indian government is looking at the issue of assistance very positively.
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने

0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna-Ukai-Songar section of Western Railway. Two-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pavan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various

0: जांच ब्यूरो की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर छानबीन शुरू की थी। बाद में सीबीआई ने गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीम चलाने में मुलव्विस होने की बिना पर 33 मुलजिम अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म और एक जिमनी फर्द जुर्म दाखिल की थी। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत ताल्लुकात के जरिए अपनी शराकत दारी को तकवीत बख्शने के इम्कान हैं। आज नई दिल्ली में तरक्की पजीर ममालिक के लिए तहकीक और इत्तलाआती निज़ाम की जानिब से मुनक़िदा उभरते आलमी निज़ाम में भारत नेपाल ताल्लुकात का नए सिरे से तसव्वुर के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर वागले ने कनेक्टिविटी और इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने और दोनों ममालिक के दरमियान खातिर ख़्वाह इम्कानात को बरूएकार लाने की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने कल अंडमान और निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम माहे मध्य प्रदेश तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कल मराठवाड़ा जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल मशरकी राजस्थान झारखंड कोंकण गोवा उड़ीसा और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। आज जापान के मिजुहू पार्क एथलीट स्टेडियम में 20वें एशियन गेम्स की शाह नारुहितो की जानिब से आगाज किए जाने के बाद शुरुआत हो गई है। 2 घंटे की तकरीब में जापान के शाही कुनबे खेलों से मुतालिक अहदेदारान और ओलंपिक की एशियाई काउंसिल के सदर शेख जोआन बिन हमद अल सानी ने शिरकत की। 501 मेंबरान पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान में एशियन गेम्स के आगाज़ के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अपनी नए ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि हर एथलीट ने बेपनाह मेहनत की और लगन और अज़्म का मुजाहरा किया है और भारत उन पर फख्र करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एथलीट्स गेम्स में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। 2 रोज़ा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में अख्ताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश का इम्कान है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस लाइट्स साउंड कैमरा एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं। फीचर

0: फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था
2: वो शक्ति।

0: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन। जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: अदक्के बैतिनि नानु दोड्ड अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागरकट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होने क्या
1: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला।
1: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कंफर्म आयतु। हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। अदक्के अवकाश इद्रू अवनन मुगसाकलिल्ल।
0: अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंत नाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय। अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
4: हंस क्यों रहे हैं?
5: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उर मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में हंस रहे हैं।
4: बेटा साहब जरा होश में आइए। हुजूर जरा हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम

74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत

से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: संसार से।
1: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
2: क्या नाम है तेरा? कमली। कमली, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है। अच्छा नाम है ना?
3: और बारे पुत्रा नहीं।
2: चल, तू इधर रोज आती है?
4: हाँ।
2: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
4: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
2: संभल के जाना। कमली, गल सुन।
4: क्या?
2: तेरी कुड़माई हो गई?
1: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर, और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
2: आते हैं फिर?
1: और देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 16 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूं तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: अजब हो गया।
4: क्या हुआ?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं?
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह, मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974।

0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजा बाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए। संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए और फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के, मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है, ज़्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट के, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था।

0: पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब
1: वाह
0: ऐसा सीधा सीधा रफ़ी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने,
1: जी,
0: इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है।
1: ओ
0: तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूज़िक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूज़िक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज़ उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं,
1: जी
0: फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण,
1: रूह
0: राजा
1: साहब,
0: मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे। तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊँ, मैं जाती थी, बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूज़िक डायरेक्टर थे। दीदी
1: जी
0: को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है, और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा, छोटा सा तालाब को
1: जी
0: बड़ा दिखाते थे। तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ये है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गों को बस सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरीली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वहीं रहती।
1: जी
0: मुझे इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की ज़रूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम
1: जी
0: हो, पलंग हो, इंसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक
1: आज
0: खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखें, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती हूँ, क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने
1: क्या
0: वाली औरत
1: बात,
0: हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ, कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ, कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता है,
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही हूँ।
1: मन

смрити іще ж. स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।

0: इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कांची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत है। इसमें आज हम आपको श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटक वायलिन रिसाइटल बाय श्री एस हरिकुमार।
0: श्री एस हरिकुमार केरल के एक प्रख्यात संगीतकार हैं, जिन्होंने कर्नाटक, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में अपनी विशेष पहचान बनाई है। सन 1980 में जन्मे आप 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से वायलिन वादन सीखने लगे और 9 साल की आयु में आपने अपनी प्रथम प्रस्तुति दी। तदनंतर आपने स्वर्गीय अनंत लक्ष्मी वेंकटरामन, स्वर्गीय चालकुडी नारायण स्वामी और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जैसे सुविख्यात संगीत पारखियों के अधीन अपना संगीत प्रशिक्षण जारी रखा। यथाशीघ्र आपके संगीत कौशल की परख हुई और आपको 18 वर्ष की आयु में आकाशवाणी में ए ग्रेड प्राप्त हुआ। संगीत के सफर में तबला विद्वान पंडित किशन महाराज और अनिंदो चटर्जी, साथ ही पाश्चात्य वायलिन वादक जॉन ल्यूक पोंटी के साथ संगति करते हुए प्रस्तुतियां देते हुए आप पूरी दुनिया में छा गए। बाद में आप लंदन गए और वहां आपने फ्यूजन संगीत समूह ब्लू फायर की स्थापना की, जिसके एल्बम ब्रेथ टेकर ने दुनिया भर की वाहवाही लूटी। 7 एवं 11 तारों वाले इलेक्ट्रिक वायलिन पर वादन करते हुए सुर, ताल और विभिन्न संगीत शैलियों के सम्मिश्रण में नए आयाम तलाशने वाले आप अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए खूब जाने जाते हैं।
1: श्री एस हरिकुमार इज अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन फ्रॉम

0: आगे प्रस्तुत है आर वेणुगोपाल की रचना सरिसमाना, जो राग विटपी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू सरिसमाना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ आर वेणुगोपाल इन द राग विटपी, सेट टू आदि तालम।

0: आगे पेश है कृति सरस्वती नमोस्तुते, जी एन बालसुब्रमण्यम की रचना, जो राग सरस्वती और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज सरस्वती नमोस्तुते इन द राग सरस्वती सेट टू रूपक तालम कंपोज्ड बाय जी एन बालसुब्रमण्यम।

0: अब आप सुनेंगे कृपया पालया, महाराज स्वाति तिरुनाल की रचना, जो चारुकेशी राग और मिश्र चाप ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to Kripaya Palaya, a composition of Shri Swati Tirunal in the rag Charukeshi set to Mishra Chap Talam.

0: ये था तनियावर्तनम। इसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर ने। श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन का समापन महाराज स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक तिल्लाना से कर रहे हैं जो धनाश्री राग और आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tani Avartanam played on the Mridangam by Shri Changanasheri K.R. Jayan and on the Ghatam by Shri Anjal H. Krishna Iyer. Shri S. Harikumar concludes his violin recital with a Tillana composed by Shri Swadi Tirunal in the Raga Dhanashri set to Adi Thalam.

0: इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुना श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। कार्यक्रम में संगति कर रहे थे मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित हुआ।
1: With that we conclude the violin recital by Shri S. Harikumar in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shri Changanasheri K. R. Jayan on the Mridangam and Shri Anjal H. Krishna Iyer on the Ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत

0: सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. The Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge ROB on Udhna Ukai Songar section of Western Railway. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already